नमस्कार, FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 सितंबर सन 2026 सुबह के 5:55 और 50 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। सुबह के 6 बजने को है। अब समाचार थोड़ी देर में दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो

0: कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग ने पार्टी के दोनों प्रतिद्वंदियों गुटों को उपचुनाव में इनका इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। आयोग ने ममता बनर्जी और अरूप राय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने अपने समूह के लिए तीन नाम और तीन मुक्त चुनाव चिन्ह प्राथमिकता के क्रम में देने को कहा है। आयोग इनमें से एक नाम और एक चुनाव चिन्ह को मंजूरी देगा। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्सट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उपस्थित होंगे। इन विमानों को शामिल करना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता का विकास को और बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका सहित कई देशों से ऊर्जा खरीदता है। एशियाई खेल 2026 में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से पराजित किया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारत।

ये विविध भारती है, झरोखा में लीजिए सुनिए हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर में यानी दिन के ठीक 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 315। 6:45 पर सुनिएगा संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं। इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी आपको सुनवाएंगे गायक और कलाकार हैं डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज। 7 सुनाए जाएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के। 8:15 पर सुनिएगा वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सुनेंगे आज इस श्रृंखला की 46वीं कड़ी। 8:30 पर सुनिएगा चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री शबाना आजमी पर, प्रस्तुति रमेश गोखले की। श्रोताओ, इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। दिन में 10 पिटारा लाएगा हेलो फरमाइश, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। दिन में 11 आप सुनेंगे रंग तरंग, 12 समाचारों का होगा, 12:05 पर आप सुनेंगे यादों की महफिल। एक बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर, 2 वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, भाग 46 आज आपको सुनवाएंगे। 2:30 पर होंगे सदाबहार नखमे, 3 आप सुनेंगे हेलो सहेली कार्यक्रम और शाम 4 पिटारा में गीतों भरी कहानी सुनिएगा रिहाई, लेखिका अलका सिन्हा, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। शाम 5 आप सुनेंगे छाया गीत, 5:30 पर होगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिएगा कार्यक्रम संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं। आप सुनेंगे आज इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी कलाकार गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज। 7 सुनिएगा कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुनेंगे अनमोल यादें, फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रिकर की बातचीत का 11वां भाग आपको सुनाएंगे प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। रात 8 हवा महल कार्यक्रम में सुनिएगा झलकी बीवी ब्यूटी क्वीन, लेखक शरद सिंह और निर्देशन अजीमुद्दीन का है। 8:15 पर होगा कार्यक्रम चित्रलोक, 9 आप सुनेंगे कार्यक्रम आ

के लिए और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री शबाना आजमी पर। 10 सुनिएगा छाया गीत। और 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ढलती जाए रात। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अपने बल का आभास देने के लिए रावण की सभा में अंगद ने पृथ्वी पर जो पैर रोपा तो मेघनाथ समेत अनेक योद्धाओं ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु उसे हिला तक नहीं सके। ये देख स्वयं रावण उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वो अंगद का पैर पकड़ने लगा, अंगद बोल पड़े, अरे मूढ़, मेरा चरण पकड़ने में तेरा कल्याण नहीं, जाकर श्री राम के चरण पकड़। पल भर में रावण के दंभपूर्ण मुखमंडल से कांति विलुप्त हो गई। सकुचाकर वो सिंहासन पर वापस जा बैठा। उसका मुख वैसे ही निस्तेज हो गया जैसे सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा का प्रकाश लुप्त हो जाता है। पार्वती को ये वृत्तांत सुनाते हुए शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिन प्रभु के भौहों के संकेत मात्र से विश्व की रचना और विनाश होता है, जो एक तिनके को वज्र के समान कठोर और वज्र को तिनके के समान नगण्य बना देते हैं, उनके दूत के प्रण और निश्चय को भला कौन डिगा सकता है। अंगद ने एक बार फिर नीतिपूर्ण वचन कहकर रावण को सद्बुद्धि देनी चाही, किंतु उसका कोई प्रभाव न होता देख रणभूमि में उसका वध करने की धमकी देकर श्री राम के शिविर में वापस लौट गए। रात्रि में मंदोदरी ने रावण को फिर समझाने का प्रयास किया। जो श्री राम के छोटे भाई द्वारा खींची गई एक रेखा तक नहीं लांग सका, वो स्वयं जगदीश्वर से किस प्रकार पार पा सकेगा।

0: आजकल इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीत की श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं। उदाहरणों सहित इसे प्रस्तुत किया है प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज ने।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। आमिर खान की गायकी में चैनदारी और विलंबित बढ़त का मौलिक रूप अत्यंत लुभावना है। ख्याल चाहे विलंबित हो या द्रुत, चिंतन का क्रम व चैनदारी बराबर बनी रहती थी। इसी विशेषता ने मुझे उनकी ओर आकर्षित किया। आमिर खान साहब को यह प्रेरणा जहां बहरे अब्दुल वहीद खान से मिली, वहीं कूट तानों व मेरुखंड की प्रेरणा भिंडी बाजार वाले अमान अली खान साहब अमर से प्राप्त हुई। देवास के प्रोफेसर अमानत खान साहब तान कहते कहते सहसा एक स्वर पर ठहर के पुनः तान कहने लग जाते थे। यह उनकी अद्वितीय विशेषता थी। यह अंग आमिर खान साहब को बहुत ही पसंद आया। उन्होंने देवास के रजब अली खान के कूट तानों के साथ अवरोही के तानों के साथ गायकी के अनेक अंग आत्मसात किए। जरब और जवारी बहरे अब्दुल वहीद खान की उन्हें पसंद आई। साथ में छूट कह जाना आमिर खान साहब को बहुत भाया। आमिर खान साहब बचपन में उस्ताद बाबू खान साहब बीनकार के साथ हमारे ग्रैंडफादर गोस्वामी श्री कृष्ण राय जी महाराज बच्चू बाबा के यहाँ आया करते थे। यहाँ उनकी सीट थी, इसलिए उन्होंने वल्लभाचार्य महाप्रभु के पुत्र गोसाई जी के नाम पर एक बंदिश भी बनाई जिसमें मध्यलय में ख्याल का अंदाज मालूम होता है। तो अब मैं वो बंदिश आपको गाकर सुना रहा हूँ।

केवल गायक होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु अच्छे रचनाकार होने की आवश्यकता भी है। साथ साथ में हर अंग को गायन में यथोचित स्थान देना चाहिए। पहले गुरुजन शिष्य की साधना और उसकी गायकी के हर छोर, हर पहलू पर ध्यान देते थे। गायकी के साथ साथ उसे बंदिशों को कहने का अंदाज सिखाते थे, बंदिश कैसे बनाई जाए इसकी शिक्षा देते थे। इन सब बातों के लिए पेशेंस चाहिए। उस्ताद अमीर खान साहब बहुत अच्छे रचनाकार थे। वे सुररंग तखल्लुस, मुद्रा या उपनाम से गाते थे। उनकी एक बड़ी ही सुंदर रचना, जो कि ऐतिहासिक होने के साथ साथ उनकी पत्नी का इसमें योगदान लिए हुए है, तो प्रस्तुत है राग यमन कल्याण में वो बंदिश जो मैं आपको गाकर सुना रहा हूँ, जिसमें गायकी के अनेक अंग हैं, जैसे बल, पेंच, गमकतान, जरब, जरब से गमकतान, छूट, फिरत, कंपित, अंदोल और मेरुखंड आदि का उज्ज्वल उदाहरण लिए हुए हैं।

0: संगीत की श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं आप संगीत सरिता कार्यक्रम में सुन रहे थे। इसके प्रस्तुतकर्ता थे प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज, हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने संगत की थी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया।

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिरदर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका MRI करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: FM 102.5 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उज्जैन। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम महाकाल बंदन।

महाकाल वंदन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सुबह की इस अमृत वेला में आइए सर्वप्रथम बाबा महाकाल को नमन करते हैं और सुनते हैं शिव भक्ति से सराबोर भजन।

ये था हमारा कार्यक्रम महाकाल वंदन और आप सुन रहे हैं FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आकाशवाणी उज्जैन।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं।

सुबह 7:20 पर होगा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। 8:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम उज्जैनी आरजे विद आरजे देशना जैन।

9:30 पर होगा कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स। 10 बजे आपको ले चलेंगे उज्जैन के गणपति दर्शन करवाने कार्यक्रम उज्जैन दर्शन में।

सुबह 10:30 पर होगा महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा। 11 बजे सुनिएगा रंग तरंग। बारह बजकर 5 मिनट पर होगा कार्यक्रम यादों की महफिल। 1 बजे सुरीला सफर। दोपहर 2 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत।

दोपहर 2:30 पर आप सुन सकेंगे सदाबहार नगमे, 3 सखी सहेली और 4 सुनिएगा गीतों भरी कहानी। शाम 5 होगा युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज होने वाला है सजीव फोन इन प्रोग्राम। 6 हमसे जुड़िए भजन संध्या में। 6:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत।

शाम 7:21 पर होगा कार्यक्रम माटी री बात। 8 बजे सुनिएगा 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 विशेष कार्यक्रम कर्टेन रेजर। 8:30 पर सुर्खियों में

रात 9:30 पर आप सुन सकेंगे खेल पत्रिका, 9:45 पर सुनिएगा फिल्म संगीत।

रात 10 बजे जुड़िए कार्यक्रम गीतों का गुलदस्ता में, और 10:30 पर होगा राग रजनी पर आधारित शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह के 7:10 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण हम थोड़ी ही देर में भोपाल केंद्र से करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का प्रत्येक नागरिक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत, पहले दिन 3 करोड़ से ज्यादा दिए जलाकर विश्व कीर्तिमान बना। प्रदेश भर में रक्तदान हुआ। मुख्यमंत्री आज जबलपुर में राजा कुंवर रघुनाथ शाह और राजा शंकर शाह बलिदान दिवस पर और दिल्ली में सेमिकॉन 2026 में हिस्सा लेंगे। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली के यशोभूमि में कल सेमिकॉन 2026 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।
1: भारत की क्वार्टरली GDP रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है। और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है।
0: वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सेमिकॉन इंडिया 2026 में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री राज्य पवेलियन का भ्रमण कर स्वीडिश एवं जापानी प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश के अवसरों, प्रौद्योगिकी सहयोग और संभावित साझेदारियों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत पर प्रदेश के सभी जिलों और 845 ऐतिहासिक और महत्व के स्थलों पर 3,55,00,000 दिए एक साथ जलाए गए। उज्जैन में ही 33,27,000 दिए एक साथ प्रज्वलित कर विश्व कीर्तिमान बनाया गया। उज्जैन के शिप्रा के रामघाट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उज्जैन वासियों के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित किए। दीपोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आज मध्य प्रदेश में हमने उनके सपने को साकार करने का प्रयास किया है। अब प्रदेश के सभी गांवों में 50,00,000 से अधिक लोगों को, जिनके मकान खेत खलिहान के पट्टे हैं, उनकी रजिस्ट्री करने का यह अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का जिक्र करते हुए कहा कि वे बिहार क्षेत्र से आते हैं और बिहार और मध्य प्रदेश का अपना एक पुराना संबंध रहा है।
2: तो हमारे सनातन संस्कृति में कोई भी हमारा पवित्र संकल्प दीप प्रज्वलन के बिना होता ही नहीं। हमारे इस मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुनः विराजे हैं, हमारा आपका उनका एक विशेष संबंध भी है। आप बिहार से आते हैं और राजा भोज उस अतीत के काल में

0: जब यहाँ वो खराब समय था तो उस काल में हमारे मालवा के लोग अपने बिहार और पूर्वांचल के क्षेत्र में गए, इसलिए आज भी वहाँ के शासक उज्जैन ठाकुर भी कहलाते हैं और ये भोजपुरी भाषा से हमारा वो मध्यप्रदेश का संबंध भी जुड़ता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर कल सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। प्रदेश में 388 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें 8684 रक्तदाताओं ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। शिविरों के साथ रक्तदान के प्रति जन जागरूकता शपथ एवं अन्य जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की गई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने लोकभवन में आयोजित स्वास्थ्य एवं रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया, जहां 77 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम के तहत रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक और महत्व के स्थानों पर दीप प्रज्वलन भी किया गया, जिसमें ग्वालियर जिले के 11, इंदौर के 32, भोपाल के 21 और कई अन्य जिलों के आइकॉनिक स्थलों पर बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलित किए गए। इंदौर जिले में सेवा संकल्प अभियान के पहले दिन 350 यूनिट रक्तदान किया गया। वहीं देवास में 25,000 से अधिक दीप प्रज्वलित किए गए। धार में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर की उपस्थिति में 6,00,000 से अधिक दिए जलाकर सेवा का संकल्प लिया गया। इसी प्रकार सतना, खंडवा, आगरमालवा, मंडला, रायसेन, सागर, छतरपुर, अलीराजपुर, डिंडौरी, बैतूल, अशोकनगर, नीमच सहित प्रदेश के सभी जिलों में सेवा के संकल्प के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार सागर और बुंदेलखंड क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल राज्य स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव के अवसर पर सागर जिले के किसानों से वर्चुअली जुड़कर संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में धान, गेहूं और ज्वार के साथ नकदी फसलों का उत्पादन भी हो रहा है। कृषि उत्पादन के साथ फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना से किसानों को अपनी उपज के बेहतर मूल्य के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के लिए केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात है। गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के 169वें बलिदान दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अमर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करेंगे। इसके बाद वे जनजाति समाज के गौरव पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे और उपस्थित जन समुदाय तथा आदिवासी समाज के लोगों को संबोधित करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की शुरुआत के बाद दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत विकसित देश बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री चौहान ने कल तेलंगाना के थिम्मापुर में किसानों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने रोडमैप तैयार किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए किसानों को फसल बीमा की सुविधा दी जा रही है। श्री चौहान ने यह भी कहा कि स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से छोटे उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के ऋण लेने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि समय पर ऋण चुकाने से लाभार्थियों को आगे अधिक ऋण लेने, अपना क्रेडिट रिकॉर्ड बेहतर करने और बैंकों का विश्वास हासिल करने में मदद मिली है। इस संवाद में देश भर से 200 से अधिक मुद्रा योजना के लाभार्थी शामिल हुए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट 2026 की जून की परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा 9 और 10 सितंबर को देश के 272 शहरों में 454 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डाक विभाग देशभर में स्वच्छता बढ़ाने, लंबित मामलों को कम करने, रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत करने और ई कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए विशेष अभियान चलाएगा। अभियान का तैयारी चरण इस महीने की 15 तारीख से 30 तारीख तक चलेगा। अशोकनगर की ग्राम पंचायत काकराई में आज मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा में सेवा संकल्प अभियान के तहत कल जिला अस्पताल के ग्राम सिरपुर और ओंकारेश्वर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। आगरमालवा पुलिस विभाग द्वारा मिशन जीवन रक्षक अभियान की शुरुआत कल से हुई। नरसिंहपुर जिले की जनपद पंचायत करेली की ग्राम पंचायत अमथनू में 7वां जनसंवाद शिविर आज आयोजित किया जाएगा। डिंडौरी की जनपद पंचायत बजाक के ग्राम पंचायत बोंदर में आज जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल रात खेले गए तीसरे और अंतिम मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 221 रन बनाए, जिसके जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर ही सिमट गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का प्रत्येक नागरिक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत, पहले दिन 3 करोड़ से ज्यादा दिए जलाकर विश्व कीर्तिमान बना। प्रदेश भर में रक्तदान हुआ। मुख्यमंत्री आज जबलपुर में राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह बलिदान दिवस और दिल्ली में सेमिकॉन 2026 में हिस्सा लेंगे। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 3-0 से जीती। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

FM 102.5 MHz पर साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 7:21 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

सुप्रभात उज्जैन वासियों, आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सुंदर से भक्ति गीत के साथ।

उज्जैन की आध्यात्मिक सुबह अपने आप में एक अद्भुत अनुभूति है। जब शिप्रा के पावन तट पर सूरज की पहली किरणें बिखरती है, मंदिरों में घंटियां गूंजती है और वातावरण में हर हर महादेव का जयकारा सुनाई देता है, तो ऐसा लगता है मानो पूरी अवंतिका नगरी स्वयं महाकाल की भक्ति में लीन हो गई हो। बाबा महाकाल की नगरी में सुबह की शुरुआत ही आस्था, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ होती है। महाकालेश्वर मंदिर से उठती भस्म आरती की पवित्र स्मृतियाँ हो या गलियों में गूंजता जय श्री महाकाल का उद्घोष, हर पल भक्तों को भगवान शिव की उपस्थिति का एहसास कराता है। तो आइए आज की सुहानी सुबह महाकाल का स्मरण करें और पूरे भक्ति भाव से कहें, हर हर महादेव।

समाचार पत्रों से। शिप्रा का हुआ दीप श्रृंगार, 3 मिनट में 33.27 लाख दिए जले, उज्जैन ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। शाम 6:57 पर बजे सायरन में 25,000 से ज़्यादा वॉलंटियर ने एक साथ दिए जलाए और महज 3 मिनट में उज्जैन के शिप्रा तट से महाकाल लोक तक 33.27 लाख दिए जगमगा उठे। इसी के साथ उज्जैन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद आधे घंटे आतिशबाजी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा संकल्प अभियान के तहत आशीर्वाद का दिया में कार्तिक मेला मैदान में 9 लाख दियों से श्री मोदी का विशाल चित्र बनाया गया। इसी अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने शिप्रा आरती की। शिप्रा तट पर 25 मिनट का लेजर शो और द ग्रेट महाकाल का मंचन हुआ। उज्जैन में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत रामघाट पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कवि शैलेश लोढ़ा ने कथा वाचन के माध्यम से उज्जैन की सांस्कृतिक, धार्मिक और गौरवशाली परंपराओं का परिचय प्रस्तुत किया। इसके साथ ही भजनों की प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम के दौरान रामघाट पर 25 मिनट का विशेष लेजर शो और द ग्रेट महाकाल का मंचन आकर्षण का केंद्र रहा। महाकाल मंदिर समिति की ओर से आयोजित दीपोत्सव में रामघाट, दत्तात्रेय घाट, केदारेश्वर घाट, सुनहरी घाट और भूखी माता घाट सहित विभिन्न स्थानों पर दीप प्रज्वलित किए गए। रामघाट पर लगभग 9 लाख दीपकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र बनाया गया। कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकालेश्वर मंदिर की प्राचीन विरासत, पौराणिक पहलुओं, ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया। पुस्तक में मंदिर के इतिहास, धार्मिक परंपराओं, प्राचीन मूर्तिशिल्प और विकास कार्यों का उल्लेख किया गया है। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। सिंहस्थ 2028, उज्जैन सहित 8 रेलवे स्टेशनों पर लगेंगे 750 CCTV कैमरे। सिंहस्थ 2028 के दौरान उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को मजबूत करने के लिए उज्जैन सहित 8 रेलवे स्टेशन पर 750 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। रेलवे, RPF और जिला प्रशासन द्वारा इन कैमरों की मदद से यात्रियों की निगरानी की जाएगी। इनमें से 217 कैमरे केवल उज्जैन रेलवे स्टेशन पर लगाए जाएंगे। इसके लिए स्टेशन पर केंद्रीयकृत CCTV मॉनिटरिंग रूम स्थापित किया जाएगा, जहां से यात्रियों की गतिविधि, भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा सके। आइए अब जानकारी लेते हैं कुछ खेल जगत की। 3 दिनी राज्य स्तरीय टेटे स्पर्धा आज से। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय टेबल टेनिस स्पर्धा उज्जैन में शुक्रवार से शुरू होगी। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में आए 260 से अधिक महिला पुरुष खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। स्पर्धा में के लिए रिकॉर्ड 480 प्रविष्टियां मिली है। उज्जैन से 34 महिला और पुरुष खिलाड़ी भी मुकाबले में उतरेंगे। साथ ही राज्य स्तरीय बास्केटबॉल स्पर्धा भी आज से शुरू होने वाली है। राज्य स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल स्पर्धा शुक्रवार से इंदौर के बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में होगा। मध्य प्रदेश बास्केटबॉल संगठन के मार्गदर्शन में आयोजित प्रतियोगिता में उज्जैन जिला टीम का नेतृत्व हैप्पी सिंह आनंद करेंगे। ये थी उज्जैन की कुछ खबरें समाचार पत्रों से। आइए अब आपको वापस से जोड़ते हैं एक सुंदर से भक्ति गीत के साथ।

श्रोताओं, जरा सोचिए, एक ही कार्यालय में दो लोग समान योग्यता रखते हैं, समान जिम्मेदारियां निभाते हैं और समान मेहनत करते हैं, तो क्या उनके वेतन में अंतर होना चाहिए? यही सवाल हमें लेकर जाता है समान वेतन दिवस यानी कि इक्वल पे डे की ओर। समान वेतन दिवस हमें कार्यस्थल पर लैंगिक समानता और निष्पक्ष पारिश्रमिक के महत्व की याद दिलाता है। महिलाओं और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना केवल आर्थिक न्याय का विषय नहीं, बल्कि समान अधिकार और समान अवसरों से जुड़ा सवाल है। किसी व्यक्ति की मेहनत और प्रतिभा का मूल्य उसके लिंग से नहीं, बल्कि उसके कार्य और योगदान से निर्धारित किया जाना चाहिए। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले एक बहुत ही सुंदर गीत की ओर, फिल्म हिंदी मीडियम से।

तद्दुम तद्दुम तद्दुम ता।

साथियों, हम चर्चा कर रहे थे समान वेतन की। समान वेतन की चर्चा केवल सैलरी स्लिप तक सीमित नहीं है, ये उन अवसरों से भी जुड़ी है जो किसी व्यक्ति की नौकरी पाने, आगे बढ़ने और नेतृत्व करने के लिए मिलते हैं। कई समाजों और कार्यस्थलों में महिलाओं को वेतन असमानता, करियर में रुकावटों और पदोन्नति के अवसरों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि संस्था पारदर्शी वेतन व्यवस्था अपनाए, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करे और योग्यता आधारित अवसर प्रदान करे। जब महिलाओं को उनकी मेहनत का उचित मूल्य और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, तो इसका लाभ केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके परिवार, समाज और पूरी अर्थव्यवस्था को मिलता है। तो श्रोताओं, समान वेतन दिवस हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। समानता किसी एक वर्ग की मांग नहीं बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज की आवश्यकता है। हमें अपने घरों, विद्यालयों, कार्यालयों और संस्थानों में ऐसी सोच को बढ़ावा देना चाहिए जहाँ काम का मूल्य व्यक्ति की पहचान से नहीं उसकी योग्यता और योगदान से तय हो। महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान अवसर, उचित वेतन और सम्मान मिलना चाहिए। आइए हम अपने आसपास समानता के प्रति जागरूकता बढ़ाएं और ऐसे कार्यस्थलों के निर्माण में योगदान दें जहां हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सके, क्योंकि सच्ची प्रगति तभी संभव है जब विकास के अवसर और मेहनत का सम्मान सभी के लिए समान हो। समान काम, समान सम्मान और समान वेतन, यही एक न्यायपूर्ण समाज की पहचान है। आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर, हेमा सरदेसाई की आवाज़ में जगदे इंडिया फिल्म से।

श्रोताओं, बात करते हैं एक ऐसे पौधे की जो तेजी से बढ़ता है, मजबूत भी है और हमारे भविष्य को अधिक टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांस की। विश्व बांस सप्ताह के अवसर पर बांस के महत्व को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये केवल ग्रामीण जीवन और पारंपरिक हस्तशिल्प का हिस्सा नहीं बल्कि आधुनिक सतत और विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। बांस से फर्नीचर, सजावटी वस्तुएं, कागज़, निर्माण सामग्री और अनेक उपयोगी उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इसकी तेज़ वृद्धि और बहुउपयोगिता इसे प्राकृतिक संसाधनों से बेहतर इस्तेमाल की दिशा में एक उपयोगी विकल्प बनाती है। बांस के बारे में और भी बातचीत करेंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

साथियों, सस्टेनेबल फ्यूचर या टिकाऊ भविष्य का अर्थ है आज की ज़रूरतें पूरी करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना। इसी सोच के साथ पास्ती जैसी तेज़ी से नवीनीकृत होने वाली वनस्पतियों का जिम्मेदारी से उपयोग महत्वपूर्ण हो सकता है। बांस आधारित उत्पादों का बढ़ावा देना स्थानीय कारीगरों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी एक नया अवसर पैदा कर सकता है। इसलिए विश्व बांस सप्ताह यानी कि वर्ल्ड बैम्बू वीक हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ने का संदेश देता है। कम संसाधनों में अधिक उपयोगिता और प्रकृति के साथ विकास, यही टिकाऊ भविष्य और यानी सस्टेनेबल फ्यूचर की सही दिशा है। और इसी के साथ श्रोताओं, ये था हमारा आज का सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन, आकाशवाणी उज्जैन से FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। अब सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को अगले 5 साल के लिए पुनः कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। टाटा ट्रस्ट ने इसे अवैध बताया। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
1: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल 2 प्रतिद्वंदी गुट हैं और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। लोकसभा से तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले, जबकि राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे।
3: सम्मेलन में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में देश के विकास से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इनमें अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्तीय व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
4: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और

0: निर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@airnews हिंदी और पब्लिक पर @airnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान कल से शुरू हुआ। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर और आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इसी कड़ी में प्रस्तुत है नक्सलवाद के अंत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट।
3: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सलवाद के अंत के बाद अब बंदूक की गोलियों की जगह एक बार फिर स्कूल की घंटियां सुनाई देने लगी हैं। बस्तर अंचल में सुरक्षा कैंपों को बदलकर शहीद वीर गुंडा धुर सेवा डेरा के नाम से आधुनिक जन सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन बदलते बस्तर की तस्वीर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां कभी टेरर था वहां अब टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
4: ने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। यानी जहां कभी टेरर था वहां टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
3: सरकार की ठोस इच्छा शक्ति का ही परिणाम रहा है कि बस्तर में हजारों की संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों को अब कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर जिले के ऐसे ही एक आत्मसमर्पित माओवादी लखमू पोयाम ने बताया कि नक्सली संगठन में काम करते हुए उन्हें हमेशा जान का डर बना रहता था, लेकिन अब वे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं।
5: अभी तो यहाँ सरेंडर करने के बाद हम लोग यहाँ रहते हैं, अभी अच्छा लग रहा है। उधर रहते समय तो कभी मर जाना है, गोली लगेगा बोल के उधर डर था। अभी यहाँ आराम से खाना है, पीना है, सोना है, काम करना है, सब लोगों के साथ मिलना है, ऐसे अच्छा लग रहा है यहाँ।
3: लखमू पोयाम जैसे सैकड़ों आत्मसमर्पित माओवादियों की यह कहानी बताती है कि बस्तर में नक्सलवाद के अंत के बाद अब विकास का सूर्योदय हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
1: भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई।

0: विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को 5 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया है। टाटा सन्स के बोर्ड ने कल 4-1 के बहुमत से उनके कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट ने इस मतदान को अवैध बताया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले 2 दिन के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम, माहे, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार।
1: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत दी है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने शानदार 108 और संजू सैमसंग ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उधर जापान में खेलों में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से आज सुबह 10:30 से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी।
0: जम्मू कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले के मेंढर इलाके के बेहरी कासब में आधुनिक जनजातीय पर्यटन गांव विकसित करने को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन की खबर आज प्रकाशित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया का भारत पर बढ़ रहा भरोसा, वैश्विक बाजार में पहुंच रही देश की सेमीकंडक्टर चिप। जनसत्ता के शब्द हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को भरोसेमंद चिप विनिर्माण का केंद्र बना रही है। पंजाब केसरी लिखता है, भारतीय चिप की दुनिया भर में सप्लाई शुरू, दूसरे चरण में लक्ष्य $30.5 मिलियन। अमेरिकी संसद में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाले विधेयक के पारित होने की खबर को अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ट्रंप को मिला 100% टैरिफ वाला हथियार। अमर उजाला लिखता है, टैरिफ पर अमेरिका की दो टूक, भारत अपने हित खुद तय करेगा। हिंदुस्तान ने 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नए नियम की खबर दी है। पत्र लिखता है, पंजीकरण के नियमों को सख्त बनाने वाला कानून 1 अक्टूबर से देशभर में लागू होगा। पंजीकरण में 2 वर्ष से अधिक की देरी होने पर पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, पढ़ाई के बाद नौकरी में काम आएगी अपार आईडी, डिग्री देख सकेंगे नियुक्ता, मंत्रालय ने निजता नीति बदली। पंजाब केसरी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के परीक्षा कार्यक्रमों के जारी होने पर लिखा है, जेई मेन यूजीसी नेट परीक्षा की डेट शीट जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है, सीसीटीवी की निगरानी में बिके दवा, सरकार लाई प्रस्ताव, फुटकर दुकानों में ही सीसीटीवी अनिवार्य होगा, थोक दवा दुकानों को बाहर रखा गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन फ्रीजेस तृणमूल कांग्रेस नेम एंड सिंबल, आस्क्स राइवल फैक्शंस टू पिक न्यू वंस फॉर वेस्ट बंगाल बाय पोल्स। Joint Parliamentary Committee on Foreign Contribution Regulation Amendment Bill to hold its first meeting in New Delhi today. NTA releases final answer keys of UGC NET June 2026 exam for English, Commerce and Sociology. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Kerala and Rajasthan today. And in men's cricket, India crush Afghanistan by 127 runs in third T20 international to win the series 3-0. The Election Commission of India has barred both factions of the Trinamool Congress from using the party's name and election symbol in the upcoming assembly by-polls in Nandigram and Rejinagar in West Bengal. Here's a report from our correspondent.
5: In an interim order issued yesterday, the commission said neither the Mamata Banerjee-led group nor the Arup Roy-led group can use the name All India Trinamool Congress or the party's reserved twin flower symbol. Both groups will have to contest the by-polls under the different names and with election symbols allotted by the commission. This arrangement will continue until the dispute is finally settled. The commission said documents and claims submitted by both sides show that there are currently two rival groups within the Trinamool Congress, with both claiming to be the real party. As the dispute cannot be settled before the upcoming by-polls, the commission has taken the temporary step to decide who can use the party's name and symbol for now. Sandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
4: The first meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 will be held in New Delhi today. The committee will receive a briefing from representatives of the Ministry of Home Affairs on the provisions of the bill. More from our correspondent.
6: Both houses of the parliament on 12th August gave their note to referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill seeks to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010 with the objective of making the use of foreign contributions more transparent and accountable. The committee comprises 21 members from the Lok Sabha, nominated by the Speaker, and 10 members from the Rajya Sabha, nominated by the Chairman. Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal will head the joint panel. Prominent members from the Lok Sabha include Tejaswi Surya, Nishikant Dubey, A. Raja and Supriya Sule. From the Rajya Sabha, Harshvardhan Singla, Sanjay Kumar Jha, Praful Patel and Menaka Guruswamy are among the members of the committee. The committee is required to submit its report to the House by the last day of the first week of the winter session. Vishnu P.S. for Akashwani News, Delhi.
4: The National Testing Agency, NTA, has released the final answer keys for the UGC NET June 2026 examination conducted in three subjects, English, Commerce and Sociology. The keys have been made available on the official website https://ugcnet.nta.nic.in. The examination was held on the September 9th and 10th of this month at 454 centres across 272 cities in the country. The agency had earlier issued a notice on August 16, 2026 regarding the conduct of the test. Candidates who appeared in the examination can now log in to the registration portal using their application number and password to view the final answer keys of their respective subjects. The NTA has advised all candidates to visit the official UGC NET website regularly for the latest updates related to the examination. For any clarification, candidates may contact the NTA help desk through the contact details provided on the website. The Finance Ministry will organize a two-day conference on financing India's journey towards Vikasit Bharat in New Delhi, beginning today. The ministry said that the conference will be held for finance ministers and finance secretaries of the states and union territories. Finance Minister Nirmala Sitharaman, along with several chief ministers and finance ministers from the states, will be present during the conference. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public life. His journey has been defined by the mantra of service to the nation through public service and continued dedication, which remains steadfast even today. Inspired by this vision of service and good governance, the government is continuously working towards achieving the goal of a developed India by 2047. This commitment, through inclusive development and social empowerment, is bringing about a transformation in people's lives. In this context, we bring you a report on the end of Naxalism.
7: In Chhattisgarh's Bastar region, following the end of Naxalism, the sound of school bells is once again being heard in place of gunfire. Security camps in the Bastar region are being transformed into modern public service centers named Shaheed Veer Gundadhur Seva Dera. Bastar Olympics and Bastar Pandum reflects the changing picture of Bastar. Prime Minister Narendra Modi said that areas which once witnessed terror are now providing opportunities for talent.
8: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे आप, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। यानी जहां कभी टेरर था, वहां टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
7: The government's firm resolve has resulted in thousands of Maoists surrendering in Bastar. Efforts are now being made to make these former Maoists economically self-reliant by providing them skill training. One such former Maoist, Lakhmu Poyam of Bastar district, said that while working with the Naxalite organization, he always lived under the fear of losing his life. He is now undergoing skill training and leading a peaceful life. After surrendering, we are living here now and we feel good. When we were there, we always lived in fear that we might be killed or shot. Here, we can eat, drink, sleep and work peacefully and meet and interact with everyone. We feel good living here. The stories of hundreds of surrendered Maoists like Lakhmu Poyam show that following the end of Naxalism, a new dawn of development is emerging in Bastar. Vikalp Shukla, Akashwani News, Raipur.
4: This is Akashwani giving you the news.
2: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
4: External Affairs Ministry has notified the Passport Amendments Rules 2026, amending the Passport Rules 1980. The amendment provides that an ordinary passport with 36 pages issued to a child under 15 years of age will be valid for 5 years or until they turn 18 years of age, whichever is earlier. Hindustan Aeronautics Limited will hand over light combat aircraft, Tejas Final Operational Clearance Twin-Seater Trainers and HTT 40 Basic Trainer Aircraft to the Indian Air Force in Bengaluru today. It will also hand over Dhruv Next Generation Helicopters to Pawan Hans Limited, a public sector undertaking. The ceremony will be attended by Defence Minister Rajnath Singh and Minister of Civil Aviation Ram Mohan Naidu. The Defence Ministry said that induction of these platforms is another step towards strengthening the indigenous capabilities and reducing dependence on foreign sources. Chief of Army Staff General Dhiraj Seth visited Russian Land Forces headquarters as part of his three-day official visit to Russia. The interaction focused on deepening military cooperation and expanding training engagements. They also focused on strengthening capability development between the two armies. The Defense Ministry said the visit reflects the importance attached by both the countries to sustained military diplomacy and army-to-army engagement. The Trump administration has approved visas for top Iranian officials, including the president and foreign minister, to attend next week's UN General Assembly high-level meeting in New York, even as the two countries are locked in a stalemated war. A report.
9: The State Department said that it has approved visas for Iran's core delegation along with essential staffers to participate in the UN meetings. The core delegation include President Masoud Pezeshkian and Foreign Minister Abbas Araghchi. The move is unusual due to the more than 6 month long conflict between Iran and the United States and no sign that agreement to reopen the Strait of Hormuz. It also comes as Iranian-backed Houthi rebels in Yemen have step-up attacks on Saudi infrastructure and shipping in the Red Sea. Another major maritime route in

दोस्तों, आज के उज्जैनी आरजे में हम बात करेंगे रेट्रो सॉन्ग्स की। रेट्रो संगीत की दुनिया में कुछ गीत ऐसे होते हैं जो जिंदगी को थोड़ा बेफिक्र होकर जीने की सीख देते हैं। न ज़्यादा चिंता, न आने वाले कल की फिक्र, बस आज को अपनी धुन में जीने की चाहत। इस गीत में भी दिल की आज़ादी, अपनी मर्जी से जीने और जिंदगी के छोटे छोटे पलों का आनंद लेने का खूबसूरत अंदाज दिखाई देता है। इसकी धुन में एक प्यारी सी मस्ती है जो सुनने वाले को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। तो आइए रेट्रो दौर की इसी बेफिक्री फिजा में खो जाते हैं। सुनते हैं फिल्म 16 साल से गीत हेमंत कुमार की आवाज़ में।

पहला प्यार, बस नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आपके भी आई ना? किसी की पहली झलक, आंखों की हल्की सी मुलाकात और दिल में उठती अनजानी सी हलचल, ये सारे एहसास अपने आप में एक खूबसूरत कहानी कहते हैं। पुराने हिंदी सिनेमा के गीतों में प्रेम की इसी मासूमियत और चंचलता को बड़े ही दिलकश अंदाज में पेश किया जाता था। ये गीत भी प्यार की शुरुआत, उमंग और मीठी सी बेकरारी से भरा हुआ है। तो चलिए पहली मोहब्बत की इसी प्यारी सी दुनिया में चलते हैं, आयशा भोसले जी और शमशाद बेगम जी की सुरीली आवाज़ के साथ।

दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि जब कोई खास इंसान सामने न हो तो नजरें उसे हर जगह तलाशने लगती है? प्यार में दिल की यही बेचैनी कभी-कभी बड़ी मजेदार स्थिति पैदा कर देती है। पुराने दौर के गीतों में ऐसी भावनाओं को गंभीरता के बजाय शरारत, हंसी मजाक और चुलबुले अंदाज के साथ पेश किया जाता था। आज का गीत भी इसी तरह की मस्ती और

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि अब के साथ एक पूरा माहौल लेकर आते हैं। गांव की मिट्टी, उत्सव की उमंग, लोगों की खुशियां और प्रेम की सहज अभिव्यक्ति, जब ये सब संगीत में मिलते हैं तो एक अलग ही रंग बनता है। इस गीत में भी लोक धुन की मिठास और भारतीय संगीत की खूबसूरत छाप दिखाई देती है। इसके लय में ऐसा आकर्षण है कि सुनते ही मन अपने आप झूमने लगता है। यही तो पुराने गीतों की खासियत है। समय बदलता है लेकिन उनकी मिठास वैसी ही रहती है। सुनवाते हैं आपको श्री 420 से अगला गीत।

प्यार का इजहार हमेशा बड़े बड़े शब्दों से ही हो ये ज़रूरी नहीं। कभी किसी की मुस्कान, कभी उसकी आंखें और कभी हवा में लहराते बाल भी दिल की बात कह जाते हैं। पुराने हिंदी सिनेमा के रोमांटिक गीतों में इसी मासूमियत और शालीनता की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है। आज के गीत में भी प्रेम और आकर्षण को चुलबुले अंदाज में पेश किया गया है। इसकी मधुर धुन और दो खूबसूरत आवाज़ें इसे यादगार बना देती है। तो आइए इस रोमांटिक रंग में कुछ पल रंग जाते हैं। सुनवाते हैं आपको गीत मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी की आवाज़ में।

और अब बारी है थोड़ी सी नोकझोंक की। पुराने हिंदी सिनेमा में प्यार सिर्फ गंभीर भावनाओं का नाम नहीं था, बल्कि उसमें हंसी, शरारत और एक दूसरे को छेड़ने का भी अपना मजेदार अंदाज था। जब दो लोगों की बातचीत गीत का रूप ले लेती है, तो सुनने वाला भी उसी प्यार ही सी स्थिति का हिस्सा बन जाता है। ये अगला गीत सवाल जवाब, हास्य और रोमांस का खूबसूरत मेल है। इसकी प्रस्तुति बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे दो लोग आमने सामने बैठकर दिल की बातें कर रहे हो। सुनवाते हैं आपको अगला गीत किशोर कुमार और आशा भोसले जी की आवाज़ में, फिल्म चलती का नाम गाड़ी से।

कभी कभी छोटी सी शिकायत भी प्यार को और खूबसूरत बना देती है। कोई बुलाए नहीं, बात न करे या थोड़ा रूठा रहे तो दिल में सवाल उठने लगते हैं। लेकिन इसी शिकायत के पीछे छिपी होती है अपनापन पाने की इच्छा। पुराने दौर के गीतों में रिश्तों की ऐसी भावनाओं को बहुत सरल और मधुर अंदाज में प्रस्तुत किया जाता था। ये गीत भी रूठने मनाने और प्रेम की हल्की सी शिकायत का एहसास कराता है। इसकी धुन में एक सहज मिठास है जो आज भी मन को छूती है। सुनवाते हैं आपको ये गीत फिल्म पेइंग गेस्ट से, जिसे संगीत से सजाया है SD बर्मन साहब ने और बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी जी ने।

0: नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: कभी कभी दिल की बात कहने के लिए बहुत ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती। कुछ भावनाएं ऐसी होती है जिन्हें एक नजर, एक मुस्कान या कुछ छोटे से शब्दों भी बयां कर देते हैं। प्रेम की यही कोमलता रेट्रो सॉन्ग्स में दिखती है। हमारा अगला गीत भी प्यार की गहराई और भावनाओं की मिठास को अपने भीतर समेटे हुए है। इसकी धुन सुनते हुए लगता है जैसे कोई पुरानी रोमांटिक कहानी धीरे धीरे हमारे सामने खुल रही हो। सुनवाते हैं आपको गीत फिल्म द ग्रेट गैम्बलर से।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: कुछ रिश्तों में प्यार इतना गहरा होता है कि उसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है। इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन हर बार शब्द कम पड़ जाते हैं। ऐसे में संगीत वो बात कह देता है जो दिल अपने आप से भी कहने में झिझकता है। अगला गीत प्रेम की गहराई, समर्पण और उस एहसास को सामने लाता है जिसमें कोई व्यक्ति जिंदगी का बेहद खास हिस्सा बन जाता है। इसकी धुन में ठहराव है और आवाज़ में भावनाओं की गहराई। सुनवाते हैं आपको किशोर कुमार की आवाज़ में ये अगला गीत।

प्यार में कभी रूठना, कभी मनाना और कभी अपनी बात मनवाने के लिए थोड़ी सी नटखट अदायगी, यही तो रिश्तों की मिठास है। पुराने गीतों में प्रेम की ऐसी छोटी छोटी स्थितियों को बहुत स्वाभाविक और मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत किया जाता था। ये गीत भी दो लोगों के बीच की प्यारी बातचीत है, हल्की शिकायत और चुलबुले अंदाज को सामने लाता है। इसकी मधुर धुन और संवाद जैसा प्रवाह सुनने वालों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए रेट्रो रोमांस के इस खूबसूरत रंग का आनंद लेते हैं। सुनवाते हैं आपको गीत फिल्म काला पानी से।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ लेले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

आजादी का एहसास कितना खूबसूरत होता है, जब मन पर कोई बोझ ना हो और जिंदगी को अपनी इच्छा के अनुसार जीने की चाहत हो, तो हर दिशा नई संभावनाओं से भरी लगती है। पुराने हिंदी सिनेमा के गीतों में मन की इसी उड़ान और चंचलता को बड़ी खूबसूरती से पेश किया है। इस अगले गीत में भी सपनों, उमंग और खुले आसमां जैसी आज़ादी का एहसास कराया गया है। इसकी धुन में ताजगी है और आवाज़ में ऐसी मासूमियत जो सुनते ही मन हल्का कर देती है। सुनवाते हैं आपको लता मंगेशकर जी की आवाज़ में चोरी चोरी फिल्म से ये अगला गीत।

और दोस्तों, इसी के साथ ये था हमारा आज का उज्जैनी आरजे कार्यक्रम, जिसमें हमने सुने बहुत ही प्यारे रेट्रो सॉन्ग्स। और मैं हूँ आपके साथ आरजे देशना जैन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन से FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर।

FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। सुबह के 9:30 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स।

दोस्तों आज के बॉलीवुड बीट्स की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गाने से जिसने रिलीज होते ही डांस फ्लोर की धड़कनें बढ़ा दी थी। फिल्म वांटेड का ये जोशीला ट्रैक शान और श्रेया घोषाल की दमदार आवाज़ों से सजा है। अगर मूड में थोड़ा सा भी आलस बचा हो तो यकीन मानिए ये गीत उसे पल भर में गायब कर देगा। शुरुआत करते हैं सुंदर से गीत के साथ।

कुछ गीत सुनते ही ऐसा लगता है कि वो सीधे महसूस हो रहे हो। फिल्म जोधा अकबर का ये कालजयी नगमा जावेद अली की रूहानी आवाज़ में मोहब्बत की नज़ाकत को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। सुरों की शालीनता और भावनाओं की मिठास से सजा ये गीत हर दौर में उतना ही ताज़ा लगता है। सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा नगमा।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
0: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
2: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: कहते हैं कुछ बातें लफ्ज नहीं, नजरें कह देती है। फिल्म वीर का ये मधुर गीत राहत फतेह अली खान और सुजैन डी मेलो की दिलकश आवाजों में एक अलग ही जादू बिखेरता है। प्यार की मासूमियत और संगीत की मिठास का ये संगम आज भी दिलों को एक अलग ही सुकून देता है।

इंतज़ार का सबसे खूबसूरत पल वही होता है जब आखिरकार दीदार हो जाए। फिल्म जन्नत 2 का ये रोमांटिक गीत जावेद अली की सुरीली आवाज़ में धड़कनों की भाषा बन जाता है। हर अंतरे में प्यार की ताजगी है और हर सुर में मुलाकात की खुशी महसूस होती है। आइए इस खुशी को महसूस करें इस प्यारे से गीत के साथ।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम
1: तो क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: जिंदगी में कुछ रिश्तों की वजह समझ नहीं आती, बस दिल उनसे जुड़ जाता है। फिल्म एजेंट विनोद का ये बेहद लोकप्रिय गीत अरिजीत सिंह की जादुई आवाज में उसी अनकहे एहसास को शब्द देता है। हर बार सुनिए और हर बार ये गीत कुछ नया महसूस करा जाता है।

चलिए अब थोड़ा मुस्कुराने की बारी है। फिल्म दबंग का ये नटखट और चुलबुला गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की शानदार आवाज़ों में रोमांस का प्यारा सा रंग घोल देता है। प्यार की मीठी शरारत और संगीत की मस्ती का मज़ा लीजिए इस शानदार गीत के साथ।

और श्रोताओं, इसी के साथ ये था हमारा आज का बॉलीवुड बीट्स कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आकाशवाणी उज्जैन।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है, FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। सुबह के 10 बज चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उज्जैन दर्शन।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम उज्जैन दर्शन में आप सभी का स्वागत है। गणपति बप्पा मोरया, इन दिनों गणेशोत्सव का पावन पर्व चल रहा है और उज्जैन की धार्मिक फिजाओं में भी गणेश भक्ति की सुंदर छटा दिखाई दे रही है। तो आज इसी अवसर पर चलिए आपको उज्जैन के कुछ प्रमुख गणेश मंदिरों के दर्शन कराते हैं। इन मंदिरों की अपनी अपनी धार्मिक पहचान, मान्यताएं और विशेषताएं हैं। हमारी यात्रा में शामिल है चिंतामन गणेश मंदिर, बड़े गणपति मंदिर, दस भुजानाथ मंदिर और अष्टविनायक मंदिर। तो प्रथम पूज्य गणेश जी का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का ये विशेष उज्जैन दर्शन।

अब सबसे पहले चलते हैं श्री चिंतामन गणेश मंदिर, जो उज्जैन शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर उज्जैन फतेहाबाद रेलवे लाइन के निकट स्थित है। शिप्रा नदी के पार बसे इस प्राचीन मंदिर में भगवान गणेश की स्वयंभू मानी जाने वाली प्रतिमा विराजमान है। यहाँ गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि की प्रतिमाएं भी स्थापित है। मंदिर की प्राचीनता और परमार काल के सुंदर नक्काशीदार स्तंभ इसकी ऐतिहासिक विरासत को दर्शाते हैं। चिंतामन गणेश को चिंताओं का हरण करने वाले गणपति के रूप में श्रद्धा से पूजा जाता है। चैत्र मास के बुधवारों को यहाँ विशेष रूप से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, तो बप्पा के इस पावन धाम में दर्शन कर मन में शांति और मंगल की कामना कीजिए।

अब रुख करते हैं श्री बड़े गणपति मंदिर की ओर, जो महाकालेश्वर मंदिर के पास स्थित है। महाकाल दर्शन करने के लिए आए हुए श्रद्धालुओं के लिए ये गणेश मंदिर भी आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यहाँ भगवान गणेश की विशाल और भव्य प्रतिमा भक्तों को आकर्षित करती है। मंदिर के निकट सप्त धातु से निर्मित पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा का भी उल्लेख मिलता है। बड़े गणपति के दर्शन के दौरान श्रद्धालु भगवान से शुभ कार्यों की सफलता, बुद्धि और विघ्नों के निवारण का की प्रार्थना करते हैं। गणेशोत्सव के इस अवसर पर आइए बप्पा के भव्य स्वरूप को नमन करें और उनके आशीर्वाद से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं।

अब हमारी यात्रा पहुंचती है श्री दश भुजानाथ गणपति की ओर। ये मंदिर उज्जैन के चक्रतीर्थ क्षेत्र में शमशान घाट के निकट स्थित है। भगवान गणेश के 10 भुजाओं वाले स्वरूप को समर्पित ये मंदिर भक्तों के लिए श्रद्धा का स्थान है। दश भुजानाथ के दर्शन हमें गणेश जी के सामर्थ्य और दिव्य स्वरूप का स्मरण कराते हैं। उज्जैन की धार्मिक परंपरा में शिप्रा तट और उसके आसपास के तीर्थ स्थलों का विशेष महत्व रहा है। ऐसे में इस मंदिर की यात्रा भी शहर के आध्यात्मिक परिवेश से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर है। गणेशोत्सव के इस पावन पर्व पर आइए, बप्पा के चरणों में नमन करें और आगे बढ़ते हैं हमारी यात्रा के अगले सुंदर से भजन की ओर।

अब चलते हैं श्री अष्टविनायक मंदिर, जो ग्राम सांवराखेड़ी सिंहस्थ बाईपास रोड उज्जैन में स्थित है। भगवान गणेश के अष्ट विनायक स्वरूपों से जुड़ा ये मंदिर गणेश भक्तों के लिए एक विशेष धार्मिक स्थल बन गया है। इस मंदिर की परिकल्पना महाराष्ट्र के प्रसिद्ध अष्ट विनायक धाम पर आधारित है। यहाँ एक ही स्थान पर भगवान गणेश के 8 स्वरूप मयूरेश्वर, सिद्धि विनायक, बल्लालश्वर, वरद विनायक, चिंतामणि, गिरिजत मास, विघ्नहर और महागणपति ये विराजमान है। मंदिर लाल पत्थरों से निर्मित है। इसके प्रांगण में प्रवेश द्वार पर भव्य हाथी और अंदर सुंदर फव्वारा तथा आकर्षक साज सज्जा इसे बेहद शांत और दिव्य बनाती है। गणेशोत्सव के दौरान ऐसे मंदिरों में दर्शन करना श्रद्धालुओं के लिए भक्ति और आध्यात्मिक अनुभव का अवसर बनता है।

तो श्रोताओं, आज के उज्जैन दर्शन में हमने जाना उज्जैन के चार प्रमुख गणेश मंदिरों के बारे में, चिंतामन गणेश, बड़े गणपति, दशभुजानाथ और अष्टविनायक मंदिर। हर मंदिर अपनी धार्मिक पहचान और आस्था के साथ उज्जैन की आध्यात्मिक परंपरा को समृद्ध करता है। गणेशोत्सव का ये पावन पर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति और मंगल लेकर आए, यही कामना है। भगवान गणेश हमारे सभी शुभ कार्यों में सफलता प्रदान करे और सद्बुद्धि का आशीर्वाद दे। इसी मंगल कामना के साथ आज के उज्जैन दर्शन से मुझे दीजिए अनुमति। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर।

FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। सुबह के 10:30 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा।

स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम महिला सभा में। नमस्कार, मैं हूं आपकी सखी कीर्ति। सखियों, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छी होंगी और अपनी रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी के बीच कुछ समय अपने लिए जरूर निकाल रही होंगी। सखियों, जिंदगी की भागदौड़ तो चलती रहती है। घर परिवार, कामकाज और अपनी जिम्मेदारियों के बीच हम अक्सर खुद से जुड़ी छोटी छोटी खुशियों के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। तो आज का ये समय सिर्फ आपका है, कुछ अच्छी बातें करने का, तो कुछ नया जानने का और थोड़ा वक्त अपने लिए निकालने का। तो चलिए, इसी खूबसूरत एहसास के साथ आज की हमारी महिला सभा की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: सखियों, आज यानी 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य बांस के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इसके पर्यावरणीय, आर्थिक तथा सामाजिक उपयोगों को बढ़ावा देना। बांस हमारी प्रकृति के लिए एक ऐसा अनमोल उपहार है जिसका उपयोग सदियों से हमारे जीवन में होता आया है। इसके साथ ही बांस से जुड़ा हुनर महिलाओं के लिए रोजगार तथा आत्मनिर्भरता का एक अच्छा माध्यम बन सकता है। सखियों, आज इसी विषय को और करीब से जानने के लिए हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं श्रीमती अंकिता व्यास, जो कि महिलाओं और बच्चियों के साथ कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो आइए उनसे जानते हैं बांस महिलाओं के हुनर और आत्मनिर्भरता से जुड़ी कुछ खास बातें।
1: कीर्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम महिला सभा में।
2: धन्यवाद कीर्ति जी।
1: अंकिता जी, सबसे पहले हमारे श्रोता आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आपने महिलाओं और बच्चों के साथ काम करने का रास्ता कैसे चुना और आपकी संस्था इस दिशा में किस तरह से काम कर रही है?
2: मैं मालवा की मिट्टी से आती हूँ और मालवा की अपनी पहचान है। आपने सुना ही होगा, मालवा माटी गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। लेकिन मेरी इस मिट्टी से जुड़ी कहानी वास्तव में 2008 में शुरू हुई, जब शादी के बाद मैं रतलाम जिले के हाटपिपरिया गांव में आई। शहर से गांव आकर जब मैंने यहां की महिलाओं की जिंदगी को करीब से देखा, या कहना चाहूंगी कि जिया, तो मुझे बहुत कुछ नया समझने को मिला। मैंने देखा कि गांव के परिवार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को संभालने में महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा है। वे खेत में काम करती हैं, पशुपालन का काम करती हैं, घर को संभालती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां उठाती हैं, यानी उनकी मेहनत हर जगह दिखाई देती है। लेकिन इसके बावजूद उनकी अपनी आवाज, निर्णयों में उनकी भागीदारी उतनी दिखाई नहीं देती। मेरे मन में एक सवाल बार बार आता था, जिस महिला का परिवार और गांव को आगे बढ़ाने में इतना योगदान है, उसकी अपनी पहचान, अपनी आय और अपनी आवाज इतनी कम क्यों है, इतनी सीमित क्यों है? यहीं से मेरे मन में यह विचार आया कि महिलाओं के साथ ऐसा काम किया जाए जिसमें उनकी क्षमता और उनका हुनर ही उनकी ताकत बने। आगे चलकर इसी सोच को मासिक के माध्यम से हमने शिक्षा, कौशल विकास और महिला आजीविका के काम से जोड़ा। बांस भी इसी यात्रा में हमारे लिए एक माध्यम बना, क्योंकि मेरा मानना है कि महिलाओं को सिर्फ प्रशिक्षण देना सशक्तिकरण नहीं है, उनके हुनर को आय से, आय को आत्मविश्वास से और आत्मविश्वास को उनकी अपनी आवाज से जोड़ना ही वास्तविक सशक्तिकरण है, और शायद यही से मेरी यात्रा भी है।
1: जी अंकिता जी, आज के हमारे विषय की ओर आते हैं, महिलाओं की स्किल डेवलपमेंट और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में बांस का क्या महत्व है?
2: बांस को अगर हम सिर्फ टोकरी बनाना, चटाई या सजावटी सामान तक सीमित कर दें, तो हम उसकी पूरी संभावना को नहीं देख पाएंगे। मेरे लिए बांस सबसे बड़ी ताकत है कि यह स्थानीय संसाधन, स्थानीय हुनर और स्थानीय आजीविका को जोड़ सकता है। मासिक के साथ आज 100 से अधिक महिलाएं हमारे बैम्बू क्राफ्ट क्लस्टर से जुड़ी हुई हैं। इनमें से कई महिलाएं पहले से काम की तलाश में मौसमी पलायन यानी माइग्रेशन करती थी। जब हमने उनके पारंपरिक हुनर को प्रशिक्षण, बेहतर डिजाइन, फिनिशिंग और बाजार की समझ से जोड़ने का प्रयास किया, तो उनके लिए अपने ही क्षेत्र में काम और आय का एक नया रास्ता बना। आज इन महिलाओं के लिए बांस सिर्फ हस्तशिल्प नहीं है, यह स्थानीय स्तर पर कमाई, सम्मान के साथ काम करने का अवसर भी है, और मेरे लिए यही स्किल डेवलपमेंट की असली सफलता है।
1: अंकिता जी, अगर कोई महिला ज्यादा औपचारिक शिक्षा हासिल नहीं कर पाई लेकिन बांस से अलग अलग उत्पाद बनाना सीखती है, तो यह हुनर उनके जीवन में किस तरह का बदलाव ला सकता है?
2: मैं हमेशा से मानती हूँ कि कम पढ़ाई का मतलब कम क्षमता नहीं है। हमारे गांव की कई महिलाओं के पास बहुत व्यवहारिक ज्ञान और हाथ का हुनर है। उन्होंने बहुत कुछ किताबों से नहीं बल्कि अपने परिवार, आसपास के लोगों और प्रकृति से सीख रखा है। अगर उसी हुनर को सही प्रशिक्षण, डिजाइन और बाजार से जोड़ दिया जाए तो वह रोजगार का आधार बन सकता है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। जब महिलाएं अपने हाथ से कुछ बनाती हैं, उनकी कीमत समझती हैं, उसे बेचती हैं और अपनी कमाई को अपने हाथों में देखती हैं, तो उनके भीतर एक आत्मविश्वास आता है। हुनर उसके हाथ में पहले से था, लेकिन जब उस हुनर को आर्थिक कीमत मिली तो तब उसे अपनी कीमत भी समझ में आई।
1: अंकिता जी, जैसा कि आपने बताया कि बांस सिर्फ टोकरी और चटाई बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कई तरह के खूबसूरत और उपयोगी उत्पाद बनाए जा सकते हैं। तो हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि बांस से किस तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं।
2: बांस की खासियत यही है कि इससे पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जैसे बास्केट, ट्रे, प्लांटर, होम डेकोर, लैंप, लाइटिंग आइटम, स्टोरेज उत्पाद, पेन स्टैंड, गिफ्टिंग और रोजमर्रा में उपयोग होने वाली कई सारी चीजें। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ उत्पादों की सूची नहीं देना चाहूंगी, आज हमें यह भी सोचना होगा कि ग्राहक को क्या चाहिए। अगर महिला बाजार की पसंद को समझकर उत्पाद बनाए, उसकी क्वालिटी और फिनिशिंग अच्छी हो, तो पारंपरिक क्राफ्ट को भी आधुनिक बाजार मिल सकता है। यानी हमारा प्रयास सिर्फ क्राफ्ट बचाना नहीं है, क्राफ्ट को लाइवलीहुड बनाना है। और जब हम यही काम समूह में करते हैं तो महिलाएं एक दूसरे को सिखाती भी हैं और एक दूसरे से सीखती भी हैं और आगे बढ़ने का उनको भरोसा भी होता है।
1: अंकिता जी, कई महिलाएं घर और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच बाहर जाकर काम नहीं कर पाती, तो क्या महिलाएं बांस के उत्पाद अपने घर से भी तैयार कर सकती हैं और इन्हें बेचकर वे अपनी आमदनी का जरिया कैसे बना सकती हैं?
2: जी हाँ, ग्रामीण महिलाओं के लिए घर या अपने गांव में काम करने की संभावना बहुत महत्वपूर्ण है। कई महिलाएं परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण बाहर जाकर नियमित काम नहीं कर पाती, इसलिए अगर काम का कुछ हिस्सा घर या स्थानीय स्तर पर संभव हो तो उनके लिए बहुत उपयोगी अवसर बन सकता है। हमारे लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को अपने परिवार और स्थानीय जीवन से अलग किए बिना आर्थिक अवसर मिले। लेकिन सिर्फ प्रशिक्षण देकर छोड़ना पर्याप्त नहीं है, महिला को उत्पाद बनाना सिखाने के साथ यह भी समझना होगा कि लागत कितनी है, सही कीमत क्या होना चाहिए, क्वालिटी कैसी रखनी है, पैकेजिंग कैसी हो, तो ग्राहक तक कैसे पहुंचाया जाए। यानी हमारी कोशिश है कि महिला सिर्फ कारीगर न बन के रुके, धीरे धीरे वह उद्यमी बने।
1: अंकिता जी, अब आते हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पर जो शायद हमारी बहुत सी सखियों के मन में जरूर आ रहा होगा। बांस से उत्पाद तो बना लिए, लेकिन इन्हें बेचे कहाँ, इन उत्पादों का बाजार कहाँ मिलेगा?
2: मुझे लगता है कि किसी भी लाइवलीहुड प्रोग्राम की सबसे बड़ी परीक्षा ट्रेनिंग के बाद ही शुरू होती है। हुनर सीख लेना उपलब्धि है, लेकिन उस हुनर को नियमित आय बनाना असली सफलता है। इसके लिए स्थानीय बाजार, मेले, प्रदर्शनियां तो महत्वपूर्ण है ही। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भी ग्रामीण उत्पादों के लिए नए रास्ते खोले हैं, लेकिन बाजार से जुड़ने के लिए केवल उत्पाद बनाना पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को यह समझना होगा कि ग्राहक कौन है, उनकी पसंद क्या है, कीमत कैसे तय करनी है, उत्पाद को कैसे प्रस्तुत करना है और ऑर्डर को कैसे पूरा करना है। मासिक इसी पूरी यात्रा को देखने की कोशिश करता है। हम नहीं चाहते कि महिलाओं के हाथ से बना इतना सुंदर उत्पाद किसी कोने में पड़ा रहे। जिस हाथ ने उत्पाद बनाया है उस हाथ तक उसकी सही कीमत भी पहुंचे, यही बाजार से जोड़ने का हमारा उद्देश्य है।
1: अंकिता जी, आज का हमारा आखिरी सवाल जो कि हमारे सभी श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विश्व बांस दिवस क्यों मनाया जाता है, पर्यावरण की दृष्टि से बांस का क्या महत्व है?
2: विश्व बांस दिवस पर हमें बांस को केवल एक पौधे या हस्तशिल्प के रूप में नहीं, बल्कि पर्यावरण और आजीविका दोनों नजरिए से देखने का अवसर देता है। बांस की खासियत यह है कि यह कम संसाधनों और अपेक्षाकृत कम देखभाल में तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। इसकी जड़ें मिट्टी को बांधने में मदद करती हैं, इसलिए मृदा का कटाव रुकता है। जमीन को सुरक्षित रखने में भी बांस बहुत उपयोगी होता है। इसके अलावा बांस से बनने वाले अनेक उत्पाद प्राकृतिक और इको फ्रेंडली विकल्प देते हैं। टोकरी, ट्रे, प्लांटर, लैंप, एम्पलीफायर, ज्वेलरी और रोजमर्रा के उपयोग होने वाले कई सारे सामान हम बांस से बना सकते हैं। इसलिए बांस की कहानी सिर्फ जंगल या खेत तक सीमित नहीं है, यह प्रकृति, संसाधन, हस्तशिल्प और आजीविका, इन सबको जोड़ती है। और मुझे लगता है कि आज हमें विकास को इसी नजर से देखने की जरूरत है, जहां प्रकृति और आजीविका एक दूसरे के विरोध में न हो बल्कि साथ चले। हमारी यही मालवा माटी हमें सिखाती है कि स्थानीय संसाधन और स्थानीय हुनर की अपनी एक ताकत होती है। वर्ल्ड बैम्बू डे पर मेरा संदेश यही है, बांस को सिर्फ एक पौधे की तरह मत देखिए, इसे प्रकृति की ताकत, हुनर की पहचान और स्थानीय आजीविका की संभावना के रूप में देखिए। और जब बांस किसी महिला के हाथ में आकर उसके परिवार के लिए आय का जरिया बनता है तो यह सिर्फ एक उत्पाद नहीं, यह प्रकृति और इंसान के बीच एक सुंदर रिश्ता बन जाता है। धन्यवाद।
0: धन्यवाद अंकिता जी, उम्मीद है आपकी जीवन यात्रा की कहानी और हमारी आज की चर्चा हमारी सखियों के लिए प्रेरणादायक रही होगी। सखियों, चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे इस खूबसूरत गीत के बाद।

सखियों, आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसके बिना हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और वो है पानी। लेकिन आज हम पानी के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं? तो सखियों, आज के दिन एक और खास दिवस मनाया जाता है, विश्व जल निगरानी दिवस। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, आखिर पानी की निगरानी करना क्यों जरूरी है? तो सखियों, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी दिनचर्या का शायद ही ऐसा कोई काम हो जिसमें पानी की ज़रूरत न पड़ती हो। सुबह की चाय से लेकर खाना बनाने तक, नहाने से लेकर कपड़े धोने तक, हर जगह पानी हमारे साथ है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जिस पानी को हम इतनी आसानी से नल खोलकर इस्तेमाल कर लेते हैं, वह वास्तव में कितना अनमोल है? सखियों, अक्सर हम सोचते हैं कि घर में तो बस थोड़ा सा पानी ही बर्बाद होता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यही छोटी छोटी बर्बादी जब लाखों करोड़ों घरों में होती है तो उसका असर भी बहुत बड़ा होता है। इसलिए पानी बचाने के लिए हमेशा किसी बड़े अभियान की जरूरत नहीं होती। शुरुआत अपने घर से और हमारी छोटी छोटी आदतों से हो सकती है। जैसे कि अगर नल खुला छोड़कर हम ब्रश कर रहे हैं तो उतनी देर बहने वाला पानी आसानी से बचाया जा सकता है। बर्तन धोते समय लगातार तेज धार में पानी बहाने के बजाय जरूरत के अनुसार पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। कपड़े धोते समय भी हम कोशिश कर सकते हैं कि मशीन को बहुत कम कपड़ों के लिए बार बार न चलाएं, और घर में कहीं नल या पाइप से पानी टपक रहा हो तो उसे नजरअंदाज न करें। एक छोटी सी लीकेज भी लगातार पानी की बर्बादी कर सकती है। और सखियों, रसोई में भी पानी बचाने के कई मौके होते हैं। सब्जियां या फल धोने के बाद बचा हुआ साफ पानी पौधों में डाला जा सकता है। इसी तरह आरओ से निकलने वाले अतिरिक्त पानी को भी बेकार बहाने की बजाय जहां उपयुक्त हो सफाई या दूसरे घरेलू कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जरा अपने बच्चों के बारे में भी सोचिए। हमारे बच्चों को हम बहुत सारी अच्छी आदतें सिखाते हैं, तो क्यों ना उन्हें एक और ज़रूरी आदत सिखाएं, पानी की कद्र करना। अगर आज हम अपने घर में पानी की एक एक बूंद का महत्व समझेंगे तो कल हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे, और शायद यही छोटी सी सीख आगे चलकर बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। बूंद बूंद से सिर्फ घड़ा ही नहीं भरता, बूंद बूंद से हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है। तो आइए हम सब मिलकर आज एक छोटा सा संकल्प लें, पानी की हर बूंद का सम्मान करेंगे, जरूरत के अनुसार ही पानी का इस्तेमाल करेंगे, और पानी की बर्बादी रोकने की शुरुआत हमारे अपने घर से करेंगे। सखियों, अब समय है एक म्यूजिकल ब्रेक का, तो सुनिए ये प्यारा सा गीत।

सखियों, हमारे घरों में ना शाम का समय कुछ खास ही होता है। दिन भर के कामकाज के बाद शाम होते होते हल्की फुल्की भूख तो लग ही जाती है। ऐसे में अगर चाय के साथ कुछ चटपटा और स्वादिष्ट मिल जाए तो शाम और भी मज़ेदार हो जाती है। तो क्यों ना चाय के साथ कुछ ऐसा बनाया जाए जो स्वादिष्ट भी हो, झटपट तैयार भी हो और थोड़ा हल्का भी हो। तो आज की हमारी रेसिपी भी कुछ ऐसी ही है, शाम की हल्की फुल्की भूख के लिए मखाना चाट। सबसे पहले मखानों को धीमी आंच पर कुरकुरा होने तक भून लीजिए। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर और हरा धनिया डालें। फिर थोड़ा सा नींबू का रस, भुना हुआ जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार चाट मसाला डालकर सब कुछ अच्छी तरह से मिला लें। बस कुछ ही मिनटों में तैयार है हमारी चटपटी, कुरकुरी और स्वादिष्ट मखाना चाट। आप इसे शाम की चाय के साथ आराम से मज़े लेकर खा सकती हैं। यह रेसिपी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को खूब पसंद आएगी। इसी के साथ सखियों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आप हमें पत्र भेजकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। पता है महिला सभा, आकाशवाणी, विद्यापति नगर, उज्जैन, 456010। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चटपटी, मज़ेदार और काम की बातों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम महिला सभा आकाशवाणी उज्जैन से FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है, FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। श्रोताओं, सुबह के 11 बजने को है, अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार।

परवरिश फिल्म से ये कव्वाली आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और सखियों की आवाजें थी। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं रंग तरंग।

फिल्म बाजार की ये गजल आप सुन रहे थे भूपेंद्र की आवाज में। बशर नवाज की लिखी ये गजल थी, खयाम की तर्ज थी। रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

0: मिस्टर सिंह, मिसेस मेहता, इस एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे ऋचा शर्मा की आवाज़ में। अमिताभ वर्मा के बोल थे, उस्ताद हुसैन खान की ये तर्ज थी।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिरदर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका MRI करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

सजना इस एल्बम का गीत है आवाज श्वेता शेट्टी की। यशपाल तनवर के बोल हैं, डीजे मूडी का संगीत।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती का ये कार्यक्रम है रंग तरंग। बेगम अख्तर की आवाज में ये दादरा।

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिरदर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका MRI करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

वादा रहा। इस एल्बम में आप सुन रहे हैं बाबू मान की आवाज, गीतों संगीत बाबू मान के, और यही है तंग तंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। श्रोताओं,

0: ये विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डियल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
1: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HJT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। एक रिपोर्ट।
3: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से AI को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि AI की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। दुष्प्रचार करने वाले पाकिस्तानी अकाउंट द्वारा प्रसारित एक फर्जी वीडियो का सरकार ने खंडन किया है। इस वीडियो में कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश को दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी और AI से निर्मित बताया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली तेजी देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 113 अंक बढ़कर 74,427 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर के गाए गाने से। बोल निदा फाजली के हैं, संगीत उषा खन्ना का और फिल्म स्वीकार किया मैंने।

स्वीकार किया मैंने इस फिल्म का गाना। आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। और आपको याद दिला दें, आज जानी मानी अदाकारा शबाना आज़मी का जन्मदिन है। तो चलिए विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें देते हैं जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, और आज का ये कार्यक्रम उन्हीं के नाम करते हैं। सुनिए अगला गीत।

0: फकीरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
1: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
3: दिल तो पागल है,
1: दुश्मन
4: चिट्ठी न कोई संदेह,
1: गदर एक प्रेम कथा,
5: मैं निकला ओ गड्ड लेके,
1: पिंजर
6: मार उड़ाती, मार उड़ा।
1: दास्तान बेमिसाल संगीत की,
7: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।
1: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

एक मूड, एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजू से धुन की लकीरें खींच दो, तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है गाने की, एक लम्हे के जितनी। हां, कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुरियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो कहते हैं, हां वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी,

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका एमआरआई करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज शबाना आजमी जो जानी मानी अदाकारा हैं उनका जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम बधाई दे रहे हैं और उन्हीं के नाम आज का यादों की महफिल कार्यक्रम। ये लिबास फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर और सुरेश वाटकर की आवाजें, गुलजार के बोल, राहुल देवर्मन का संगीत।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में ये था गुलजार का लिखा गाना, संगीतकार राहुल देव बर्मन और फिल्म थी लिबास। लीजिए अब पेश है अर्थ फिल्म की एक गजल जगजीत सिंह की आवाज में, कैफी आजमी के बोल कुलदीप सिंह की तर्ज है।

0: जंबो जेट जंबो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
0: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही चुका है कि ये इस प्रोग्राम में हम एक टेक्स्ट यानी इबारत लिखते हैं, उसमें से आपको शब्द और गाने ढूंढने पड़ते हैं। तो चलिए हम इबारत आपको पढ़ के सुना देते हैं आज की, जिन्होंने पढ़ी नहीं है इबारत। उसने डायरी के एक पन्ने पर कोई अफसाना लिखा था, खामोश अफसाना। मेरी निगाहें यानी नजरों ने चुपके से उसे पढ़ लिया था, लेकिन न बोला कुछ। उसकी खामोश आंखें कुछ कह रही थीं। उसकी आंखों में जाने कितने सवाल थे और शायद किसी जवाब का इंतजार भी। मैंने कहा, चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। उसने नजरें फेर ली और मुस्कुराकर डायरी को छुपाकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों ने कहा, हम इंतजार करेंगे, छोटी सी दुनिया पहचाने रास्ते, कहीं तो मिलोगी। हम दोनों की अपनी एक छोटी सी दुनिया थी, जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी, बस आंखें थी, इंतजार था और अधूरा अफसाना। फिर हम बिछड़ गए, लेकिन बिछड़ना फिर मिलना जिंदगी का दस्तूर है। एक अजीब शाम जब वो मिला तो जिंदगी खूबसूरत हो गई। अब जरा बताइए दोस्तों, किस मोड़ पर मिला वो, मिला या नहीं मिला, ये आपको पूछना है। आप सभी से ये सवाल है, आंखों से कैसी हुई बातें, दीजिए इन सवालों के जवाब। बोलती हैं आंखें जब हम नहीं बोलते। और आज ये भी बताइए कि डायरी के पन्ने पर आपने क्या कुछ लिखा, और आंखों से कब आप बोलते रहे, किससे आपने आंखों से गुफ्तगू की, और आंखों की भाषा कब आपने समझी। कई बार प्रेम के ऐसे लम्हे आते हैं जब आंखों की भाषा समझ में आती है। कई बार ऐसा लम्हा भी आता है जब माँ आंखों से कुछ कहती हैं और

आप डर जाते हैं और उनकी बात आप मान लेते हैं, तो आंखों वाली भाषा कब आपने बूझी, कब आपने बुझाई, और साथ में डायरी के पन्ने पर क्या कुछ लिखा है जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। अब जरा सुनिए गाना और बताइए इसमें कौन है कलाकार।

आपको बताना है फिल्म का नाम। संगीतकार का नाम पता है तो वो भी बताइए। गाना तो आपने बूझ लिया होगा कौन सा गाना है।

दिया फासले और कुछ श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में, जहां डायरी में लिखे अफसानों की बातें होंगी। क्या होता है जब आपकी डायरी चुपके से पढ़ ले कोई, क्या होता है जब हम आंखों से किसी के भीतर क्या चल रहा है पढ़ लेते हैं, तो नजरों से पढ़ने को किसे कितना इल्म है। तो सुरीले सफर में गीतों के माध्यम से जानते हैं, बिल्कुल जानिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि सारे श्रोता अपने दिल की बात बताएं और बताएं कि आंखों से कौन सी भाषा आपने कही, सामने वाले ने समझ ली, किससे कही, और आपने कब समझी आंखों की भाषा, किसकी, पत्नी की, प्रेमिका की, अपने माँ की, पिता की, भाई की वगैरह। और एक श्रोता ने लिखा है कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, तेरी आंखों की चाहत में गानों के बहुत सारे बोल लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है अफसाना, नजरें, आंखों, चुप, छोटी, इंतजार, शाम, जिंदगी, हो सकते हैं आज के शब्द। आज के शब्द ढूंढना तो बहुत आसान है और गाने चुनना भी बहुत आसान है। बहुत सारे श्रोता चुन भी रहे हैं और हम उन श्रोताओं के गानों को शामिल भी कर रहे हैं अपनी प्लेलिस्ट में, क्योंकि आज हमने सोचा था कि आपके चुने हुए गानों से ही अपनी प्लेलिस्ट बनाएंगे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आंखों आंखों में बात होने दो, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना कितना विशिष्ट होता है, कितना असाधारण, वो भी जब खामोश सा कोई अफसाना डायरी में दर्ज करना हो। श्यामल रातों में जलने वाले दीपक की लौ देखकर प्रेमी का इंतजार करना, कुछ प्रतीक्षा जीवन का आकार ले लेती है, वो समाप्त नहीं होती। प्रतीक्षा में शब्द नहीं होते, वे तो प्रकट होते हैं हवा की थरथराहट से, मोबाइल की हल्की कंपन से। प्रतीक्षा में धीरज नहीं, एक बेचैन ठहराव होता है। बरामदे में बैठी प्रियतमा हर सांझ सड़क की ओर देखती है, वही मोड़, वही पेड़, वही धूल से भरा रास्ता, वो जानती है वो आएगा फिर से। तो इसमें आज की इबारत में हमने बहुत सारे सवाल भी पूछे हैं, इन्होंने जवाब भी दे डाला है कि वो आएगा। हमने ये भी पूछा है कि कब आएगा, कैसे आया और किस मोड़ पर आया, और डायरी के पन्नों में आपने क्या कुछ अंकित किया, गाने के बोल, फिल्म का नाम, कहानी, कविता, या अपनी दिनचर्या, या फिर अपनी कोई दुखद बात, या कोई बहुत खुशगवार लम्हा, बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। फिलहाल बताइए कौन है हीरो हीरोइन।

अनपढ़ फिल्म का गाना था और हमने पूछा था कौन है कलाकार हीरो हीरोइन का नाम। अभी तक श्रोताओं की ओर से बहुत जवाब नहीं आए तो हम इंतजार करेंगे, अगले गाने के बाद आपको बताएंगे सही जवाब। तब तक आप लिख सकते हैं इस फिल्म में कौन थे कलाकार, इसका जवाब आप लिख सकते हैं और हम आपको बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे डायरी लिखने की आदत तो नहीं पर अपनी पसंदीदा गीतों को विविध भारती से सुन सुनकर नोटबुक में नोट जरूर करती थी ताकि उन्हें पढ़कर गा सकूं। इस तरह से काफी सारे नोटबुक का कलेक्शन हो गया था और कितने गीत मुजबानी याद भी हो गए। फिर समय के साथ बहुत कुछ बदल गया, अब तो सब कुछ मोबाइल में मौजूद है। तो जरा आज ये जो इबारत है इसमें जो शब्द हैं शब्दों से गाने याद कीजिए जो डायरी में आपने लिख रखे नोट किए हैं गाने के बोल फिल्म का नाम, तो कोई ना कोई गाना तो इसमें होगा, लिखिए और हम उसे अपनी प्लेलिस्ट में शामिल करके आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी श्रोताओं से ये अनुरोध है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफर में अफसाने के निगाहों के चुपके से देखने खड़े रहने के एक मोड़ पर मिलना बिछड़ने की छोटी सी दुनिया में कभी तो मिलने के खामोशी से आंखों से देखने के गीत एक गुलदस्ते के समान सुनने को मिले। धन्यवाद, मेरा नाम लिखा है। धन्यवाद, तो आप सभी को हम कह रहे हैं कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हैं। और हाँ, जो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं उसके जवाब भी देते चलिए और जो गाने हैं शब्द हैं शब्दों को चुनते चलिए और गाने के बोल लिखते चलिए। अब जरा सोचिए कि ये गाना आपने याद किया था आज, मुझे तो अब तक ये गाना नहीं नजर आया था लेकिन हमने सोचा कि ये गाना बजा कर देखते हैं। आप में से कितने लोग इस गाने को सुनते हुए कौन सी बात याद कर सकते हैं, डायरी वाली बात या जो इबारत में हमने सवाल पूछा है कि वो मुलाकात किस तरह से हुई, जो बिछड़ गया राही तो वापस मिला तो कहाँ, किस मोड़ पर, कैसे मिला, कैसे मुलाकात हुई और आंखों से कौन सी बात कही। फिल्म का नाम बूझिए, किसकी है आवाज ये भी बूझिए, दो आवाजें हैं। विविध भारती से किस प्रोग्राम में ये गाना सुना था ये भी बताइएगा।

भाई वाह, लगता है ये गाना हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आया। बहुत त्वरित जवाब आने शुरू हो गए। बड़ी बहन फिल्म का नाम फटाफट लिखा हमारे श्रोताओं ने, और साथ में लता मंगेशकर और प्रेम लता की आवाजें हैं, और बहुत लोगों ने ये लिखा है कि भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में बजता है ये गीत। और एक श्रोता ने लिखा है कि परसों ही तो ये गाना भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुना था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी यादों की डायरी में निम्नलिखित गीत हैं, प्रेम है, प्रेम पिया, और कोरा कागज था मन मेरा, मेरे महबूब वगैरह वगैरह गानों की लंबी फहरिस्त इन्होंने लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो गाना आपने सुनवाया था आपकी नजरों ने समझा, अनपढ़ फिल्म का, माला सिन्हा और धर्मेंद्र, ये जवाब बिल्कुल सही दिया है। और ये जवाब एक ही श्रोता नहीं बल्कि बहुत सारे श्रोताओं की ओर से आ चुका है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, लेकिन इस गाने में चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है, तो ये जो चुप की भाषा है, खामोशी की भाषा है, ये बड़ी अहम होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो ज़रा बताइए कि आप कब खामोश रहकर बहुत कुछ कह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लम्हात हैं हमारी ज़िंदगी में जब हम कुछ नहीं बोलते लेकिन फिर भी बहुत कुछ बोलते हैं, और नज़रें बोलती हैं, आँखें बोलती हैं, आप नहीं बोलते हैं। तो कौन सा ऐसा लम्हा, कौन सी ऐसी घड़ी आई जब आप चुप होकर जवाब देते हैं? कई बार तो कोई करारी बात होती है, कोई ऐसी बात होती है जो दिल दुखाने वाली बात होती है, फिर भी आप चुप रह जाते हैं, लेकिन आपकी वो खामोशी बहुत कुछ कह जाती है।

0: एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना कितना विशिष्ट होता है, कितना असाधारण, वो भी जब खामोश सा अफसाना डायरी में दर्ज करना हो। ये टिप्पणी पहले आ चुकी है और आप तक पहुंचा चुके हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि पानी पे लिखा खामोश अफसाना जो शबाना दी के लिए, उनकी हिरनी सी बड़ी बड़ी आंखों में उजालों के दिए जलते, एक खूबसूरत से ख्वाब आंखों में पले, मुस्कुराए वो खिलखिला के तो आसमां से चांदनी के नूर बरसने लगते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर हम चुप रहकर जवाब देने की कि और आंखों की भाषा की नजरों की बात, तो जरा सुनिए ये गाना और बूझिए फिल्म का नाम और बताइए किसकी आवाज में है ये गाना।
1: नजरों से कह दो जी।

फिल्म थी 20 साल बाद और वहीदा रहमान विश्वजीत थे कलाकार। हमारे श्रोताओं ने ये जानकारी भी दी है और सही जानकारी दी है। वाह, एक श्रोता ने लिखा है वाह मेरा चयनित गीत, ये तो बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। हेमंत कुमार की आवाज़ थी और शकील बदायूनी के बोल थे, हेमंत कुमार का ही संगीत था। गज़ब के बोल थे, ज़रूरत क्या तुम्हें तलवार और खंजर की, तो क्या ऐसी आँखें ऐसी निगाहें आपके इर्द गिर्द भी हैं? जब आप किसी की आंखों की तारीफ करते हैं तो यूं जरा बताइएगा, ये भी आज अपने दिल की बात कह डालिए खामोशी से, नजरों की बात भी कह डालिए खामोशी से। एक श्रोता ने लिखा है कि 20 साल बाद जरा नजरों से कह दो जी, एक सदाबहार क्लासिक है इस गीत को, मशहूर गायक हेमंत कुमार ने मखमली आवाज दी है, इसका संगीत भी उन्होंने तैयार किया था, क्या खूब लिखा है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि डायरी लिखना भाव प्रवणता की निशानी है, और बहुत सारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि डायरी तो लिखी लेकिन फिल्म के नाम और गीत के बोल लिखे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। कई बार हमें गाने नहीं याद होते हैं तो उस समय हम डायरी के पन्ने पलट लेते हैं, हालांकि आजकल पन्नों की ओर कौन जाए, मोबाइल के ही नोटपैड में लिख लिया करते हैं, लेकिन नोटपैड भी, मोबाइल का नोटपैड भी एक तरह का डायरी का काम किया करता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे तो कमेंट भी खामोश रह जाते हैं, जरा कुछ लिखिए तो सही, खामोश नहीं बिल्कुल बोलते हुए नजर आएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि माँ की आंखें बच्चों को पता चल जाती हैं कि माँ किस मूड में हैं, और टीचर की निगाहें, उसका जिक्र भी तो कीजिए कि टीचर आज किस मूड में हैं। कुछ टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे तो उनकी पोशाक पहनकर हम अंदाजा लगाया करते थे कि अरे आज मिस ने ये वाली साड़ी पहनी है, इस दिन तो गुस्सा करती हैं तो आज जरूर गुस्सा करेंगी, ऐसा भी होता था। तो कौन सी आपकी टीचर हैं जिनकी निगाहों से आपको डर लगता था, लेकिन अदब बहुत करते थे, उनके प्रति प्रेम भाव स्नेह भाव बहुत होता था। ये आपको अपने अनुभव साझा करने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि विभिन्न मुल्कों में हर देश की एक निर्धारित सरहद हुआ करती है और उस सरहद के निगहवान आंखें ही होती हैं। यहां ध्यातव्य है कि देशों ही द्विविधा, और तात्पर्य देश को भूमि के साथ ही साथ आतुर भी कहा जाता है। आतुर तो ये शरीर ही है, प्रणय में फिर ऐसी ही आतुरता देखी जाती है, जिसके निगहबानी का भरोसा जब प्रेमियों के बीच पनपता है तभी प्रणय साकार होता है। जरा आसान भाषा में लिख दीजिए भाई, ताकि हमारे सारे श्रोता समझ लें ये बात। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आंखों की होंगी बातें जिनके बिना जीवन वीराना लगता है, कल्पना कीजिए कि वे कैसे जीते होंगे जिनको ये सुख प्राप्त नहीं होता। आज ये गीत सुनने की तमन्ना है, 1964 की फिल्म है शबनम का गीत, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम। चलिए फिर यही गाना सुन लिया जाए। कई श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है और बहुत सारे श्रोता बहुत सारे गाने लिख रहे हैं, तो आप अपने गानों की डायरी खोलिए और उसमें से गाने चुनिए, आप जो सुझाव देते रहेंगे वही गाना हम सुनवाएंगे। सुनिए शबनम फिल्म का गाना, बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम। अगली कौन सी फिल्म हो, अगला कौन सा गाना हो, जरा बताइएगा। आंखों की चुप रहने की, खामोशी की, अफसाना की, बहुत जल्द बताइए ताकि हम गाना प्लेलिस्ट में डाल सकें, अगली फिल्म का नाम।

शबनम फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज, जावेद अनवर के बोल, उषा खन्ना का संगीत। हमारे सुधी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दे दिया, गीतकार और संगीतकार का नाम बिल्कुल सही सही। एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो अपने फिजिक्स के टीचर से डरते थे और उनकी आंखें भी बहुत अलग ही, सिर्फ हम ही नहीं सभी बच्चे उनकी आंखों और उनकी उनसे डरते थे। अभी भी याद है वो टीचर हमें। लेकिन एक बात यहाँ जोड़ना चाहेंगे, टीचर से डर लगे जो स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, लेकिन असल में उनसे आप असली ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके डर से आप बहुत सारी पढ़ाई कर ले जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है तिरछे नैनो वाली बीबी भोली भाली, और एक श्रोता लिख रहे हैं कि एक गाना है चुप हो जा अमीरों के सोने की घड़ी फिल्म बंदी। और अभी जो हम आंखों की बात कर रहे थे तो आंखों वाले गाने भी आप सुझाइए ताकि हम वो गाने हम सुनवा सकें। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले मैं जो भी फिल्म का गीत पसंद होता था लिख लेती थी, इस तरह मेरे पसंद के गीतों की डायरी तैयार हो जाती थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी की क्लिष्टता ही उसकी सुंदरता है। दरअसल हिंदी की क्लिष्टता सुंदरता नहीं कह सकते हैं, बल्कि ललित लालित्य जो होता है वो सुंदरता को निखारता है। शब्दों का लालित्य, भाषा का लालित्य, भाव का लालित्य। एक श्रोता की टिप्पणी है, जब मोबाइल नहीं था तब सखी सहेली में जो गाने बजते थे वो बहुत ही बढ़िया हुआ करते थे, और फिल्म के नाम के साथ गाना हम नोटबुक पे नोट कर लिया करते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि वो मिला तो, पर शायद हकीकत में नहीं बस ख्वाबों में, पर क्या उसे मिलना कहेंगे। कई बार ख्वाबों में मिलना भी तो मिलना होता है, ख्वाब कई बार हकीकत में ढल जाते हैं और कई बार ख्वाब हकीकत से लगते हैं, हकीकत ख्वाब सा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है, अफसाना लिख रही हूँ, चुप चुप खड़े हो हम इंतज़ार करेंगे, छोटी सी दुनिया, आंखों आंखों में बात, ज़रा नज़रों से कह दो वो शाम कुछ अजीब थी। अब बस बहुत सारे गाने हैं, इतने गाने अगर पढ़कर सुनाऊंगी तो फिर बाकी टिप्पणियों का क्या होगा। लेकिन आप गाने सुझाते रहिए ताकि हम अपनी प्लेलिस्ट को समृद्ध करते रहें आज के इस प्रोग्राम के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि समय बलवान है, जब मैं स्कूल और कॉलेज में था तब मेरी डायरी में लिखने की अच्छी आदत थी, कवियों की कविताएं, कोटेशंस, अखबारों के अच्छे लेख, देश विदेश के घूमने के स्थलों की जानकारी, जनरल नॉलेज के विशेष और अपने दिमाग से लिखी खुद की कविताएं। एक चीज आपने नहीं जोड़ा कि अखबार की कतरने भी इकट्ठी की जाती थी, कॉपी या डायरी में अखबार की कतरने बाकायदा कैंची से काटकर उसे चिपका दिया करते थे, और जब डायरी के पन्ने पलटते थे तो वो जानकारी सामने आ जाती थी, और जब कोई खास निबंध या आलेख लिखना होता था तो वो पन्ने पलट लिए जाते थे। आप में से बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने डायरी में वो अखबार की कतरने संभाल कर आज भी रखी हैं, और कितने लोग हैं जिन्होंने उस डायरी को फेंक दिया या रद्दी में बेच दिया। उस डायरी में ऐसे लगता था कि जान होती थी, प्राण वायु होती थी डायरी। वो डायरी बड़ी अनमोल होती थी कि बड़े होने पर भी उस डायरी की अहमियत, मतलब जब याद आती है तो ऐसे लगता है कि वो डायरी किसी व्यक्ति की तरह है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी के आने का इंतजार भी कितना प्यारा होता है, दरवाजे पर नजर रहती है, हर आहट पर लगता है शायद वही आए हैं, पता नहीं वो कब आएंगे, मगर मन उनकी राह देखना नहीं छोड़ता। इंतजार में एक मीठी सी खुशी होती है क्योंकि दिल में किसी अपने के आने की उम्मीद जो होती है। अब निगाहों की, आंखों की बातें और गाना भी वही। फिल्म का नाम है घर, आपको पूछना है कौन है हीरो कौन हीरोइन। गाने के बोल तो समझ में आ गए होंगे इस इंटरल्यूड म्यूजिक के साथ ही। बताइए कौन है गीतकार और संगीतकार।

घर फिल्म का गाना था, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी। गीतकार गुलजार, संगीतकार राहुल देवर्मन, बिल्कुल सही जवाब आया है। और हीरो हीरोइन का नाम भी हमने पूछा था, विनोद मेहरा, रेखा। सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि अखबार में कुछ नई जानकारी या कोई प्रिय नायक नायिका हो तो अखबार को काट लिया करते थे, अब तो नहीं करते। मेरी बहन तो अभी भी पकवान की रेसिपी काट कर रख लेती है और फ्रिज पर चिपका देती है ना क्योंकि अक्सर यही होता है कि अखबार की कटिंग काट कर फ्रिज पर चिपका देते हैं, लेकिन कई बार भूल भी जाया जाता है कि अखबार की कटिंग रखी है कुछ नया बनाने के लिए, क्योंकि अब मोबाइल है, मोबाइल में गूगल पर जाकर नई नई रेसिपी मिल ही जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आंख मिली तो दिल धड़का फिल्म नागरानी, फिल्म का अन्य नाम कोबरा गर्ल, संगीत श्रीनाथ त्रिपाठी। इस गाने के लिए अपने शास्त्रीय रागों पर आधारित शैली के बदले चित्रगुप्त की सहायता से उन्होंने अरेबियन शैली का संगीत बनाया था और आशा जी की मौलिक गायन शैली और रागिनी का नृत्य। इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यारी निगाहों से मैं देखता रह गया था कुछ देर जब मैं पहली बार मिला था सगाई से पहले अपनी होने वाली धर्मपत्नी को, जब वो मुस्कुराई तो मैं चुप नहीं रहा और खूब बातें की थी। लेकिन एक चुप की भाषा भी होती है, खामोशी की भाषा भी, जब बोलने से पहले जो भाषा होती है वो होती है आँखों की भाषा, और जब दिल मिलते हैं तब आँखों की भाषा बोलती है बड़ी खूबसूरती के साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने टीचर की बात कही तो मैं बता दूं कि बीएड करते समय हमारी उम्र 20-21 की थी और हमारे क्लास में जो लेक्चरर नई नई आई थी वो भी बीएड पास करके टेम्प्ररी बेसिस पर आई थी, बला की खूबसूरत थी, उनकी आंखें बिल्कुल चपल हिरणी सी थी और वो आंखें बोलती आंखें थी। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और रोमांटिक गानों में से एक है। इस गीत को गुलजार साहब ने लिखा है। और एक श्रोता की टिप्पणी है कि मैं टीचर को हमेशा सताया करते थे, एक तो अपने भाई बहनों से हम बेहद प्यार करते थे और बचपन में मैं बहुत शरारती थी तो मैं अपनी आंखों से ऐसे इशारे करती थी कि सारे भाई बहन की परिचय फिल्म वाले सीन चालू हो जाते थे। मुझे नैनो वाली ने मतलब ये गाना सुनना चाहते हैं। चलिए अब फिलहाल जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं इसकी भी फरमाइश की है एक तरह से हमारे श्रोताओं ने, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, तो ये गाना हम सुनवा रहे हैं। आपको बूझना है फिल्म का नाम और बहुत जल्द बताइएगा क्या है फिल्म का नाम और आवाजें किसकी हैं, किन आवाजों में गाना है और फिल्म का नाम।

बाबुल फिल्म का गाना था, तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाजें थी। हमने यही सवाल पूछा था, कुछ श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है और कुछ श्रोताओं ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन से ही खाना बनाने का बड़ा शौक था, किताबों में कोई नई रेसिपी आई तो मैं उसको काटकर डायरी में चिपका लेती थी, अगर नहीं काट पाती थी तो कॉपी पर लिखकर इसकी कटिंग करके चिपका लेती, यही मेरे पास आज भी धरोहर की तरह रखी हुई है। जब मैं ससुराल गई तो उसी कॉपी को ले गई, पापा चिढ़ाते थे ये क्या रेसिपी पढ़ पढ़ कर खाना बनाओगी। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे बाजार फिल्म के गीत की पंक्तियां बहुत पसंद है, गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, तरसती आंखों से रास्ता किसी को देखेगा, और ये आज की इबारत से मैच भी कर रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि वो तो हमने भी चिपकाया था, पर रेखा के चित्र जहां भी कटिंग मिलती थी बस काटा और बायोलॉजी की फाइल में चिपका दिया, और उसे सजाया भी करते थे कलर के पेन से, कोई गोल कटिंग बीच में और चार साइड में, बहुत समय तक फाइल हमारे पास रही। क्या कभी आपने किसी कॉपी में जो छोटी सी नोटबुक हुआ करती थी उसमें एक तरफ फूल पत्ती ले आके चिपकाते थे और एक तरफ उसमें गानों के बोल लिखते थे, और कई बार संगीत की कॉपी में ऐसा बहुत किया जाता था जब वो आपको परीक्षा में वो कॉपी सबमिट करनी होती थी तो उसकी बड़ी सजावट होती थी। तो आप अपने यादें ताज़ा कीजिए और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, फिल्म है ये रात फिर ना आएगी। आपको बताना है कौन है पर्दे पर गा रहे हैं ये गाना। बात मिलने की है यहाँ पर, और आज की इबारत से कौन सा शब्द है जो इस गाने में आ रहा है, कौन से शब्द आपको बूझना है। हीरो हीरोइन का नाम

ये रात फिर ना आएगी। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, SH बिहारी के बोल थे। और हमने आपसे पूछा था कौन है हीरोइन और कौन है हीरो, शर्मिला टैगोर और विश्वजीत। हमारे श्रोताओं ने सही जवाब लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि वो शाम बड़ी खूबसूरत थी, जाने पहचाने रास्तों पर चलते हुए अचानक ही वही चेहरा सामने था, बरसों बाद मिले थे, मगर आंखों ने जैसे एक पल में सारी दूरी तय कर ली। उसके हाथ में वही डायरी थी, वही खामोश अफसाना जिसे कभी मेरी नजरों ने चुपके से पढ़ लिया था। उसने कुछ नहीं पूछा, मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में वही पुराना इंतजार था। एक श्रोता ने लिखा है कि वो डायरी थी मेरी, एक मेरी डायरी थी, फिल्मी गीत थे उसमें, और दूसरी डायरी थी जिसमें गजलें लिखती थी, और एकल गायक गायिका को एक रंग के पेन से और युगल स्वरों को दो रंग के पेन से, सामूहिक स्वरों को कई रंगों के पेन से लिखा करते थे। मुझे गीत, खासकर सभी पुराने गीत बहुत पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार हुआ यूं कि हमें किसी की बात पर डांट पड़ी कि तुमने ये सही नहीं किया, और हम गुस्सा होकर बैठ गए, आंखों में आंसू भी आए।

बुआ जी ने डांटा। उधर से पापा देख रहे थे और इशारे में कह रहे थे छोड़ो ये सब, बहन के सामने कह रहे थे, पर फिर हम चुप हो गए। मतलब आंखों की भाषा से इन्होंने समझ लिया। अब सवाल जवाब का सिलसिला, बताइए कब आप जरूरत से ज्यादा सवाल करते हैं, कब आप जवाब देने से कतराते हैं।

भाई, ये सवाल जवाब का सिलसिला था। बताइए, आप कब मतलब उम्र के किस पड़ाव में ज़्यादा सवाल किया करते थे? वैसे बच्चे बहुत सवाल करते रहे हैं, लेकिन आप क्या सही तरीके से अपने बच्चों के जवाब देते हैं ये भी बताइएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सवालों के जवाब किस तरह से देते हैं। हालांकि ये सवाल जवाब कुछ अलग तरह का था, एक हीरो हीरोइन के बीच सवाल जवाब का सिलसिला है। राजेंद्र कुमार और बी सरोजा देवी, सभी श्रोताओं ने ये लिख डाला है, जबकि मैंने पूछा नहीं था, तो इस बात के लिए आप सभी का शुक्रिया। और ये बात सही लिखी आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी डायरी 1978 से 82 तक लिखी हुई है, जब कॉलेज फर्स्ट ईयर से ग्रेजुएशन तक के सफर में दिल दर्द दिल और आर्थिक दुर्दशा से भरी पड़ी है। कभी उठाकर स्याही से लिखा था, पढ़ता हूं तो स्वयं पर हंसता हूं। उम्र के एक पड़ाव पर आकर लगता है कि यह क्या नादानी थी, लेकिन वो बहुत अच्छा समय होता है जब आप अपनी अपने भावनाओं को कागज़ पर लिख डालते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बिछड़ना फिर मिलना जिंदगी का दस्तूर है, इन शब्दों में से गीत आया फिर मिलोगे कभी। एक श्रोता ने लिखा है कि आंखों की बात चली है तो बता दूं कि किसी की आंखों में पल भर के लिए जो दर्द छलका था, उस दर्द को आज भी याद करता हूं। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये रात फिर ना आएगी के बारे में जानकारी दी है। और सभी श्रोताओं ने लिखा है कि ससुराल फिल्म का गाना था। अब चलिए आगे बढ़ें, और आपको पूछना है कौन है इसमें हीरोइन।

और कौन है हीरो। फिल्म है बहू बेगम। और आपने कब किसका इंतजार किया और वो आपके इंतजार के बाद भी नहीं आया या नहीं आई।

0: बहु बेगम फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में साहिल लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था। और अब प्रोग्राम के आखिर में पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना, बुझिए आप कौन है इस फिल्म में कलाकार।
1: शम्मा जलती है जले,
2: हाय हाय।

0: पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। फिल्म में देव आनंद और नूतन होते हैं। इससे पहले जो गाना हमने सुनवाया था, हमने पूछा था कौन है कलाकार, मीना कुमारी और प्रदीप कुमार थे। अब आज का सुरीला सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। वसुंधरा दास और कुणाल गांजावाला का गाया सलाम नमस्ते फिल्म का यह गीत है। जयदीप सानी ने बोल लिखे हैं, विशाल शिखर की धुन है।

0: अलका याग्निक और शान के गाए फिल्म कल हो ना हो के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज जबलपुर के गीता भवन परिसर में आयोजित जनजातीय महानायक अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अमर शहीद बलिदानों को याद किया।
1: आज हमारे गोंडवाना के वो अमर शहीदों ने जो करके दिखाया, उसके आधार पर आज नहीं तो कल 90 साल बाद देश आजाद हुआ, लेकिन आजाद होने वाले देश में एक भी अंग्रेज नहीं बचा है। ये हमारे शंकर शाह रघुनाथ शाह के उस बलिदान का परिणाम।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से नमो प्रेरणा कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। समारोह में कैबिनेट मंत्री डॉ. विजय शाह और राकेश सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने श्री मोदी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने कहा कि श्री मोदी भारत की जनता की सेवा में अपना समर्पण भाव बनाए हुए हैं। श्री मोदी ने रहमान के संदेश के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। संदेश बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्चायोग के आधिकारिक फेसबुक पेज पर भी साझा किया गया है। उज्जैन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने आज गीता भवन में आयोजित युवा धर्म संसद 2026 का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। सेवाज्ञ संस्थानम द्वारा शनिवार तक आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से करीब 1,700 युवा शामिल हो रहे हैं। अपने संबोधन में डॉ. भागवत ने कहा कि धर्म केवल बुढ़ापे की चीज नहीं है, बल्कि जीवन की शुरुआत से अंत तक उसका महत्व बना रहता है। कार्यक्रम में आज धर्म, चरित्र और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़े विभिन्न विषयों पर सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल समापन सत्र में शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज सुबह उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर दर्शन पूजन किया। वे करीब 1.5 घंटे तक नंदी हॉल में रहे। उनके साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और उज्जैन आलोट सांसद अनिल फिरोजिया भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नई दिल्ली में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2026 में शामिल होंगे। वे यशोभूमि में मध्य प्रदेश राज्य पवेलियन का भ्रमण करेंगे और स्वीडिश तथा जापानी प्रतिनिधिमंडलों के साथ सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश, तकनीकी सहयोग और संभावित साझेदारियों पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश इस आयोजन में स्टेट पार्टनर के रूप में भाग ले रहा है। राज्य पवेलियन में प्रदेश के सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र, निवेश के अवसर, औद्योगिक क्षमताओं और आधार को प्रदर्शित किया जा रहा है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का आयोजन 17 से 19 सितंबर तक यशोभूमि नई दिल्ली में हो रहा है। प्रदेश में बारिश का दौर सोमवार तक जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, गरज चमक और आंधी चल सकती है। प्रदेश में अब तक 842.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 7% कम है। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत 37 जिलों में बारिश सामान्य से कम हुई है। आगामी बारिश होने से इन जिलों में बारिश के आंकड़ों में सुधार की उम्मीद है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफन मौला प्रदर्शन और स्पिनर श्रीचरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर जापान को शुक्रवार को 8 विकेट से हराकर भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। नर्मदापुरम में कल सिठानी घाट पर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेवा से संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में 51,000 दीप प्रज्वलित किए गए। युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत आगरमालवा में कल आयोजित हुए रोजगार मेले में 83 शिक्षित बेरोजगारों का प्रारंभ चयन किया गया। भारतीय डाक विभाग के मध्य प्रदेश परिमंडल के अंतर्गत शिवपुरी डाक संभाग में आगामी 25 सितंबर को डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ के आजीविका भवन में सेवा संकल्प अभियान के तहत नमो युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LCA तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। और जापान में एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। एक रिपोर्ट।
1: श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मोंगार में 65 बिस्तरों वाला ग्यालसुएन जेत्सुन पेमा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, समद्रुप जोंखार त्राशीगांग राजमार्ग पर जगन्नाथ पुल और भूटान के बुमथांग स्थित राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र को भारत से 43 जर्सी गायों को दिया जाना शामिल है। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। बैठक में दोनों पक्षों ने मार्च 2024 में हुए ऊर्जा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग में हाल की प्रगति का उल्लेख भी किया। भूटान की पनबिजली परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया गया और कहा कि इससे दोनों देशों के मौजूदा ऊर्जा सहयोग को और गति मिली है। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने UPI आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि पिछले कई दशकों में सेमीकंडक्टर चिप एक छिपे हुए औद्योगिक घटक से आगे बढ़कर आर्थिक क्षमता, तकनीकी परिपक्वता और राष्ट्रीय क्षमता का मापदंड बन गई है। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश, चाहे वो कितना ही विकसित क्यों न हो, अकेले चिप का निर्माण नहीं कर सकता। श्री मिश्री ने कहा कि ताइवान दुनिया की करीब 90% सबसे उन्नत चिप का उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए डिजाइन, सॉफ्टवेयर, उपकरण और सामग्री दूसरे देशों से आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान आधुनिक कॉकपिट से लैस है। ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेश निर्मित असैन्य हेलीकॉप्टर है जो उड़ान सुरक्षा मानकों AS4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक रिपोर्ट।
2: फुल ऑपरेशन क्लीयरेंस प्राप्त LCA तेजस, HTT-40 विमान चालक प्रशिक्षण विमान और ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर का डिफेंस और नागरिक विमानयान क्षेत्र में शामिल होना एक अहम उपलब्धि है। इससे भारत मिलिट्री और सिविल पायलट्स के प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता प्राप्त

0: होगी। देश में ही विमान निर्माण से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, इससे आवश्यक नव उद्योग बढ़ेंगे। विदेशी विमानों के आयात की निर्भरता घटेगी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत भी हो पाएगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि नई रेल लाइन एक छोटा और बेहतर रेल मार्ग उपलब्ध कराएगी। इससे यात्रा की दूरी, परिवहन समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। ये रेल लाइन मौजूदा वर्धा मानिकगढ़ रेलखंड पर भीड़ कम करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध कराएगी। इससे मालगाड़ियों का संचालन अधिक सुचारू हो सकेगा। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रगति मंच से सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने सक्रिय शासन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के बारे में बताया। राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख में वृद्धि हुई है। ये विशेष साक्षात्कार आज शाम 7:10 पर 100.1 MHz पर सुना जा सकता है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
3: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
1: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष की सार्वजनिक सेवा को समर्पित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत एक नई और दूरदर्शी पहल सेवा प्रथम नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। महेंद्रगढ़ में पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंच राज्य के छात्रों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, जमीनी स्तर के इनोवेटर्स और आम नागरिकों को अपने नवीनतम विचारों, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों तथा समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान ने झारखंड के सुदूर गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। राज्य के 91% से अधिक गांवों को ODF प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, जहां अब ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष काम हो रहा है। स्वच्छता को हर नागरिक के स्वभाव और संस्कार में शामिल करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।
5: साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए।
4: प्रधानमंत्री के इसी विजन की वजह से आज झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लगभग 42 लाख शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही राज्य के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में गोवर्धन योजना के तहत कचरे से कंचन और बायोगैस बनाने की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन का सीधा लाभ पाने वाली रांची की ग्रामीण महिलाओं ने इलाके में आए इस बड़े बदलाव पर अपनी खुशी साझा की।
6: मेरा नाम निरुपमा तिग्गा है, मैं नगड़ी प्रखंड के सपारुम गांव की रहने वाली हूं। ये जो योजना है स्वच्छ मिशन भारत का, प्रधानमंत्री हमारे स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय गांव में दिए वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं।
7: हमारे सपारुम पंचायत के सपारुम गांव में 540 के लगभग शौचालय बने हैं। पहले तो इस गांव में बहुत शौचालय नहीं रहने के कारण बहुत परेशानियां, बहुत बीमारियां होती थी, परंतु अभी जब से शौचालय मिला है सभी को सुविधा होती है।
4: झारखंड में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस साल 5000 से अधिक स्वच्छता लक्षित इकाइयों और कचरा संवेदनशील स्थानों की युद्ध स्तर पर सफाई की गई है। स्वच्छता की इस नई चेतना ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारा है, बल्कि स्वच्छता से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए विकसित भारत 2047 की नींव को और मजबूत किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कर्मवीर के साथ मैं महविश रहमान।
1: भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस मामले में चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश को सामान्य प्रक्रिया बताया है। इस आदेश में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के दौरान पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन होने पर उसके चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी जाती है। श्री राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में श्री त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस में अतीत में कई विभाजन हुए हैं और इसका चुनाव चिन्ह भी कई बार बदला गया है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने आज पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू की। पार्टी का नारा है नशा मुकाना सारा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो और अन्य नेताओं ने माधोपुर से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्सपर्ट @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक GDP वृद्धि दर अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये संशोधन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। एजेंसी ने आशा व्यक्त की कि भारत सभी अन्य G20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज रफ्तार से बढ़ना जारी रखेगा। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 176 अंक बढ़कर 74,491 और निफ्टी 40 अंक बढ़कर 23,318 पर कारोबार कर रहा था। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेग बॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसूजा ने जापान की युना साकामोतो को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु

0: 12 ओ क्लॉक फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजों में। लिखा था इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई ओपी नेगर ने।
1: जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
2: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
1: रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग।
2: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
2: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: गीता दत्त और हेमंत कुमार की आवाजों में ये था शैलेंद्र का लिखा गाना, संगीत मुकुल रॉय का था और फिल्म थी डिटेक्टिव।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हमसाया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। शिवन रिज़वी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
1: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
3: दिल तो पागल है,
1: दुश्मन
4: चिट्ठी न कोई संदेह,
1: गदर एक प्रेम कथा,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
1: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
6: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
1: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
1: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव से।
7: मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक ए तन्हाई थी, वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहां पहले मेरे भाई थी।
1: शनिवार 19 सितंबर को दिन में 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: गुमराह फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: गलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अनुभव फिल्म का गाना आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज में। कपिल कुमार के बोल थे, कनू रॉय का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये मन भी कैसी अबूझ पहेली सा है ना। जैसे ही किसी प्रिय की भावनाएं इसे छूती हैं, तो दृश्य यानी कि जो सीन है वही का वही रहता है, पर सब कुछ बदल जाता है। अब आंखें केवल देख नहीं रही होती, वो प्रतीक्षा बनकर रास्ता देख रही होती हैं। अब कान केवल सुनते ही नहीं, वो हर आहट पर चौंक भी रहे होते हैं, और मन वो तो जहां होता है वहां टिकता ही कहां है। या तो किसी बीते पल के फूल पर बैठा उसका रस उलीच रहा होता है, या फिर आने वाले पल की कल्पना में डूबा ढेर सारी अनकही बातों की बंधनवार बुन रहा होता है। तो जिस खूबसूरत सफर का हमें था इंतजार, उसकी शुरुआत आज कौन से शहर से हमारी कौन सी सखी करने वाली है, इसका पता करते हैं फोन की इस पहली कॉल से। अरे वाह, इंतजार हुआ खत्म। अब सुनते हैं हमारी पहली कॉलर को और जानते हैं कहां से है हमारी ये सखी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसी है मैडम आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बढ़िया।
1: मैं भी बढ़िया हूँ, मैं भी अच्छी हूँ।
0: तो आप बनती हमारी पहली सखी जिनका कॉल लगा है।
1: हो रही हूं।
0: तो पहले तो आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम है सोनी अली अंसारी, मैं यूपी से बोल रही हूँ, गाजीपुर जिले से, मखदुमपुर मेरा गांव का नाम है।
0: अच्छा
1: जी, मुझे गाना सुनना है, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। मैं मुझे सखी सहेली सुनना बहुत पसंद है, मेरा बहुत तमन्ना था कि एक बार मेरी कॉल लग जाए।
0: तो आपकी कॉल तो लग गई है, पर आप थोड़ा बहुत अपने बारे में भी तो बताइए। आपका गाना तो हम आपको सुनवाएंगे जरूर।
1: मैं कुछ नहीं, मैं बस ऐसी घर पर रहती हूँ, शेरो शायरी की शौक है, लिखती हूँ।
0: लिखती हैं आप? शेरो शायरी, एक छोटी सी आप एक लाइन दो लाइन सुना सकती हैं हमें अपनी?
1: अच्छा,
0: शायरी की
1: सुनाऊं?
0: सुनाइए।
1: सुना रही हूँ।
0: बिल्कुल।
1: मेरे खूबसूरत से चेहरे का दीदार कौन करेगा, तुम रहेगा तो मुझसे प्यार कौन करेगा।
0: उफ,
1: कुछ तो कशिश है मेरी आंखों में, वरना मेरे आंखों को नशा का जाम कौन करेगा।
0: ओ, क्या बात है, क्या बात है, सच में बहुत बढ़िया।
1: मैं ना खूबसूरत नहीं हूँ, आज खूबसूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरी जिस सहेली से बात कर रही हूँ मैं, उनकी हो सकती है।
0: नहीं नहीं, आप बहुत खूबसूरत है, आपकी बातों से लग रहा है। और मैंने बहुत लोगों को देखा है शायरी करते हैं लेकिन दूसरे की तारीफ करते हैं, आज आपकी शायरी सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने खुद की तारीफ में एक शायरी लिखी है। और सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: हम अंकिता राजेश तिवारी बोल रहे हैं, नांदेड़ महाराष्ट्र से। हाँ,
0: अच्छा, तो बताइए, आज गणपति का उत्सव चल रहा है, तो आप गणपति लेकर आई घर में?
1: लेकर आए ना गणपति।
0: तो उनकी सेवा चल रही होगी ना? खूब अच्छा सा।
1: हाँ,
0: क्या भोग लगाया आज आपने उनको?
1: आज हमने उकड़ी के मोदक का भोग लगाया। हेलो
0: अरे वाह।
1: सहेली।
0: और बताइए, आप
1: हाँ,
0: क्या करती हैं?
1: मैं अभी कॉलेज करती हूँ, बीकॉम।
0: बीकॉम में है। और
1: हाँ
0: गणपति बप्पा खूब सारी सुख समृद्धि आपके घर में लेकर आए, इसी
1: हाँ
0: लिए हम प्रार्थना करते
1: धन्यवाद।
0: हैं। और बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: देवा और देवा, गणपति देवा।
0: अरे वाह,
1: हाँ,
0: बहुत
1: वो
0: बहुत
1: गाना।
0: प्यारा सा गीत है ये। तो बहुत अच्छा सा
1: हाँ
0: ये गाना आपके पसंद का हम सुनवाते हैं अभी।
2: देवा हो देवा गणपति देवा,

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते। मेरा
0: नमस्ते। तो बताइए आप जरा पहले अपना नाम और अपने शहर का नाम। अच्छा,
1: नाम कल्पना मनोरे है और मैं भूली गांव से बोल रही हूँ, वाशिम से। हाँ,
0: वाशिम से। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप बताइए, आप क्या करती हैं कल्पना?
1: जी मैं आंगनवाड़ी मदद हूँ।
0: अरे वाह, आंगनवाड़ी में आप काम करती हैं, बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बताइए कि आपका जो सबसे ज्यादा जो पसंदीदा कार्यक्रम है विविध भारती में, वो कौन सा है?
1: जी वो हेलो पिटारा, हेलो फरमाइश, आज के फनकार, वो सब
0: अच्छा
1: मैं रेडियो पे सुनती हूँ।
0: अच्छा ये सारी चीजें आपको सुननी अच्छी लगती हैं ना?
1: हाँ सब
0: तो और क्या करना
1: जी,
0: अच्छा लगता है रेडियो सुनने के अलावा आपको?
1: मुझे बच्चों को पढ़ाना और
0: यानी बच
1: ड्राइंग
0: हाँ
1: करना।
0: अच्छा, आप आंगनवाड़ी में काम करते तो आप वहां पर बच्चों को पढ़ाती हैं?
1: हाँ, मेरा बच्चा भी है ना, 6 साल का, मेरे साथ ही पढ़ता है।
0: अच्छा, तो आप उसको भी पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और
1: हाँ,
0: आज कौन सा आप गीत सुनना चाहेंगी आप हमें बताइए?
1: तारों का चमकता चेहरा हो,
0: तो
1: फूलों
0: ये
1: की
0: गीत,
1: हंसने की वादी हो।
0: अच्छा तो ठीक है, हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए कौन बोल रही हैं आप और कौन से शहर से बोल रही
1: हैं? जी मैम नमस्ते, मैं कानपुर कल्याणपुर से बोल रही हूँ मैम।
0: अच्छा आप क्या करती हैं आप?
1: जी मैम मैं जॉब ही करती हूँ, मेरा बुटीक है खुद का।
0: अरे वाह।
1: जी मैम तो मेरा सारा समय उसी में बीतता है और मैं आपका कार्यक्रम मैम बहुत मतलब मन लगा के सुनती हूँ।
0: अच्छा मन लगा
1: अपने काम के जैसे अपने काम में मन लगा के सुनते करते हैं वैसे ही आपका प्रोग्राम भी मन लगा के सुनते, इतना अच्छा लगता है। हेलो सहेली और गीत माला ये सब तो मेरे बहुत ही मतलब पसंदीदा, हम भूल नहीं सकते समय की, ये समय मतलब चालू हो गया तो बस रेडियो चालू होना चाहिए।
0: ये तो सही बात है। और दूसरी चीज ये बताइए आप जो करती हैं आपका ये जो बुटीक चलाती हैं तो उसमें आप मतलब किस तरीके के कपड़े रखती हैं, सलवार
1: जी मैं लेडीज। हाँ मैम जी मैं लेडीज कपड़े तैयार करती हूँ।
0: अच्छा अच्छा तो आजकल तरह तरह के कपड़े ट्रेंड में हैं, जैसे गाउन भी चल रहे हैं तरह तरह के है ना, और सलवार सूट तो चल ही रहे हैं, प्लाजो वगैरह काफी चल रहे हैं ना।
1: हाँ प्लाजो भी चल रहे, गाउन भी चल रहे, सरारा भी चल रहा है।
0: तो सबसे ज्यादा कौन सा आपको बनाने के लिए मतलब आता है आपके पास ऑर्डर, कि सबसे ज्यादा कौन सा?
1: मैम इस समय तो सब लोग पैंटी सूट पहन रहे हैं ज्यादा, और साड़ी की जो ड्रेसें आ रही हैं तो वो साड़ी की ड्रेसें उनको जो पसंद आता है वो अपने हिसाब से सिलवाते रहते हैं।
0: हाँ आजकल ये भी ट्रेंड में ना कि जो पुरानी आपकी बनारसी तरीके की जो साड़ियां हैं उसके नए नए तरीके से आप शरारे बना सकते हैं ना, या आप
1: हाँ बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसें आ रही हैं तो वो साड़ी से लेडी से आजकल अपनी जो साड़ी पुरानी रखी हुई है बनारसी तो उनसे काफी अच्छी अच्छी ड्रेसें तैयार करवा रही है।
0: बहुत बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: तो मैम प्रेम पुजारी का गाना है रंगीला रे तेरे रंग में।
0: अरे वाह बहुत प्यारा सा गाना है, तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो आज हम कौन सी सखी से बात कर रहे हैं?
1: हम फरजाना सफी शेख बोलते हैं, ऊन पतिया, गुजरात सूरत।
0: अरे वाह, तो बताइए फरजाना जी,
1: हाँ,
0: आप क्या करती हैं?
1: हम घर में ये दो बेटियां हैं, दोनों बेटी की शादी हो गई, एक बेटी को दो बेटी
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: है और एक बेटी को एक बेटा और बेटी है। हाँ,
0: यानी आपने अपने कर्तव्य कर लिए हैं पूरे, अब आप आराम से है ना, रेडियो सेट के पास बैठ के गीत सुन सकती है
1: हाँ, अब
0: ना।
1: बेटे की शादी हुई है, अभी 5 महीना खत्म हुआ, 6ठा महीना चालू है। हाँ
0: अरे वाह, यानी कि बेटे की भी शादी हो गई, यानी आप घर में बहू भी लेकर आ गई हैं अब, है ना?
1: हाँ बहू भी MP से लाए, मध्य प्रदेश से, यहाँ बुरहानपुर से। चंदन
0: आप एक सास के रोल में आ गई हैं।
1: का नाम, उनका नाम भी फिरोजा है,
0: अच्छा,
1: और मेरी बेटी सायरा और सबाना,
0: हाँ, बहुत अच्छा,
1: और
0: बहुत प्यारा
1: बहू
0: नाम
1: है
0: है।
1: तो नीलोफर और बेटा है तो सब्बीर।
0: अच्छा, तो आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: प्यासा सावन का तेरा साथ है तो, हाँ
0: अरे वाह, बहुत प्यारा सा गाना
1: क्योंकि
0: है, मुझे भी सुनना है
1: मेरी बेटी
0: तो।
1: है ना बिजली वाली, उनको बहुत पसंद है,
0: अच्छा, अरे
1: वो
0: वाह,
1: मोबाइल में रखेगी ना वही गाना रखेगी, उनके पप्पा के लिए भी मेरे लिए भी अच्छा लगता है उसको।
0: है, अरे वाह, बहुत अच्छी बेटी है आपकी। तो चलिए
1: हाँ
0: आपके साथ साथ मैं भी सुन लेती हूँ ये गीत, मुझे भी बहुत अच्छा लगता
1: जी
0: है।
1: जी

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं शानू बोल रही हूँ भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा शानू जी, आप भोपाल से बोल रही हैं यानी कि आप मध्य प्रदेश से बोल रही हैं। तो बताइए क्या करना आपको बहुत अच्छा लगता है, पहले तो ये आप मुझे बता दीजिए।
1: जी मुझे, मैं तो घर में ही रहती हूँ और हाउस वाइफ हूँ और बच्चे हैं, बस खाना बनाना यही पसंद है और विविध भारती सुनना मुझे बहुत पसंद है।
0: विविध भारती, विविध भारती पे आपको कौन सा कार्यक्रम है जो बहुत ज्यादा पसंद है?
1: मुझे तो सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आज की फनकार बहुत अच्छा लगता है, आज के मेहमान, पिटारा के अंतर्गत सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और सखी सहेली हेलो सहेली भी पसंद है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छे कार्यक्रमों को पसंद है। अब ये बताइए आपके बच्चे छोटे हैं कि बड़े?
1: मेरे दो बच्चे तो बड़े हैं और एक थोड़ा लेट हुआ था तो वो 4 साल का है अभी। और हम अपनी बात भी कहना चाहेंगे विविध भारती, जैसे हमें
0: बिल्कुल,
1: सबकी आवाजें पसंद है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: गाना मुझे रफी साहब की आवाज में सुनना है, रूप तेरा मस्ताना फिल्म का, बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले।
0: अरे क्या बात है, ठीक है आपकी पसंद का हम ये गीत आपको सुनवा देते हैं।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं, यानी आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए। नमस्ते। तो कौन सखी बोल रही है हमारी?
1: जी मेरा नाम प्रमिला खन्ना है।
0: अच्छा प्रमिला खन्ना जी।
1: जी मैं हरियाणा से बोल रही हूँ।
0: अच्छा हरियाणा से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं प्रमिला जी?
1: जी मैं सिलाई करती हूँ।
0: अच्छा तो बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: जी मेरे हस्बैंड हैं और मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है।
0: अच्छा बच्चे आपके छोटे हैं कि बड़े?
1: जी लड़की 13 साल की है, लड़का 11 साल का है।
0: अच्छा यानी बच्चे भी छोटे ही हैं। तो उनके साथ में थोड़ी सी बहुत रहती होगी ना कि उनको भी संभालना, घर को भी संभालना और साथ में सिलाई का काम भी करना।
1: जी
0: सब कुछ संभाल लेती हैं आप?
1: वैसे तो बच्चे स्कूल में जाने के बाद फिर तो मैं खाली ही रहती हूँ, तो मैं सिलाई का काम कर लेती हूँ।
0: अच्छा आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी मुझे सोनू निवाल फिल्म का गाना सुनना है।
0: अच्छा बिल्कुल हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली।
1: अरे मैम नमस्कार, मैं संभाजी नगर से बात कर रही हूँ, निर्मला कर रहे हैं।
0: अच्छा, आप छत्रपति संभाजी नगर से
1: संभाजी
0: बोल रही हैं
1: नगर।
0: निर्मला
1: हाँ,
0: जी।
1: गाने बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं हमारे।
0: आपको गाने अच्छे लगते हैं सुनने?
1: हाँ बहुत अच्छे लगते हैं मुझे।
0: तो
1: एक्चुअली
0: जो भी कार्यक्रम आते हैं उसमें आपको जो भी गाने सुनवाए जाते हैं सब
1: हाँ
0: पसंद है ना आपको?
1: हाँ
0: तो आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: गणपति जी का कौन सा गाना सुनाने वाली
0: तो ठीक है, हम
1: ना।
0: ये प्यारा सा गीत सुनवाते हैं गणपति जी का।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो आप कौन बोल रही हैं पहले तो ये बताइए।
1: मैं साची सूरज चल्ला रहे बोल रही हूँ,
0: अच्छा, और कहाँ से बोल रही हैं?
1: और यवतमाल से।
0: यवतमाल से। साची, आपकी आवाज सुन के ऐसा लग रहा है ना कि आवाज एक छोटी सी बच्ची की है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा
1: हाँ
0: है? तो बताइए, आप पढ़ती हैं
1: हाँ
0: तो आप कौन सी क्लास में?
1: छठी क्लास में।
0: ओ, सिक्स में? अभी आप छठी क्लास में, यानी कि आप बहुत छोटी सी हैं। आपको रेडियो सुनना अच्छा लगता है?
1: हाँ,
0: तो आप रेडियो पे क्या क्या सुनती हैं?
1: मम्मी के साथ सुनती हूँ।
0: मम्मी के साथ सुनती हैं। क्या सुनना अच्छा लगता है? वही जो मम्मी सुनती है, या आपको भी कोई अच्छा लगता है प्रोग्राम सुनना?
1: सखी सहेली भी बहुत अच्छा होता है,
0: सके सहेली अच्छा लगता है आपको? जब दो लोग बातें कर रहे होते हैं।
1: बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं उसमें।
0: बातें करनी अच्छी लगती है आपको?
1: हाँ
0: अच्छा, यानी कि सांची भी अच्छी अच्छी सी बातें करती है ना?
1: हाँ
0: तो आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं स्कूल में?
1: हाँ
0: मुझे लग ही रहा था कि आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी। और आपको क्या करना अच्छा लगता है? गाना अच्छा लगता है कि डांस करना अच्छा लगता है?
1: मुझको गाना
0: गाना अच्छा लगता है। तो चलिए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं ये तो बताएंगी।
1: आपके मन से कोई भी।
0: ठीक है, फिर मैं अपने मन से सुनवाती हूँ सांची के लिए खास तौर पर ये गीत। अच्छा लगेगा सांची को।
2: लकड़ी

0: हेलो सहेली,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताइए, आप
1: जी
0: कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रही हूँ, कश्मीर से मैं बोल रही हूँ। मेरा नाम अफरोजा है। जी
0: अच्छा, अफरोजा जी आप बोल रही हैं कश्मीर से। बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही अच्छी जगह से आप बोल रही हैं। बहुत अच्छी जगह सच में। तो बताइए आप क्या करती हैं अफरोजा जी?
1: जी बस मैं हाउसवाइफ हूँ, घर का ही काम करती हूँ।
0: हाँ,
1: दो बच्चे हैं मेरे, घर संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ,
0: अच्छा, तो बच्चे छोटे हैं?
1: और साथ साथ साथ साथ विविध भारती चलता रहता है। 23 सालों से रिश्ता है मेरा विविध भारती से। जी
0: ये तो सबसे अच्छी बात है आपकी। तो बताइए आपके बच्चे छोटे हैं कि बड़े हैं?
1: मेरी 5 साल की बेटी है और 2 साल का बेटा है।
0: मतलब बहुत परेशान करते होंगे, शैतानी करते रहते होंगे पूरे दिन घर में, है ना?
1: हाँ, अब क्या करें, लेडीज का काम ही यही है अब बच्चों को अच्छी शिक्षा देना,
0: बिल्कुल, अच्छे से उनको पढ़ाना,
1: घर
0: लिखाना,
1: संभालना।
0: घर संभालना, सच में।
1: जी
0: और बहुत बड़ा काम है ये। मतलब आप जॉब करने जाते
1: बहुत ही,
0: हैं, लोगों को
1: हाँ,
0: लगता है
1: और
0: वही चीज बड़ी है।
1: ये काम नजर भी नहीं आता है।
0: जबकि ये
1: अगर ऐसे
0: सबसे
1: जैसे
0: जरूरी काम है।
1: कि हाँ, अगर कि मर्द लोग जैसे काम करते हैं, उनका काम दिख जाता है, वो ऑफिस संभालते हैं, फिर पता चलता ही नहीं ऑफिस है, घर के जितने काम करेंगे ये नजर ही नहीं आते हैं।
0: ऊपर से कहा जाता है आप करते ही क्या है घर पे, जबकि
1: जी
0: अगर घर पे काम करना पड़ जाए ना तो बस पता चल जाएगा कितना काम होता है दिन भर का पूरा, और साथ ही
1: बहुत
0: बच्चों को भी
1: ज्यादा मैम।
0: संभालना ना, बहुत बहुत बड़ा काम है ये।
1: हाँ
0: आप विविध भारती आप सुनती हैं, तो विविध भारती का कम से कम इतना तो एक योगदान रहता होगा ना कि आपका जो काम है पूरे दिन भर का थोड़ा आसान कर देता होगा, है
1: बहुत ज्यादा,
0: ना?
1: कई सालों से वही मैं बोल रही हूँ, कई सालों से रिश्ता है मेरा विविध भारती से। तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, और जब शादी से पहले मायके
0: हाँ,
1: में सुना करती थी,
0: अच्छा,
1: एक भी प्रोग्राम मिस नहीं होता मुझसे, सखी सहेली है, हर कोई एपिसोड सुनती थी मैं, क्या
0: हाँ, अरे
1: फिट आ
0: वाह।
1: रहा है, मैं जो भी एपिसोड आते हैं, हर कोई प्रोग्राम सुनती थी मैं विविध भारती का।
0: ये तो
1: अभी भी
0: बहुत,
1: सुनती हूँ, लेकिन अब उतना टाइम ज्यादातर नहीं आता है, क्योंकि बच्चे कभी इधर उधर
0: हाँ
1: भाग दौड़ में
0: नहीं,
1: लगा
0: बच्चे
1: देते
0: छोटे हैं, आपने
1: हैं।
0: बताया 5 साल के 2 साल के तो बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको तो पूरा वक्त देना पड़ता होगा आपको अपना,
1: बहुत
0: सच में।
1: ज्यादा, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि विविध भारती पे आज हेलो सैली में मेरा पहली बार फोन लगा है, इतने सालों से, मेरे
0: हाँ,
1: ख्याल से 20 सालों से,
0: अरे
1: 20 साल के बाद फोन लगा है इस प्रोग्राम
0: क्या
1: में।
0: बात कर रही
1: एक बार
0: हैं।
1: विविध भारती में मैंने बात की है, वो है हेलो फरमाइश।
0: अच्छा, यानी कि आपकी, चलो
1: हाँ
0: बात तो हुई, मुझे ये सुनकर ही बहुत अच्छा लगा कम से कम, क्योंकि 20 साल इतना लंबा अरसा आपने
1: हाँ
0: सोचिए
1: बहुत
0: लगाया है
1: ज्यादा
0: फोन
1: टाइम है।
0: नहीं, सच में सच में आप बहुत ही अच्छी हमारी श्रोता हैं, बहुत ही अच्छी, क्योंकि इतना आपने इंतजार किया कॉल लगाने के लिए, तो बहुत बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया। और अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी गाने के बोल है, इस मोड़ से जाते हैं,
0: हाय
1: कुछ
0: हाय, क्या
1: कदम
0: बात है,
1: रहा है।
0: बहुत बहुत सुंदर,
1: हाँ
0: बहुत सुंदर गीत है ना। इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हुए काश कभी हम आपसे मिल लें हमारी मुलाकात हो जाए, है ना?
1: हाँ, आप
0: चलिए
1: आइए
0: सुन
1: ना कश्मीर, हमसे
0: बिल्कुल
1: मिलके
0: बिल्कुल
1: जाइए,
0: बिल्कुल, कभी
1: आप
0: आते
1: आइए
0: हैं,
1: और फिर देखिए कितनी सुंदर जगह है, हर
0: सच
1: मौसम यहाँ बढ़िया से बढ़िया है।
0: नहीं, कश्मीर का तो खैर नाम ही काफी है। तो चलिए सुनवाते हैं आपकी
1: हाँ
0: पसंद का एक प्यारा सा ये गीत, जो मुझे भी बहुत पसंद है।

आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय पलक झपकते ही तेजी से मुट्ठी में बंद रेत की तरह निकल गया, लेकिन हमारे मन की हथेली पर अपने सुनहरे चमकते निशान छोड़ गया है। और आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने हमें बांध लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपके कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो है 4002 4662।

0: और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर एक बार आप फिर से नोट कर लीजिए, 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी कामयाब जरूर होते हैं, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल का, और साथ ही संपादन में सहयोगी बनी नम्रता टिकोले। विद भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है अलका सिन्हा की लिखी कहानी रिहाई, वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी का।
2: उसे उम्र कैद की सजा हुई थी, मगर उसके अच्छे चाल चलन के कारण उसे 2 साल पहले ही रिहा कर दिया गया। बरसों बाद आज वो अपने ही घर के सामने अजनबी सा खड़ा था। लंबी सांस भर बहुत संयत मन से उसने कंधे पर टंगे झोले में से चाबी निकाली और ताले में डालकर घुमाई। ताला ढीठ सा अड़ा रहा। इसी दशा में टंगे टंगे ये ताला भी उम्र कैद जितनी लंबी अवधि काट चुका था। यूं दरवाजा जोर से धकेलने पर शायद ताला खोलने की जरूरत ही न पड़ती, मगर ये बात उसके दिमाग में आई ही नहीं। एक आंख बंद कर उसने ताले की मोरी के भीतर झांकते हुए चाबी घुसेड़कर पूरी ताकत से मरोड़ दी। कड़ कड़ की आवाज के साथ कराहता वो ताला आखिर होश में आया तो जैसे नींद से जागकर अविश्वास से पूछने लगा,
3: कौन हो भाई? यहां तो बरसों से कोई आया ही नहीं है।
2: तो क्या ओमी भी कभी आया नहीं मेरे पीछे? वो हल्के से बुदबुदाया।
3: ओमी? कौन ओमी?
2: दरवाजा भी अब तक बूढ़ा हो चुका था और उसकी याददाश्त पहले जैसी नहीं रह गई थी। खैर, उसने दरवाजे को जोर से धकेला तो बरसों की जमी धूल उस पर छिटक कर गिर पड़ी।
3: चलो, किसी ने गले लगाकर स्वागत तो किया।
2: वो हंसा तो धूल मुंह में घुस गई और वो खांसने लगा। भीतर का दृश्य जैसे फ्रीज हुआ पड़ा था। लंबे अरसे से एक स्थान पर रखी चीजें पड़ी पड़ी जम चुकी थीं। कुछ साफ नहीं दिख रहा था। हर तरफ पड़ी धूल की मोटी परत से उसका रंग रूप ही बदल चुका था।
3: मैं किसी गलत घर में तो नहीं आया ना?
2: ये मेरा ही तो घर है ना? किसके सहारे छोड़ गया था मैं अपना घर? ओमी? उसने पुकारना चाहा, मगर गहरे निश्वास के साथ आंख नाक और मुंह में धूल भर आई। हाँ, बाथरूम भी यही है। हाँ, यही तो है बाथरूम। यानी घर तो मेरा ही है। बाकी सब भी धीरे धीरे साफ हो जाएगा।
3: झाड़ू भी मिल गई, रसोई के दरवाजे के पीछे रखी थी, ठीक वहीं जहां हमेशा रहती थी। और इस एक छोटी सी बात ने उसे यकीन दिला दिया कि ये घर सचमुच उसका है। रात होते होते उसने घर को काफी हद तक ठीक कर लिया। यानी ओमी कभी आया ही नहीं मेरे जाने के बाद। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उसी के भरोसे सब कुछ छोड़ के गया था।
2: वो जरूर यही कहीं छुपा बैठा होगा, नालायक, यही कहीं बैठा होगा।
3: उसने ओमी को खोजना चाहा, पलंग के नीचे, पर्दे के पीछे, खिड़की के बाहर, बगीचे में, हर तरफ देख लिया। ओमी कहीं नहीं था। अंधेरा गहराने लगा था। उसने बत्ती जलानी चाही तो तारे कटी भी मिली। शायद चूहा कुतर गया था। किसी तरह तारे जोड़ी और स्विच दबाया तो बल्ब चनक कर टूट गया। खाने का मन भी नहीं था उसका और खाने को कुछ था भी नहीं। वो वैसे ही अंधेरे में लेट गया, एकटक पंखे को देखता रहा, भीतर ही भीतर ओमी को पुकारता रहा।

आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। वो हड़बड़ाकर उठा। ओह, इतनी देर हो गई। मैं तो इतनी देर तक सोता ही नहीं था। अब तक सब जग गए होंगे। उसने दाएं बाएं देखा, फिर उसे याद आया कि वो अपने घर में है, जेल की सलाखों से बाहर। अब तो वो खुद अपनी मर्जी का मालिक है। जब तक चाहूंगा सोऊंगा, जहां चाहे जाऊंगा। अब मैं आजाद हूं। अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। सुन रहे हो ना ओमी? ओमी, ओमी सुन रहे हो ना? अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। हाँ। उसे फिर ओमी की याद हो आई। याद आई कि ओमी को तो पता ही नहीं होगा कि उसे समय से पहले ही रिहा कर दिया गया है, और वो अपने घर उसका इंतजार कर रहा है। उसका मन मायूस हो गया। आखिर ओमी के बिना ये आजादी किस काम की? आएगा ओमी, आज जरूर आएगा। आएगा तो उसे क्या खिलाऊंगा? अच्छा चलो, बाजार से कुछ सब्जी भाजी खरीद ले आता हूं। हाँ, आज अपनी पसंद की सब्जियां लाऊंगा। रोज रोज घी आग कद्दू खा खा कर रुकता चुका हूं। और हाँ, नया बल्ब भी तो लाना है। ओमी जरूर कहीं दूर से इस घर पर नजर रखता होगा। जलती बत्ती देखकर दौड़ा चलाएगा। हाँ, उसे क्या मालूम कि मैं समय से पहले ही रिहा हो गया हूं। जरूरत का सामान खरीद कर वो घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने बड़े चाव से सब्जी बनाई। गोल गोल नरम नरम रोटियां सेकते हुए भीतर ही भीतर ओमी को पुकारता रहा। सोचा, पास पड़ोस में पूछूं कि पिछली बार ओमी कब आया था यहां। मगर हिम्मत नहीं हुई। बाहर की दुनिया पराई हो गई थी। एक सजायाफ्ता से कौन बात करना चाहेगा? लोग उसे नहीं पहचानते अब। ये भी अच्छा ही है। उसने राहत की सांस ली और खा पी कर सो गया। बत्ती जली ही छोड़ दी। उसे भरोसा था कि बत्ती जलती देखकर ओमी दौड़ता हुआ यहां आएगा। नींद में भी वो हर खटके से जागता रहा, पर सुबह हो गई और ओमी नहीं आया। अगला दिन भी बीत गया, फिर एक और रात ओमी नहीं आया। वो हर रात बत्ती जली छोड़ देता, इस उम्मीद में कि उजाला देख कोई तो दौड़ा चला आएगा। लगातार चलता पंखा उसे बरसों पीछे लिए जा रहा था, बहुत पीछे, कॉलेज की गहमा गहमी के बीच। कॉलेज का वार्षिक उत्सव। सजी धजी भीड़ मंच की तरफ देख रही थी। भीड़ उत्साह से ओमी ओमी ओमी ओमी पुकार रही थी। भीड़ में से आवाजें आ रही थी, ओमी ओमी। वो देख रहा है, ओमी मंच पर खड़ा है। मंच पर इतनी तेज रोशनी है कि आंखें चुंधिया जाएं। तेज रोशनी में वो ओमी को ठीक से देख भी नहीं पा रहा, मगर वो उसकी आवाज सुन रहा है। वो कह रहा है, दोस्तों, आज की ये महफिल किसी खास के नाम। देखता हूं मेरी आवाज उस तक पहुंचती है या नहीं। महफिल में तालियों की आवाज, सीटियां और उत्साह भर उठता है। ओमी एक तान

भरता है और हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सबकी धड़कनें रुक गई हैं। वे सांस रोके ओमी का गीत सुन रहे हैं, उसे अपलक देख रहे हैं और ओमी है कि आंखें बंद कर गा रहा है। मखमली आवाज का जादू हर किसी पर छाने लगा है।

सुनिए, क्या क्या खूब गाते हैं आप। मैं तो खो ही गई थी, मगर ये गीत नहीं था, मेरे दिल की आवाज थी। और आपने क्या कहा कि आप तो खो गई। अरे आप खो जाएंगी तो मैं खुद को कहाँ ढूंढूंगा। अच्छा, अपना नाम तो बता दीजिए ताकि ढूंढने में कुछ आसानी हो। जी, मेरा नाम गीत है। अरे वाह, आप गीत और मैं गायक, क्या खूब है। अब समझा ये निगाहें क्यों बार बार आपकी तरफ खींची चली जा रही थी। चलिए, आप तो बातें बनाते हैं। उसे खूब याद है ओमी और गीत की वो पहली मुलाकात, जिस दिन ओमी के दिल की आवाज गीत तक पहुंची गई। फिर तो वो हर जलसे में ओमी की आवाज के साथ खींची चली आती। यही हाल ओमी का भी था। जब वो गाने लगता तो सबसे पहले उसी की ओर देखता, फिर आंखें बंद कर तसल्ली से गीत में डूब जाता। गीत उसकी जिंदगी थी, इसीलिए तो उसने अपने बैंड का नाम ओम बैंड से ओम गीत बैंड कर दिया था। ओमी के दोस्त उसे गीत का नाम लेकर खूब चिढ़ाते थे, मगर वो चिढ़ता नहीं था। उल्टे एक मीठी मुस्कान उसके होठों पर आ जाती, जैसे कोई अपना सबसे प्यारा राज सुन ले और भीतर ही भीतर खुश हो जाए। उसके दोस्त जानबूझकर उससे बात करते हुए गीत का नाम बीच में डालते हुए दोहरी जुबान में उससे पूछते, ओमी भाई, आज के जलसे में तुम्हारे गीत ने गजब ढा दिया भाई। ओमी हंसकर कहता, यार गीत ने मंच पर ही नहीं, मेरे जीवन के रंगमंच पर भी गजब ढा दिया है। हाँ। वो कुछ देर हंसता मगर फिर संजीदा होकर कहता, हाँ पहले मैं गाता था, अब जिंदगी गाती है। मेरे गीतों के शब्द अब लगे बोलने जब से सुर पर उन्हें वो सजाने लगी है। दूर कहीं कोयलिया गाने लगी है। उसे संजीदा देखकर दोस्त भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते। अम्मा यार, ये तो सच है, जब से गीत तेरी जिंदगी में आई है, तेरी आवाज में बला का जादू आ गया है, एक नशा सा छा गया है तेरी गायकी में। ओमी एक पल के लिए रुका, जैसे वो इस बात की गहराई को तौल रहा हो, फिर धीरे से अपने भीतर ही बोल पड़ा, हाँ मेरे हर बोल में वो होती है, हर सुर में उसका चेहरा होता है। जब उसकी झुकी हुई नजरों को देखता हूं तो मेरी तान खुद ब खुद ऊपर उठती चली जाती है। सब जानते थे कि ओमी और गीत एक दूसरे के लिए बने हैं, ये जोड़ी कुछ अलग ही है। ये बात अब किसी से छुपी नहीं थी। जलसों में लोग ओमी का गाना सुनने आते थे, मगर कनखियों से गीत को भी देखते रहते। ये अनूठी संगत थी, सुर और शब्द की, आवाज और अर्थ की।

उधर गीत की सहेलियां भी कहां कम थी, हर वक्त उसे ओमी के नाम की मीठी झिड़कियां देती रहती। ए गाता तो ओमी है मगर भाव तेरे चेहरे पर होते हैं, ऐसा कैसे होता है गीत? देख अभी भी तेरा चेहरा कैसा सिंदूरी हो गया है। हायो रब्बा, ओमी को देखते ही ये तो किसी दूसरी दुनिया में जा पहुंचती है। उनकी बातें सुन गीत एक पल के लिए चुप हो जाती, फिर धीरे धीरे जैसे मन में सांस लेते सपने को शब्द देती भी बोल पड़ती। हाँ सच में ओमी जब तान भरता है ना तो जाने मुझे क्या लगता है, जैसे जैसे मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं, किसी और ही दुनिया में हूं। हाँ जैसे मैं बादलों की पालकी पर जा बैठी हूं और ओमी की तान के साथ साथ ऊपर उठती जा रही हूं, ऊपर और ऊपर, पता नहीं कितने ऊपर। सहेलियां एक दूसरे को देखने लगती और गीत बोलती रहती, और पता है जब भीड़ तालियां बजाती है, जब सारा हॉल उसकी आवाज की जादूगरी से गूंज उठता है, तो मेरे भीतर कुछ उमड़ने लगता है, जैसे जैसे कोई नदी बरसों से शांत बह रही थी और अचानक अचानक उसमें बाढ़ आ गई हो, और मैं उस बाढ़ को रोकना नहीं चाहती, बस बस उसमें बहती रहना चाहती हूँ। गीत तू तो बनी ही उसके लिए है रे, यूं ही तो तेरा नाम गीत नहीं पड़ा। गीत अपनी सहेलियों के चूहल में खो जाती और कहती, माँ ने संगीत सीखा था और प्यार से मुझे गीत कहकर बुलाया करती, गीत तो बस मेरे पुकारने का नाम था।

मगर जब ओमी मुझे गीत कहकर बुलाता है ना, तब सच मानो, तुम सच मानो, मेरे कानों में संगीत गूंजने लगता है। मुझे मुझे अपना नाम सच्चा लगने लगता है, जैसे जैसे सालों से ये नाम उसी की आवाज का इंतजार कर रहा था। वो मुझे पुकारता है और मेरे भीतर एक चमकार सी बज उठती है, जैसे किसी ने सितार की मिजराब को छू दिया हो। हाँ, ऐसा लगता है मुझे। और सच में ऐसा ही था। ओमी की आवाज में गीत थी और गीत की सांसों में ओमी का सुर। दोनों एक दूसरे में इस तरह घुले थे कि अलग करना मुश्किल था, जैसे नदी में समाया आसमानी रंग। दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, बिना कहे बिना जताए। ये प्रेम शोर नहीं करता था, ये बजता था धीरे धीरे, मीठे मीठे सुर।

उसे अच्छी तरह ध्यान है कि कॉलेज में इस जोड़ी की कितनी चर्चा थी। वो अचानक सोच में पड़ जाता है और खुद से ही पूछ बैठता है, पता नहीं दोनों कैसे होंगे, कहाँ होंगे। जरूर दोनों ने शादी कर ली होगी, शायद इसीलिए यहां आना कम हो गया होगा। क्या पता, कहीं कहीं शहर छोड़कर तो नहीं चले गए होंगे। काश काश कोई ओमी को ये बता दे कि मैं समय से पहले ही घर आ गया हूं। काश काश कोई ओमी को बता दे। वो करवट बदलता है, उसके भीतर बेचैनी है। कैसे वो अपनी बात ओमी तक पहुंचाए, पता नहीं ओमी कहाँ है, क्या पता। कब से उससे बात नहीं हुई, हर रात यही सब सोचते हुए करवटों में बीतती है उसकी। अधनींदी सी हालत में वो बीते वक्त की परछाइयों को पकड़ने के लिए दौड़ता रहता है। बीती जिंदगी की यादें उसके भीतर शोर मचाती रहती हैं, जबकि सामने अजब सा सन्नाटा रहता है। वो उस कागज की तरह था जिस पर कुछ लिखकर मिटा दिया गया हो। न उस कागज पर लिखे को पढ़ा जा सकता था, न वो ऐसा कोरा था कि जिस पर कुछ नया लिखा जा सकता हो। बिखरी बिखरी यादें उसके जहन में आती जाती रहती। वो फिर जा पहुंचा उसी जलसे में जहां ओमी गाना गाकर उठा था और भीड़ उसे घेरे खड़ी थी। ओमी हर किसी से बात कर रहा था, मगर उसकी आंखें उधर कोने में खड़ी गीत की तरफ देखे जा रही थीं। गीत भी उसे ही देख रही थी और खुश हो रही थी कि कितने फैन थे उसके इर्द गिर्द। वो दूर से ही उनकी गिनती कर ही रही थी ताकि ओमी को बता सके। इतनी देर में उधर से मोहित बैंड के कलाकार गुजरने लगे। उसके पास से निकलते हुए उसके सिंगर मोहित ने ऊंची आवाज में कहा, हीरे और पत्थर।

0: फर्क करना सीख ले गीत। हीरा भी मैं हूँ और हीरो भी मैरी।
1: मोहित की बात पर उसके साथियों का ठहाका गूंज उठा। गीत ने भले ही उसकी बात पर लापरवाही से कंधे उचका दिए, मगर ओमी इसे हल्के में नहीं ले पाया। वो भीड़ का दायरा तोड़कर मोहित की तरफ बढ़ा। उसके फैन भी उसके पीछे पीछे हो लिए और देखते ही देखते बैट बल्ले निकल गए। अचानक ओमी ने देखा कि गीत को मोहित के साथियों ने घेर लिया था। ओमी सब कुछ भूलकर उस चक्रव्यूह में दाखिल हो गया, जिससे बाहर निकलने के लिए गीत भरपूर कोशिश कर रही थी। ओमी के पीछे उसके दोस्त भी आ गए। भीड़ में पता नहीं कौन किस पर हावी था। चीख पुकार के बीच गोली चलने की आवाज आई और कुछ ही देर में सायरन बजाती एम्बुलेंस आ पहुंची थी और गीत को जिसमें चढ़ाया जा रहा था। उसके कपड़े खून में भीगे हुए थे। कातर नजरें ओमी को ढूंढ रही थीं। गीत बेआवाज उसे पुकार रही थी। ओमी महसूस कर रहा था कि अगर गीत को कुछ भी हो गया तो उसकी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ओमी मन ही मन गीत को पुकार रहा था। हाँ, मन ही मन गीत को पुकार रहा था।

एम्बुलेंस के बजते हूटर की तेज आवाज से उसकी नींद उचट गई और वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। अच्छा हुआ कि उसकी नींद टूट गई। वो उस घटना को सपने में भी दोहराना नहीं चाहता था। उसने अपनी आंखें कस कर मूंद ली। वो जीवन के उस प्रसंग को पूरी तरह नकार देना चाहता था जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। मगर आंखें बंद कर लेने पर वो दृश्य और साफ साफ दिखने लगता था। आखिर वो उठकर बैठ ही गया, सोने की जबरन कोशिश छोड़ दी और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर अंधेरा था, मगर उसकी चेतना में वो दृश्य जस का तस कैद था, जिसे वो कभी दोहराना नहीं चाहता था। उसका ऐसा अतीत जिससे उसका वर्तमान इस तरह चिपका था कि उसे कभी अलग ही नहीं किया जा सकता था। यही वो पल था जहां से बदल गई थी उसकी दुनिया, वो दुनिया जो ओमी की दिलकश आवाज से गुलजार थी, वो दुनिया जिसमें गीत की मासूमियत भरे प्रेम का दरिया छलकता रहता था। मगर उस दिन सब कुछ बदल गया था। भुलाने की लाख कोशिशों के बावजूद उस दिन की घटना उसके जहन में कब्जा करके बैठी थी। उसे अच्छी तरह ध्यान है कि मोहित के एक साथी ने पिस्तौल निकाल ली और ओमी की ओर घुमा दी। बचने की कोशिश में ओमी बगल घूम गया और गोली उसके पीछे खड़ी गीत के सिर पर लग गई। ओमी ये देखकर अपना आपा खो बैठा और उस व्यक्ति पर झपट पड़ा। हाथापाई में पिस्तौल

टक्कर दूर जा गिरी। ओमी तूफान की तरह पिस्तौल की ओर लपका। वह सोच की सुरंगों में गहरे जा घुसा था कि अचानक बरामदे में जलती बत्ती गुल हो गई। शायद बिजली चली गई थी, लेकिन पंखा चल रहा था। हो सकता है

जिसे खून से लथपथ हाल में एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा था। जीवन में आया ये कल बीतकर भी नहीं बीता और उसे आज भी उसी तरह उद्वेलित कर रहा था। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखों को जोर से भींच लिया, जैसे वो आगे की घटना को रोक देना चाहता हो, ताकि वक्त वहीं थम जाता और वो न होता जो हुआ।

वो दोबारा बिस्तर पर लेट जाता है, सोने की कोशिश करने लगता है, मगर उसे लगता है कि तब से आज तक वो नींद में ही तो जीता रहा और इसी अवस्था में इतने बरस गुजार दिए। वो करवट बदलता है और साथ ही दृश्य बदलता है। वो देखता है उसके हाथ में पिस्तौल है और पुलिस उसे पकड़ कर लिए जा रही है। ओमी उसे रोकना चाहता है, उसके पीछे पीछे आ रहा है, मगर वो ओमी को रोक देता है। तो गीत का ध्यान रख, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, वो ओमी को देखकर बुदबुदाता है। ओमी दौड़कर एम्बुलेंस में जा बैठता है। उसके बाद कोर्ट कचहरी, पेशी पर पेशी, हर पेशी पर ओमी आता है, पीछे की बेंच पर बैठता है, खामोश बेबस। वो ओमी को देखकर भी नहीं देखता कि कहीं पुलिस को ओमी पर किसी तरह का शक न हो जाए। उसे कुछ याद नहीं कौन उसकी वकालत करता है और वकालत में क्या क्या कहता है। वो बस खामोशी से सबकी दलीलें सुनता रहता है, न किसी का समर्थन करता है न विरोध। उसकी चुप्पी को हामी समझा जाता है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। ओमी दूर से उसे जेल जाता देखता रहता है। ओमी की आंखों से झांकते सवालों और उसमें तैरती अंतहीन बेबसी को अनदेखा कर वो जेल की सलाखों में कैद हो जाता है।

हर रात यही कहानी कई कई तरह से उसकी आंखों में घूमती रहती है। हर रात वो बीच नींद में जाग जाता और फिर यादों का अंतहीन सिलसिला चल पड़ता। प्याज के छिलकों की तरह एक के बाद एक घटनाओं का सिलसिला उसे मथता रहता। वो याद करने लगता कि जेल जाते वक्त ओमी ने धीरे से उससे कहा था कि वो उसका इंतजार करेगा, उसके पीछे इस घर का ख्याल रखेगा। वह ये सब कतई दोहराना नहीं चाहता। वह उस सारी कहानी को भूल जाना चाहता है। उस रात भी इसी कोशिश में लगा था कि दिमाग में छपी इस दर्दनाक इबारत को किस तरह मिटाया जाए कि अचानक कहीं दूर से उसके कानों में कोई आवाज सुनाई पड़ती है, एक मीठी तान, ऊंची तान, सुरीला आलाप। अरे अरे, ये आवाज तो ओमी की है। हाँ, ओमी की ही तो है, शत प्रतिशत ओमी की। हाँ, ये ओमी ही है, ओमी ही है। वो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठता है। मैं जानता था ओमी जरूर आएगा। मैं जानता था वो जरूर आएगा, इसीलिए तो बत्ती जला रखी थी मैंने। हाँ, मगर कहाँ कहाँ, बल्ब तो फ्यूज हो गया था, पर ओमी तक मेरी आवाज पहुंच गई होगी। देखा, अंधेरे की टोह लगाता ओमी आ ही गया मेरे पास। मैं आया, बस तुरंत आया। आता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ ओमी, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, कहता हुआ वो दरवाजे की तरफ लपका। चिटकनी खोलने की जल्दबाजी में हाथ दीवार से टकरा कर छिल गया, मगर उसे सुध कहाँ थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, आगे पीछे झांका, वहां कोई दिखाई नहीं दिया। ओमी ओमी ओमी, जरूर तू मेरे साथ मस्ती कर रहा है, यहीं कहीं छुपा होगा तू बाहर, है ना? कहाँ है ओमी? ओमी कहाँ है तू? कहाँ छिपा है ओमी? देख, सामने आ जा, कहाँ है? वो दरवाजे से बाहर निकल आया, सीढ़ियों की तरफ लपका, मगर वहां भी कोई नहीं था। कुछ पल को वो मायूस तो हुआ, मगर फिर अपनी बेवकूफी पर खुद ही हंस पड़ा। अरे, आवाज तो उधर खिड़की की तरफ से आ रही थी, और मैं यहाँ दरवाजा खोलने आ गया। वो खुद पर ही हंसने लगा और दौड़कर घर के पिछवाड़े में बगीचे की तरफ दौड़ा। उसके भीतर का कौतूहल देखते ही बनता है। जिस पल का वो इतनी रातों तक जगकर इंतजार करता रहा, आखिर वो सफल हुआ। हड़बड़ी के बावजूद वो दबे पांव घर के पिछवाड़े की तरफ बढ़ता है। बेतरतीब लताओं का जाल उसे किसी जासूसी फिल्म का आभास दे रहा है। अंधेरे उजाले के बीच हर पेड़ के पीछे कोई साया छुपा सा लग रहा है। वो धीमी आवाज में पुकारता है ओमी को, ओमी ओमी ओमी, मगर कोई उत्तर नहीं मिलता। ओमी, वो फिर पुकारता है, इस बार थोड़ी तेज आवाज में पुकारता है, ओमी, सुन रहे हो ओमी? पीछे की तरफ हल्की सी सरसराहट मालूम पड़ती है। वो हौले से घूमकर देखता है, मगर ओमी कहीं नहीं दिखता। अलबत्ता एक बिल्ली जरूर झाड़ियों से निकलकर दूसरी तरफ भाग जाती है। वो मायूस हो जाता है, उसकी आंखें सुनसान सड़क को टटोलती हैं, मगर दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। अंधेरा और घना होने लगता है, इतना घना कि जिसमें परछाई भी दिखाई न पड़े। आखिर वो ओमी को कहां से देख पाता? वो लौटकर कमरे में आ जाता है, गहरी सांस भरकर वापस बिस्तर पर लेट जाता है।

अगली सुबह जब वो सोकर उठा तो धूप की तेज किरण आंखों पर पड़ रही थी। वो बहुत व्याकुल था। अब वह और सब्र नहीं कर सकता था। उसे ओमी को खोजना ही था और ये काम वो अकेला नहीं कर सकता था। उसे किसी के मदद की जरूरत थी। वो उठकर पड़ोस में जाने को बढ़ा। हाँ, हो न हो वे जरूर बता पाएंगे कि मेरे पीछे यहां कोई कभी आया था और वो कहां रहता है। मैं जाकर पड़ोस में पूछ लेता हूं। मगर दरवाजे पर दस्तक देने से पहले वो ठिठक गया। किसी ने चेताया कि अब वो क्या करने जा रहा है। वो सोचने लगा कि पड़ोसी को अपने बारे में क्या बताएगा, और ये भी कि वो इतने सालों तक कहां रहा और आज अचानक कैसे आ गया, और ओमी को क्यों ढूंढ रहा है। वो एक सजा याफ्ता मुजरिम था। ये जानकर पास पड़ोस के लोग पता नहीं उसके साथ कैसे पेश आए। हो सकता है उससे डरने लगे, अपने बच्चों को भी उससे बचकर रहने की हिदायत दे डाले। ऐसे में उसकी सहायता कौन करता। वो बहुत असहाय हो गया। फिर उसे ध्यान आया कि जेलर साहब उसे बहुत मानते थे। वो जेलर साहब की ओर जाने को लपका। सोचने लगा, क्यों ना जेलर साहब से ही मदद ले लूं। हाँ, उनकी वजह से ही तो मेरी सजा 2 साल कम हो गई और मैं जेल से छूटकर बाहर आ गया। हाँ, वो बहुत समझदार हैं, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। हाँ, जेलर साहब के पास जाता हूं, वहीं जाता हूं मैं। वो सोचता है कि जेलर साहब कितने भले और मददगार हैं, वे जरूर उसकी सहायता करेंगे। वह याद करता है कि बिना उसके कुछ कहे ही जेलर साहब ने उसकी फाइल मंगाई थी और उसकी रिहाई के लिए अपील की थी। जेलर साहब भी एक ऐसे इंसान थे जिनसे वो अपने मन की बात कह सकता था और वही कोई रास्ता भी सुझा सकते थे। बस फिर क्या था, वो जल्दी से तैयार होकर जेल की तरफ निकल पड़ा।

0: प्यार।
1: क्या हुआ, घर में मन नहीं लगा? जेलर साहब ने पूछा। वो सीधा मुद्दे पर आते हुए बेचैनी भरे स्वर में कहता है, साहब ओमी से मिलवा दो ना। ठीक है, मिलवा देंगे, पर ये ओमी है कौन? साहब जी, वो मेरे साथ ही रहता था, बहुत अच्छा गाता था, अरसा हो गया उसकी आवाज सुने। वो मेरे साथ यहां भी आया था मुझे जेल तक छोड़ने। उसने वादा किया था साहब कि वो मेरे घर का ध्यान रखेगा। जेलर साहब सोच में पड़ गए, कौन हो सकता है, क्योंकि उनके रहते तो कभी कोई इससे मिलने आया नहीं। खैर, जब ये जेलर साहब इस जेल में आए, तब अन्य मुजरिमों की तरह इसकी भी पिछली कहानी से जेलर साहब पूरी तरह नावाकिफ थे। हाँ, उसके स्वभाव की नरमी से जरूर जेलर साहब को प्रभावित किया था और उन्होंने उसकी समय पूर्व रिहाई की अपील भी लगाई थी। अपील करते समय ही उन्होंने उसकी फाइल पढ़ी थी और जाना था कि यह हत्या के जुर्म की सजा भुगत रहा है। उन्हें तब भी विश्वास न हुआ था कि ये व्यक्ति किसी का कत्ल कर सकता है। खैर, जेलर साहब ने अर्दली से कहकर उसकी फाइल मंगवाई थी कि शायद उसमें ओमी का कुछ पता ठिकाना मिल सके। अर्दली फाइल लाकर देता है। जेलर साहब उसकी फाइल पलटते हैं कि अचानक खट से एक तस्वीर फाइल से नीचे गिरती है। जेलर साहब से पहले वो लपक कर तस्वीर उठा लेता है और चहक उठता है, साहब जी, साहब जी, साहब जी, यही तो है ओमी। हाँ साहब जी, यही है ओमी, इसी को तो ढूंढ रहा हूँ मैं। इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसके बिना मेरी रिहाई का कोई मतलब नहीं है साहब जी। इसे ढूंढ दो, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो। जेलर साहब सोचने लगे कि फोटो फाइल से निकली है तो इसमें इसके बारे में भी जरूर कुछ लिखा होगा। वो फाइल के पन्ने पलटने लगते हैं। शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी को दफा 302 के जुर्म में आज तारीख। जैसे जैसे वे फाइल पढ़ते जा रहे थे, सारा रहस्य खुलता जा रहा था। जब उसे यहाँ लाया गया था और रिकॉर्ड के लिए जो तस्वीर खींची गई थी, ये वही तस्वीर थी, यानी ओमी और कोई नहीं, वो खुद था। जेलर साहब समझ चुके थे कि लंबे समय तक जेल की जिंदगी जीते जीते वो खुद को ही पहचान नहीं पा रहा था। अपने कॉलेज के ओम गीत बैंड का वो सिंगर, हिंदुस्तानी और पाश्चात्य संगीत का फ्यूजन, जिसके गाने की खासियत थी, जिसकी ऊंची तान और दिलकश आवाज के कितने ही दीवाने थे, वो और कोई नहीं, खुद ही था ओमी। जेलर साहब फाइल पलट रहे थे और महसूस कर रहे थे कि एक समय में वो कितना हसमुख और हाजिर जवाब हुआ करता था, कितना खूबसूरत, कितना सुदर्शन युवक, मूछों की हल्की धारी, चमकदार आंखों वाला वो युवक, संगीत की धुन पर थिरकता, आवाज के आरोह अवरोह पर झूमता ओमी एक जिंदा दिल इंसान था। उसके दिलकश आवाज को सुनने भीड़ उमड़ आती थी। ओमी, ओमी, ओमी, ओमी, हर तरफ उसके नाम की धूम मची रहती थी। ऐसे ही म्यूजिकल कॉन्सर्ट में अपने प्रतिद्वंदी मोहित बैंड के लोगों के साथ उसका झगड़ा हुआ। हाथापाई, जानलेवा हमला, जिसमें इसकी गोली से गीत नाम की युवती की मौत हो गई। उसके बाद से ही ये अवसाद में चला गया, ऐसे गहरे अवसाद में कि इसने खुद को बचाने की कोशिश करना तो दूर, बल्कि खुद की उसकी हत्या का इल्जाम अपने सिर ले लिया। उसके वकील ने कहना चाहा कि ये गोली बचाव के दौरान गीत को लगी थी, मगर शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी अब जीना ही नहीं चाहता था। जेलर साहब समझ रहे थे कि ओमी, यानी वह खुद ही खुद को माफ नहीं कर पा रहा था और उसने अपने लिए ये उम्र कैद की सजा चुनी थी। जिस तरह सभी कैदी अपनी रिहाई के दिन गिनते रहते थे, इसने कभी भी जेल से बाहर निकलने का सपना नहीं देखा, यही उसकी दुनिया थी। मगर जब जेलर साहब की मदद से उसकी रिहाई हुई, तब वो खुद ही दो हिस्सों में बट गया। वो खुद की पिछली जिंदगी को थर्ड पर्सन होकर देखता रहा और खुद को ही खोजता रहा। उसके नाम के अक्षर कैदी नंबर में तब्दील हो गए। उसके भीतर का ओमी जेल की ऊंची दीवारों में दफन हो गया। उसकी आवाज की खनक लोहे की सलाखों में गुम हो गई। जेलर साहब पूछना चाहते थे कि ये कैसी और किसकी रिहाई थी, क्योंकि जिसे कैद किया गया था वो रिहा होने से बिल्कुल अलग था। कैद तो किया था एक मशहूर सिंगर को जिसकी लरजती आवाज के कितने ही दीवाने थे, मगर जिसे रिहा किया गया, ऊंची तान लेना तो दूर, वो तो किसी से दबी जुबान में भी बात नहीं करता था। चुपचाप हुक्म की तामील करना उसे बाकी कैदियों से अलग करती थी। हंसने गाने से तो उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, उसकी कोई पसंद नापसंद नहीं थी। अब वो किसी से नहीं लड़ता था, किसी से नहीं उलझता था, कोई बहस नहीं उसमें, न तो किसी तरह की जिद थी न उत्तेजना। कैद के इन लंबे वर्षों में वो एक निहायत तटस्थ व्यक्ति हो चला था, एकदम शांत और निर्विकार। अनजाने में या आत्मरक्षा में वो खुद अपनी प्रेमिका की हत्या का कारण बन गया था। इस आत्मग्लानी में घुल घुल कर उसकी जिद पानी हो गई थी और वो अपने भीतर ही भीतर खामोश होता चला गया। रिहाई के बाद अचानक वो गुमशुदा शख्स ओमी उसके भीतर उभरने लगा था और ये व्यक्ति दो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियतों में बट गया था। जेलर साहब महसूस कर रहे थे कि वो मल्टीपल डिसऑर्डर का शिकार हो चुका था, यानी एक ही व्यक्ति में अलग अलग किरदारों को जीना। वो खुद को खुद से अलग करके देख रहा था, कुछ हद तक आउट ऑफ बॉडी जैसा एहसास। ये तुम्हारी ही तस्वीर है, समझे? तुम ही ओमी हो, शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी। सुना तुमने? समझे कुछ? तुम ही हो वो ओमी। जेलर साहब ने उसकी तस्वीर उसे वापस लौटाते हुए कहा। वह कुछ समझ नहीं पाया कि जेलर साहब क्या कह रहे हैं। वो अबूझ सा जेलर साहब का मुंह ताकने लगा। फिर वो अकबकाकर कुर्सी से उठा और उस फोटो को लेकर कमरे में लगे आईने के सामने खड़ा हो गया। कभी वो उस तस्वीर वाले कमसिन चेहरे को देखता तो कभी आईने में बड़ी अपनी अधपकी दाढ़ी को। जेलर साहब कह रहे थे कि ये दोनों चेहरे उसी के हैं, मगर उन दोनों में कुछ भी तो एक जैसा नहीं था। वे दोनों शख्स एक कैसे हो सकते थे? वह पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था, खुद से पूरी तरह अनजान। वो सोच रहा था, क्या कह रहे हैं जेलर साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं ही ओमी हूं। क्या कह रहे हैं जेलर साहब, पता नहीं, पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा।

गीतों भरी कहानी। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अलका सिन्हा की लिखी कहानी रिहाई। वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी का था, संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र सिंह नेगी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आप हमें FM 102.5 मेगाहर्ट्ज, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। मैं हूँ आपकी रेडियो सखी अदिति निगम। श्रोताओं, शाम के 5 बज गए हैं और अब वक्त है आपके लोकप्रिय कार्यक्रम युव वाणी का, जहाँ गूंजती है युवा मन की बात और युवा प्रतिभाओं की सौगात। तो शामिल हो जाइए हमारे इस सफर में।

0: नमस्कार उज्जैन, नमस्कार मध्य प्रदेश और नमस्कार भारत। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज़ एफएम। युववाणी के आज के इस खास सफर में मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट मान्या,
1: और मैं हूँ रिद्धि। आज का हमारा कार्यक्रम थोड़ा अलग है, क्योंकि आज हम सिर्फ आपसे बात नहीं करेंगे बल्कि आपकी बातें भी सुनेंगे। आप हमारे साथ फ़ोन पर जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर अपने विचार, अपने अनुभव और अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
0: श्रोताओं, आज का दौर डिजिटल दौर है। एक क्लिक पर दुनिया हमारी मुट्ठी में है, चाहे पढ़ाई हो, शॉपिंग हो या दोस्तों से बात करना हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्मार्टफोन पर हम दिन के कई घंटे बिताते हैं, वही स्मार्टफोन हमें किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है।
1: लेकिन ऐसी सुविधा के साथ एक खतरा भी बड़ा है, ऑनलाइन फ्रॉड का। और मज़ेदार बात यह है कि फ्रॉड करने वाले लोग हमेशा किसी एक तरीके का इस्तेमाल नहीं करते। कभी बैंक कर्मचारी बनकर फ़ोन आता है, कभी KYC के नाम पर मैसेज आता है, और कभी कोई रिवॉर्ड या प्राइज मिलने की बात होती है, और कभी किसी अपने के नाम से ही पैसा मांगने वाला मैसेज आ जाता है।
0: और कई बार तो सामने वाला इतनी जल्दी जल्दी और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है कि हमें सोचने का मौका ही नहीं मिलता। बस यही उनकी सबसे बड़ी चाल होती है, हमें घबराहट या लालच में ऐसा फैसला करवाना जो हम नॉर्मली शायद काम सेंसेस में कभी ना लें।
1: इसलिए आज हम इस पूरे विषय पर आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आपके साथ कभी कोई सस्पिशियस कॉल आया है, कोई स्ट्रेंज मैसेज मिला है, कोई पेमेंट लिंक आई है, या आपने अपने आसपास किसी को ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होते देखा है, तो आप हमें फ़ोन करके अपनी बात साझा कर सकते हैं।
0: और सिर्फ फ्रॉड का एक्सपीरियंस ही नहीं श्रोताओं, अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपकी नज़र में कौन सी सावधानियाँ बरतनी जरूरी है, वो भी हमें बता सकते हैं।
1: क्योंकि कई बार एक व्यक्ति का छोटा सा एक्सपीरियंस किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत बड़े नुकसान से बचा सकता है।
0: तो फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और हमारे साथ अपनी राय साझा करिए। आज की बातचीत में आपकी आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
1: उठाइए अपना फोन और तुरंत हमारे साथ लाइव जुड़िए। हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए हमारा दूरभाष क्रमांक है 4054191, साथ ही उज्जैन का SCD कोड है 0734।
0: तो रिद्धि, इसी के साथ हमारे साथ हमारे आज की शाम के पहले कॉलर जुड़ ही चुके हैं। चलिए श्रोताओं, उनसे बढ़कर बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए श्रोताओं, कोई बात नहीं, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज की शाम के पहले गीत की ओर।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: नमस्कार श्रोताओं, इस गीत के बाद एक बार फिर से हम लेकर आ चुके हैं हमारा टॉपिक ऑनलाइन फ्रॉड्स एंड स्कैम्स का।
1: मान्या, ऑनलाइन फ्रॉड का सबसे आम तरीका है किसी अनजान व्यक्ति का फोन आना और खुद को बैंक कर्मचारी, पुलिस अधिकारी या किसी कंपनी का प्रतिनिधि बताना। कई बार सामने वाला इतना विश्वास के साथ बात करता है कि हमें उस पर भरोसा होने लगता है।
0: बिल्कुल रिद्धि, इसलिए सामने वाले का जो कॉन्फिडेंस है ना, उसको देखकर उसकी पहचान पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई बैंक या संस्था से होने का दावा करे तो खुद उस संस्था के ऑफिशियल नंबर पर संपर्क करके जानकारी को वेरीफाई करना चाहिए। श्रोताओं, इसी के साथ हमारे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, नमस्कार, क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? खैर रिद्धि, ओटीपी तो आजकल लगभग हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल होता है, क्यों? लेकिन कई लोग अभी भी यह नहीं जानते हैं कि ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा मान्या, चाहे सामने वाला खुद को बैंक कर्मचारी बताए या कोई और, ओटीपी आपका प्राइवेट सिक्योरिटी कोड है, किसी को भी फोन पर बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ओटीपी मांग रहा है तो वही सावधान हो जाना चाहिए।
0: बिल्कुल, बैंक, पुलिस या कोई भी अधिकारी कभी भी आपसे ओटीपी, यूपीआई पिन या पासवर्ड नहीं मांगता है। ये पैसे पाने का नियम नहीं है। पैसे प्राप्त करने के लिए कभी भी यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं होती है। श्रोताओं, पिन सिर्फ पैसे भेजने के लिए होती है। डिजिटल अरेस्ट और डर से भी आपको बचना होगा। पुलिस या सीबीआई कभी भी वीडियो कॉल पर किसी को भी गिरफ्तार नहीं करती। फर्जी वीडियो कॉल से आपको डरना नहीं है, बल्कि उसे ऑफिशियली डट के सामना करना है। इसी के साथ श्रोताओं, हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, मान्या, आजकल केवाईसी अपडेट करने का नाम पर कोई भी लोगों का मैसेज आने लगा है ना? कहा जाता है कि अगर आपने तुरंत केवाईसी नहीं किया तो आपका अकाउंट या सिम बंद हो जाएगा।
0: और इसी अर्जेंसी का फायदा उठाया जाता है रिद्धि। ऐसे मैसेजेस में दिए गए अननोन लिंक्स पर क्लिक करने के बजाय संबंधित बैंक या सर्विस प्रोवाइडर के ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट पर जाकर ही जानकारी आप लोगों को चेक कर लेनी चाहिए। खैर श्रोताओं, बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर। इसके बाद हमारी स्टूडियो लाइन्स खुली हुई हैं। हम आपकी कॉल्स पिक करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। कॉल करते रहिए है।

0: श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की लाइंस खुली हुई हैं। अगर आपको हमसे बात करनी है तो आप हमारे दूरभाष क्रमांक 0734-4054-191 पर कॉल कर सकते हैं। हमें आप सभी के कॉल्स का बेसब्री से इंतजार है। श्रोताओं, इसी के साथ हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है?
1: जी बिल्कुल, आपकी आवाज अच्छी आ रही है।
0: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में है, आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स और स्कैम्स के बारे में। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी मैं राकेश बात कर रहा हूँ,
0: शिमला से। नमस्कार राकेश जी, बिल्कुल आप वन ऑफ आवर रेगुलर कॉलर्स एंड लिसनर्स हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में, तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कुछ ऑनलाइन फ्रॉड या स्कैम, या फिर आपके किसी रिलेटिव के साथ?
1: जी जी, तो आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है।
0: जी जी।
1: तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक मेरी कजन सिस्टर थी।
0: जी जी।
1: तो उनके साथ जो है ऑनलाइन जो है फ्रॉड हुआ था, किस तरह से हुआ था, तो और अपनी गलती से उनने खुद ही किया। जैसे कि उनने क्या किया, तो उनको लिया आया एक ऑफर।
0: जी, कैसा ऑफर?
1: आपके लिए हम ऑफर यह कि आपको घर बैठे नौकरी मिलेगी, आपको सिर्फ पेंसिल का जो है पैकिंग करनी है तो भेज देनी है ऑनलाइन, और आपको महीने का जो है सैलरी मिल जाएगी अच्छी खासी।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो हाँ, तो उनने बोला तो खुश होगी, लेकिन उनके पति थोड़े ऐसे थे, क्या बोलते, खा पी के मारते थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो अगर मुझे घर बैठे नौकरी मिल जाएगी तो मैं अपनी बेटी को अपने बेटे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, मेरा घर का काम भी चलेगा और इधर में वो पेंसिल तो करनी पे क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ सर, मैं मुझे ये जॉब चाहिए। मैं कहा ठीक है। तो फिर हमारे पास गई, तो हमने बोला कि यार ऐसे हमारे पास कुछ नहीं बोला। हमारे को बोलती, अरे राकेश भैया जी आप तो पीछे रह गए, हम कहाँ से कहाँ पहुंचे। मैं कहा क्या ऐसा क्या किया? अरे फोन में तो सब कुछ मिल जाता है। बोलो अब देखो मुझे, मैं तो बोलो अच्छी जॉब में लगने वाली। मैंने हमने बोला कि चलो बधाई हो आपको अच्छी जॉब में लगने वाली। तो फिर उनने क्या किया, तो बोला कि कब तक मिलेगी। बोला आपको पहले थोड़े अमाउंट जमा करने पड़ेंगे। तो उनने बोला कि मैं पैसे कहाँ से जमा करूँ। तो उन्होंने एक स्कैनर भेजा व्हाट्सएप पे।
0: जी।
1: तो स्कैनर भेजा, तो फिर पहले शुरुआत में 3,000, फिर 2,000 मांग के किया ऐसा करके, उन्होंने क्या बोलते 10,000 जो है उनके जो है स्कैनर से भेज दिए।
0: तो उसके बाद आपने कुछ ऑफिशियल कंप्लेंट करी?
1: और साइबर जो हेल्पलाइन में है उनने कंप्लेंट करी, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है वो उनका काम नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि गलती थी। ऊपर से उन्हें मारे पास कब था, एक महीने के बाद, जब उनके पति ने मारा कि आपने क्यों, बोला मेरे 10,000 उड़ गए। तो मैंने बोला कि अगर पहले था मैं होप देता, पर एक महीने से पहले क्या, एक महीने के बाद क्या, तो फिर वो तब तक जो उनका कुछ नहीं बना।
0: जी जी बिल्कुल, थैंक यू।
1: उनके साथ भी बहुत हुआ।
0: जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच राकेश जी, आपने अपना इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करा, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो बाकी श्रोता है वो भी ये जो भूल हुई है आपकी कजन से उसे सीखेंगे।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब तो इस चक्कर में पड़ती नहीं, तो मैं आपकी उज्जैन के माध्यम से मैं ये क्या बोलते संदेश देना चाहता हूँ कि कभी आपको कोई ऐसा ऑफर दे कि 10 की 20 बन जाएगी, 20 की 40 बन जाएगी, कृपया करके ऐसे ऑफर पे ना आए, और पहले आप पूरा चेक कीजिए कि क्या क्या स्कीम है। क्योंकि कई बार ये फोन ऑनलाइन जो है कुछ ऐसे काम कर लेते, कई बार हम अपनी गलती के कारण जो है अपना पैसा हम खुद उड़ा लेते।
0: जी बिल्कुल राकेश जी, आपने हमें ये इतनी महत्वपूर्ण बात हमसे साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी उज्जैन में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी।
1: जी धन्यवाद।
0: चलिए श्रोताओं, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, इसी के साथ एक बार फिर से हम हमारा दूरभाष क्रमांक दोहरा रहे हैं। हमारे स्टूडियो की लाइंस आपके लिए खुली हुई हैं और हम आपके कॉल का इंतजार भी कर रहे हैं। श्रोताओं, वैसे रिद्धि, कभी कभी हमारे पास ऐसा मैसेज आता है कि कंग्रेचुलेशंस, आपने प्राइज जीता है, और हम सोचते हैं कि अरे वाह, बिना कुछ किए प्राइज मिल गया।
3: लेकिन यही थोड़ा रुक कर सोचना जरूरी है। अगर आपने किसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ही नहीं लिया है तो अचानक प्राइज कैसे मिल गया? ऐसे ऑफर्स के साथ अगर रजिस्ट्रेशन फी, प्रोसेसिंग फी या बैंक डिटेल्स मांगी जाए तो यह फ्रॉड का संकेत हो सकता है।
2: जी बिल्कुल रिद्धि, हम ये बात और डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, तो चलिए ये बात उन्हीं के साथ जाके डिस्कस करते हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार,
2: क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है?
4: हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है
2: जी? बिल्कुल, आकाशवाणी उज्जैन में आपका स्वागत।

0: है, आज हम ऑनलाइन फ्रॉड्स और स्कैम्स के बारे में बात कर रहे हैं, और इसी के साथ आप कौन है और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: अच्छा प्रेम सिंह जी, नमस्कार। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज इस टॉपिक के बारे में, तो क्या कभी आपके साथ या फिर आपके किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा हुआ है कि वो किसी स्कैम या फिर फ्रॉड में फंस गए हो, उनका अगर कोई ऑनलाइन अरेस्ट हुआ हो या फिर किसी ने ऑनलाइन स्कैम के चक्कर में बहुत सारी धनराशि गंवा दी हो?
1: जी बिल्कुल, हमारे साथ में तो नहीं हुआ, बट मेरा एक दोस्त है उसके साथ में हुआ है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा।
0: जी बिल्कुल।
1: उन्होंने मतलब किसी दूसरे का मतलब अकाउंट हैक कर लिया था किसी मतलब मेरे दोस्त से, दोस्त के मोबाइल से, और मेरे दोस्तों को पता भी नहीं था कि मेरे मोबाइल से किसी ने मतलब दूसरे के अकाउंट को हैक कर लिया है। और अगर वो जैसे ऑनलाइन उसने पेमेंट कहीं पर दूसरी जगह किया, सीधा अकाउंट मेरे दोस्त के खाते में आए पैसे, और उसके खाते में ऐसा उसे पता भी नहीं चला कि मेरे खाते में पैसे कहाँ से आए। और इस तरह से मतलब सामने वाले जब इसको कॉल करने लगे थे बाद में कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए और आपको वापस रिटर्न करना है, ये तो उसने बोला कि मैंने तो आपको कोई मैसेज भी नहीं भेजा या कोई ऑनलाइन करने के लिए कुछ कहा भी नहीं, आपने मेरे अकाउंट में पैसे क्यों ट्रांसफर किए? ऐसे करके उन्होंने मतलब काफी बहसबाजी हुई, और फिर ये मतलब मामला थाने तक जाने को मतलब तैयार हो गया था। और फिर हमने उस सामने वाले को समझाया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आपके द्वारा कुछ फ्रॉड हुआ है। हाँ, हम आपके जो पैसे हमारे अकाउंट में आ गए हैं करीबन 6-7 हज़ार रुपए थे।
0: अच्छा,
1: फिर हमने उस मोबाइल पर, हाँ जी, फिर वापस उसके मोबाइल में ट्रांसफर किए। उनकी ये स्कीम थी कि अगर ये वापस हमारे मोबाइल में ट्रांसफर करेंगे ना तो इनका अकाउंट हैंग हो जाएगा और सारे पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, इस तरीके से उन्होंने क्लेम करना चाहा था। लेकिन हमने अपनी जागरूकता दिखाई, सूझबूझ दिखाई और हमारे पैसे बचाए।
0: जी बिल्कुल, तो जो बिल्कुल सही कहा, ये जागरूकता ही हमें कई बार बचा लेती है। प्रेम सिंह जी, इसी के साथ
1: बताना चाहेंगे, ये हमारे साथ में तो नहीं हुआ, बट मेरा दोस्त है, काफी अच्छा दोस्त है, हम साथ में रहते हैं, उनके पता तो मुझे ये घटना आज याद आई और मैंने आपको बताया, ये 3 महीने पुरानी भी नहीं है।
0: अच्छा जी, बिल्कुल काफी पुरानी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आपको पता पड़ा कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो क्या आपने पैनिक में कुछ काम किया या फिर अगर नहीं तो आपने ऐसी कौन सी जो है सुविधाएं चुनी, आपने किस तरीके से सिचुएशन में जो आपको बचा सकी, आपने इस सिचुएशन में कैसे एक्ट करा?
1: पहले तो उन्होंने बताया कि आपको इस खाते में इतना अकाउंट में ऐसा पैसा डालना है, तो हमने इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं किया क्योंकि हमने हमारी तरफ से कोई मतलब थी ही नहीं, ऑनलाइन खरीदारी भी नहीं थी या ऑनलाइन हमने कोई मतलब पेमेंट भी नहीं किया था किसी को, या किसी के यहाँ पे ऐसे जो स्कैमर होते हैं उसमें भी पेमेंट नहीं डाला, तो हमारे साथ में हमें पता था कि हमारे साथ में फ्रॉड हो रहा है, इसलिए हमने मतलब जागरूकता दिखाते हुए उनको मतलब दूर चढ़ाया।
0: जी जी बिल्कुल प्रेम सिंह जी, बहुत अच्छी बात करी आपने, और
1: सुनिए, जैसे ही हमने बोला कि हम आपको मतलब ये थाने जा रहे हैं और आपकी रिपोर्ट इस नंबर पर कर रहे हैं, जैसे जैसे तुरंत बोलने से ही सीधे मतलब वो माफी मांगने लग गए हमसे, वो आपके साथ अगली बार से आपके साथ के नहीं, क्या किसी के साथ में हम ऐसा फ्रॉड नहीं करेंगे।
0: बिल्कुल, आपने बहुत सूझबूझ के साथ काम करा प्रेम सिंह जी। उम्मीद करता है कि हमारे आज के श्रोताओं को आपकी ये जो कहानी आपके साथ ये जो हुआ है इससे बहुत सबक मिलेगा।
1: जी बिल्कुल
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्ते।
0: चलिए श्रोताओं, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर।

0: तो श्रोताओं, उसी के साथ हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार। मान्या, UPI ने पेमेंट को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन इसी सुविधा का गलत इस्तेमाल करके भी फ्रॉड किया जाता है।
1: हाँ, बेशक रिद्धि, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें ऐसे सिचुएशंस में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि पैसे रिसीव करने के लिए आपको किसी अनजान व्यक्ति को अपना UPI पिन डालने की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई कहे कि पैसे लेने के लिए QR स्कैन कीजिए और पिन डालिए, तो पहले रुकिए और पूरी बात को वेरीफाई कीजिए। इसी के साथ चलिए हमारी श्रोता से बात करते हैं। हेलो, नमस्कार।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार, क्या आपको हमारी आवाज अच्छे से आ रही है?
2: आपकी आवाज थोड़ी सी एको कर रही है।
1: अच्छा, अभी ठीक है?
2: अभी भी एको ही कर रही है।
1: अच्छा, आकाशवाणी उज्जैन में आपका स्वागत है। आप कौन है और कहाँ से बोल रहे हैं?
2: जी, मेरा नाम वरद है और मैं पुणे से बोल रहा हूँ।
1: एक बार फिर से आप अपना नाम दोहराएंगे?
2: मेरा नाम है वरद।
1: वरद?
2: और मैं पुणे से बोल रहा हूँ। जी
1: वरद जी, काफी यूनिक नाम है आपका। जैसे कि अगर आप हमारा ब्रॉडकास्ट सुन ही रहे होंगे तो आपको ये समझ आया होगा कि आज हम ऑनलाइन फ्रॉड्स और स्कैम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ किस्सा हुआ है ऑनलाइन फ्रॉड्स और स्कैम्स को लेके?
2: नहीं, मतलब मैं तो, मेरे साथ नहीं हुआ है हालांकि, लेकिन मेरे एक फ्रेंड है, मतलब मेरे पापा, नहीं मेरे मम्मी के फ्रेंड के पापा थे, उनसे तो हुआ था ऐसा चीज।
1: अच्छा अच्छा,
2: क्या हुआ था उनके साथ एक्चुअली, मैं अगर मैं बताऊँ तो शॉर्ट में, कि मतलब उनको स्कैम कॉल आया था कि
1: हम ये लोग हैं
2: और आपके पास अभी OTP आएगा, हमको OTP भेज दो।
1: और
2: उन्होंने, मतलब वो जो अंकल थे वो बुड्ढे थे, तो उन्होंने उनको OTP भेज दिया कि ये लोग, और उनका ना पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया था।
1: पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया? अप्रोक्सीमेटली कितने पैसे खाली हो गए थे उनके अकाउंट से?
2: लगभग मान लो 3 करोड़ तो गए होंगे।
1: 3 करोड़? इतना बड़ा स्कैम?
2: तो बड़ा स्कैम जी।
1: ओके, तो इसके बाद आपने क्या सावधानियां बरती? लाइक इसके बाद आपने नेशनल साइबर सिक्योरिटी नंबर पे कॉल करा या फिर किसी पुलिसकर्मी से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी?
2: जी, उन्होंने बताया कि हमने कॉल वगैरह किया था, लेकिन वो ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था, क्योंकि उनका नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा था, एंड उन्होंने अपना नंबर, मतलब उनकी सिम को उन्होंने डीएक्टिवेट कर दी थी, उनका नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा था।
1: अच्छा।
2: देन बाद में मालूम पड़ा कि उन्होंने ऐसे बहुत लोगों को ठगाया, हालांकि उनको पकड़ा गया बाद में कुछ दिनों के बाद, लेकिन फिर वो रकम वापस नहीं हो पाई शायद से।
1: अच्छा, तो वो पैसे मतलब कुछ भी वापस नहीं हो पाया?
2: नहीं, वापस नहीं हो पाया, लेकिन बहुत चला गया, मतलब बहुत ज्यादा चला गया, बहुत ज्यादा हुआ।
1: ये तो काफी दुखद खबर है वरद जी। इसी के साथ मैं आपसे एक और सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया में नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन का नंबर क्या है?
2: नेशनल साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर तो मतलब मैंने सुना था, हालांकि मुझे लर्न नहीं है, बट
1: नहीं हाँ। जी कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं श्रोता, हमारे इंडिया के नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन का नंबर है 1930। तो कभी भी आपके साथ कोई ऐसा किस्सा हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप ठगे जा रहे हैं, तो आप तुरंत इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ये आपको एकदम इंस्टेंट जो है सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ अगर आपके साथ ऐसी कुछ सिचुएशन होती है तो वरद जी, आप cybercrime.government.in पर जाकर भी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं।

क्रेडिट और डेबिट कार्ड फ्रीज करवाना और नेट बैंकिंग लॉक करवा देना, अपने पासवर्ड्स को बदल देना, अपने ईमेल, सोशल मीडिया और बैंकिंग ऐप्स के पासवर्ड बदलें और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA ऑन कर लीजिए। पेमेंट की रसीद, चैट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स, व्हाट्सएप मैसेजेस अगर आपके साथ स्कैम हो जाता है, ऑफ कोर्स उसके बाद ये सारी चीज़ें बचाकर एज एविडेंस के तौर पर संभाल के रखें। हम चरण दो के बारे में वापस बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं एक मधुर गीत।

0: तो रिद्धि, श्रोताओं में से कभी आपने सोचा है या फिर आपने कभी नोटिस किया है कि लोग किसी सर्विस का कस्टमर केयर नंबर खोजने के लिए सीधे इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं?
1: हाँ, और यही सावधानी ज़रूरी है, सर्च रिजल्ट्स में दिखने वाला हर नंबर ऑफिशियल हो। यह ज़रूरी नहीं गलत नंबर पर कॉल करने से व्यक्ति खुद को कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बताकर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। इसलिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल ऐप से कस्टमर केयर नंबर लेना बेहतर है।
0: इसी के साथ रिद्धि, हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बात करते हैं।
2: नमस्कार, क्या आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है?
3: गुड इवनिंग मैम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स और स्कैम्स के बारे में। आप

0: कौन है और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं सिटी से बोल रहा हूँ, 40 किलोमीटर दूर।
0: जी एक बार फिर दोहराएंगे।
1: मेरा नाम राजीव पंजाबी।
0: राजीव जी?
1: हाँ जी,
0: हाँ जी। नमस्कार राजीव जी, मैं ये बोल रही थी, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या कभी आपके साथ फिशिंग, स्कैमिंग, ऑनलाइन अरेस्ट या फिर ओटीपी से पैसे हड़पने की कोशिश हुई है?
1: जी, ये मैंने आपका ये सुना, तो मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ था 2012 के अंदर।
0: 2012 में? जी बिल्कुल जी, ओके
1: जी। ये घटना यूँ थी कि जैसे कि दिवाली का वक्त होता है।
0: हाँ जी
1: जी। और उसके पहले की बात है, मैं रात सफाई में था, रात में थोड़ा लेट उठा, सुबह उठते से मुझे कॉल आया 9:30 बजे के समथिंग।
0: अच्छा अच्छा, उठते से? हाँ,
1: तो उन्होंने कहा कि राजीव बोल रहे। मैंने हाँ जी बोल रहा हूँ, क्योंकि वो आपका जो ATM नंबर है वो आपका वो हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब जो है डिलीट कर दिया गया है, वो आपका जो वो नया आपको नया नंबर दे रहे हैं, हम बैंक अधिकारी बोल रहे हैं। ठीक है जी। अब मैं सुबह उठा हुआ था
0: जी,
1: फिर मैंने क्या, चलो ठीक है, मैंने कहा मुझे तो मेरा वो कहते कि आप, उन्होंने 4, 5, 6, 7 नंबर होते हैं उन्होंने एक्यूरेट बताए। उसके बाबत में ये होता है कि उन्होंने मुझे कहा कि आपका जो पिन कोड है वो मेरे साथ शेयर कीजिए।
0: पिन कोड?
1: जी जी जी।
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा कि रुकिए आप, तो फिर उन्होंने, मैंने कहा 10 मिनट बाद फोन लगाइए, अब मेरा दिमाग चला नहीं, अब मैंने वो उसमें बुक के अंदर याद रखा हुआ था, फिर मैंने याद करके फिर उनका कॉल आता, फिर मैंने उन्होंने किया। उसके बाद में क्या होता है कि उसके 10 उन्होंने किया कि कॉल डाला, उसके बाद में उन्होंने 500 रुपए मेरे कटे उसमें से। ठीक है जी। मैसेज आया मेरे पास।
0: अच्छा।
1: हाँ, फिर मैंने समझा कि कुछ होता ऐसा होगा, फिर तो उन्होंने कहा कि कुछ आपका पैसा माइनस हुआ, मैंने कहा हुआ 500 रुपये हुआ। फिर मैं तुरंत जो मेरे दिमाग की बत्ती चली और मैं फिर तुरंत भागा वहाँ पे बैंक की ओर। बैंक की ओर भागते भागते करते करते करते तो उन्होंने मेरा वो ब्लॉक कर दिया नंबर, उसका जो था जो मेरा लेन देन चलता था बैंक का, इस साल पुराना खाता था, बंद किया। उसके बाद में क्या होता है कि मैंने फिर 5 दिन बाद फिर उसको मैंने चालू किया खाते को चालू करते ही मेरे उसमें से 50,000 रुपये 10,000 रुपये कट कट कट करके 63,000 रुपये मेरे माइनस हो गए।
0: 65,000 रुपये आपके माइनस हो गए?
1: जी।
0: उसके बाद आपने क्या किया?
1: बैंक अधिकारी जी, फिर मैं तुरंत भागा, वो दोनों के हेल्पलाइन पे करो, फलाना करो, ढिमका करो, ऐसा करो। अब वो छुट्टियां पड़ गई थी दिवाली की।
0: हाँ जी।
1: फिर मैंने फिर संडे का दिन भी था
0: जी।
1: और सुबह मैंने फिर कोई मेरा फ्रेंड था, उसने उसको वैसे करके उसको ब्लॉक किया और फिर पुलिस में भी किया। पुलिस वाले कहते हैं कि फलाना ऐसा है ऐसा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई और डेथ कॉल से बात होती है।
0: अच्छा, तो उसके बाद आपके साथ जिन्होंने स्कैम करा क्या वो पकड़े गए?
1: नहीं, उसके बाद नहीं। अब भाई जी, अब पकड़े भी गए तो हमें तो उसकी जानकारी नहीं है वो। अब उसके बाद उसमें पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको निकाला था, तो बिहार साइड के यूपी साइड के बोलने निकले थे।
0: अच्छा। एक बार जो गौर करने की है इस आपकी जो पूरी बातचीत में, मैंने जो एक बात गौर करी है वो ये है कि उन्होंने एक ऐसा टाइम चुना जहाँ पे आप पूरी तरीके से कॉन्शियसली अवेयर नहीं थे, लेकिन आप पूरी तरीके से सिचुएशन में प्रेजेंट नहीं थे, और अक्सर स्कैमर्स ऐसा करते हैं जी। तो
1: वो उस वक्त ये भी रहा कि मेरे साथ में मुझसे भी खड़ी थी, उन्होंने क्या किया, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं, मैं तू तो चुपचाप बैठी थी, ऐसा ऐसा हमने थोड़ी सी अनमन हुई, तो वो ध्यान ले दिया बाद में। वो कहते ना कि सांप निकल जाता फिर वो लाठी कूटते हैं।
0: बिल्कुल जी, ये तो बहुत अच्छी बात कही राजीव जी आपने। बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि आपके साथ ऐसा स्कैम हुआ है, लेकिन वही है कि आप ठोकर खाकर ठाकुर ही बने हैं। तो इसी के साथ बहुत खुशी हुई कि आपने हमारे साथ ये बात अपनी साझा करी। उम्मीद करते हैं कि आकाशवाणी उज्जैन के साथ आपका ये जो रिश्ता है ऐसा ही बना रहेगा जी। नमस्कार। चलिए श्रोताओं, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के अगले और मधुर गीत की ओर।

0: श्रोताओं, जैसे कि गीत से पहले हम बात कर रहे थे और हमने राजीव जी की कहानी और उनका किस्सा जो था वो हमने सुना कि कैसे उनसे एक OTP मांग कर उनके इतने सारे पैसों का नुकसान करवा गए स्कैमर्स। इसी के साथ मैंने आपको एक और बात बताई थी कि कैसे चरण वन में फ्रॉड होने पर हमें तुरंत क्या एक्शन लेना चाहिए। हमने बात करी कि कैसे हमें तुरंत संपर्क काट देना चाहिए जब स्कैमर्स का कॉल आए। खैर, उस टाइम हमें अक्सर पता नहीं पड़ता है कि हमें ठगा जा रहा है, हमारे साथ स्कैम हो रहा है। बट फिर भी कभी भी आपसे कोई बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगे तो आपको तुरंत आपके पैसे कटने पर, जैसे कि उनके साथ 500 रुपये कटे और फिर उन्होंने तुरंत एक्शन नहीं लिया बिकॉज उस टाइम वो थोड़े से कॉन्शियसली अवेयर नहीं थे, लेकिन आपको तुरंत अपने बैंक अकाउंट को ब्लॉक करवाना है और आपके जितने भी पासवर्ड्स हैं वो बदल लेने हैं। उसके बाद 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करवा देना है और अगर आपके पास ये जो सबूत हैं, आपकी जो पैसे कटे हैं उसकी रिसीप्ट और बाकी सारी चीज़ों को एज एविडेंस रखना चाहिए। इसी के साथ साथ आधिकारिक शिकायत भी, जो हमारे चरण 2 का एक एक्शन होता है, आपको वो करनी चाहिए तुरंत। राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन, जिसका हमने अभी नंबर बताया 1930, उस पर तुरंत कॉल करना चाहिए। आधिकारिक साइबर पोर्टल जो कि है cybercrime.government.in, cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। स्थानीय पुलिस, नजदीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पर लिखित में आपको शिकायत भी जमा करवानी चाहिए। इसी के साथ तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चरण आता है कि फ्रॉड से बचने के 4 गोल्डन रूल्स क्या है। हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो अगले कॉलर हैं उन्हें इंतजार न करवाते हुए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है?
1: नमस्कार जी, आपकी आवाज आ रही है।
0: जी, आकाशवाणी उज्जैन में आपका स्वागत है। आप कौन है और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, हम अज्जी भाई है और हम नागालैंड से बोल रहे हैं।
0: अज्जी भाई,
1: हम अज्जी भाई है और हम अंडमान से बोल रहे हैं, थोड़ा भूल जाते हैं।
0: अच्छा, नमस्कार अज्जी भाई, आज हम ऑनलाइन फ्रॉड्स और स्कैम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ सिचुएशन बना है
1: ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में?
0: जी,
1: बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय चुना है आपने आज। देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड जो होते हैं वो तो होते रहते हैं। जैसे कि मेरे पापा को एक बार कॉल आया था, फिर उसके बाद हमने उस ऑनलाइन फ्रॉड को अच्छे से ट्रैक किया था, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड कर ली थी। हमने उसी को बोल दिया था कि अगर तुमने कुछ और किया तो हम तुम्हें पकड़वा देंगे। उसके बाद ऑनलाइन फ्रॉड ने खुद ही कॉल को काट दिया, पता नहीं क्यों।
0: अजय भाई, ये तो आपने बहुत सूझबूझ का काम किया। उम्मीद करते हैं कि आपकी इस बात से दूसरे श्रोताओं को भी सबक मिलेगा। आकाशवाणी उज्जैन में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
1: जी।
0: चलिए श्रोताओं, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर।

0: तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है?
2: हाँ जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मुझे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन है और कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन से।
1: नमस्कार लोकेंद्र जी, आप तो कई बार हमें कॉल कर चुके हैं, आपका और आकाशवाणी उज्जैन का रिश्ता काफी पुराना है।
2: बिल्कुल मैडम जी, सभी प्रोग्राम सुनते हैं, अच्छे लगते हैं, युवानी खास करके मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम, और सुबह आता है जो भी प्रोग्राम, मतलब अब तो उज्जैन शहर में रहते हैं तो सभी प्रोग्राम आपको ये सुनते रहते हैं।
1: जी जी बिल्कुल, हमें सुनकर बेहद खुशी हुई कि आपको आकाशवाणी उज्जैन के कई प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं। वैसे लोकेंद्र जी, जैसे कि आप सुन ही रहे होंगे प्रोग्राम, हम लोग आज बात कर रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में, तो अगेन मेरा आपसे भी वही सवाल है कि क्या आपके साथ या फिर आपके किसी रिश्तेदार दोस्त के साथ कुछ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है?
2: हाँ जी मैडम, मेरे साथ में तो नहीं हुआ, मैं तो सिक्योर रहता हूँ, मतलब हर इस चीज को जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपन समझते हैं, उसमें हर चीज बताया भी जाता है, ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, रेडियो पर भी बताते हैं, साइबर क्राइम की, हर किसी को अपन फोन लगाते थे साइबर क्राइम की ट्यून भी बजती है आजकल।
1: जी जी।
2: हाँ तो मेरे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, पर मेरे एक दोस्त के साथ में हुआ था।
1: अच्छा, तो क्या हुआ था उनके साथ?
2: उज्जैन में ही रहते हैं।
1: क्या नाम है?
2: वो मेरे सैलून पर काम करते थे वो।
1: अच्छा।
2: और सुनील नाम है उसका।
1: अच्छा।
2: और उसके साथ में ऐसा एक बार हुआ था, तो उसने जब कोई ऐप या उनको कोई लिंक दिया था मोबाइल पे डाउनलोड करने के लिए, तो वो मोबाइल जब से उन्होंने लिंक जब ऑनलाइन जो टेक्स्ट मैसेज दिया ना
1: जी जी,
2: उनको इनाम का लालच दे के अपने जाल में फंसाया गया।
1: मतलब मैं समझी नहीं, लाइक कैसा इनाम, कैसा टेक्स्ट मैसेज आया था उनको?
2: मतलब उसको पहले फोन किया गया कि हमने आपको ये कोई भी कंपनी के माध्यम से हमने आपको 5,000 रुपए का इनाम मिला है आपको, तो हम आपके पास में ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको हमारे मोबाइल में आप हमें एक लिंक भेज रहे हैं, उसको आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, तो उसके माध्यम से फिर हम आपको लिंक जब डाउनलोड हो जाएगा तो आप हम आपको 5,000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे।
1: अच्छा,
2: तो जब
1: अच्छा।
2: उसने लिंक ओपन किया, उसको डाउनलोड किया, तो डाउनलोड होने के पश्चात में मतलब उसका आपको ऑटोमेटिक उसका मोबाइल या तो हैक हो गया या उसको कोई उसने गलती कर ली, अपनी तरफ से कोई OTP नंबर दे दिया सामने वाले को, स्कैमर
1: अच्छा,
2: को तो उससे उसके बैंक अकाउंट से 12,000 रुपए निकल गए थे।
1: अरे बाप रे। तो उसके बाद क्या उन्होंने कहीं जाकर ऑफिशियली शिकायत दर्ज करवाई?
2: ऑफिशियली उसने बैंक को इन्फॉर्म किया था, और बैंक वालों ने तो किया कि आपने अपनी तरफ से OTP दिया है, और एक बार पुलिस में भी जाके उन्होंने कंप्लेंट की थी। जब भी जैसे कि अभी अपन देखते हैं तो सब जगह नंबर बताते 1930 का नंबर बताता, 1930 पे कॉल करें, सबसे पहले वहां पर कंप्लेंट करें।
1: जी जी जी।
2: तो उन्होंने मतलब वहां पर भी कंप्लेंट डाली थी।
1: जी बिल्कुल, समय की थोड़ी कमी होने के कारण लोकेंद्र जी हमें अभी आपसे बात बंद करनी पड़ेगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही हमारे साथ कॉल्स पर जुड़े रहेंगे और हमारा आपका रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा।
2: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
0: वैसे रिद्धि, आज तो बातों बातों में वक्त इतनी तेजी से निकल गया कि पता ही नहीं चला आज का ये एक घंटा कब शुरू हुआ और कब खत्म होने को आ गया, सच में पता ही नहीं चल रहा था। और हमारे श्रोताओं ने ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर जो अपने अनुभव और विचार हमारे साथ साझा करे, उन्होंने आज की बातचीत को और भी खास बना दिया।
3: बिल्कुल सही कहा मान्या, आज का कार्यक्रम सच में मुझे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और जागरूकता से भरपूर रहा। हमारे श्रोताओं की बातों से एक बार फिर यही सामने आया कि ऑनलाइन दुनिया में थोड़ी सी सावधानी और समझदारी हमें कई बड़ी परेशानियों से बचा सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा रिद्धि आपने, आज की चर्चा से सबसे ज़रूरी बात यही निकल कर सामने आती है कि किसी भी अनजान कॉल, मैसेज या लिंक पर तुरंत भरोसा करने के बजाय पहले उसकी जानकारी वेरीफाई कर लेनी चाहिए। देखिए समय बदल रहा है और आजकल के चोर आपके घर में ताला तोड़कर नहीं घुसते, बल्कि आपका भरोसा जीत कर घुसते हैं, तो आपको ऐसी सिचुएशंस में अवेयर रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। OTP, पिन, पासवर्ड जैसी निजी जो जानकारी रहती है ना, वो आपकी प्राइवेट और पर्सनल जानकारी रहती है, उसे सुरक्षित रखना और किसी के दबाव में आकर जल्दबाजी में पेमेंट न करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। श्रोताओं,
3: प्यारे श्रोताओं, आज जितने भी दोस्त हमसे फोन पर लाइव जुड़े और जिन्होंने अपनी बातें, अनुभव और राय हमारे साथ साझा की, और वे तमाम साथी जो लगातार कॉल करते रहे लेकिन फोन लाइंस व्यस्त होने के कारण हम उनसे आज बात नहीं कर पाए, आप सभी के इस जबरदस्त प्यार और सहभागिता के लिए आकाशवाणी उज्जैन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वैसे रिद्धि, क्या हम कुछ भूल नहीं रहे? अरे हाँ, हम बताने वाले थे हमारे श्रोताओं को फ्रॉड से बचने के लिए 4 गोल्डन रूल्स। श्रोताओं, इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। OTP और पिन किसी को कभी नहीं देना, इट इज वन ऑफ आवर मोस्ट गोल्डन रूल्स। बैंक, पुलिस या कोई भी अधिकारी कभी भी आपसे OTP, UPI, पिन या पासवर्ड नहीं मांगता है। पैसे पाने के नियम, पैसे प्राप्त रिसीव करने के लिए कभी भी UPI पिन डालने की जरूरत नहीं होती है। पिन सिर्फ पैसे भेजने के लिए होती है। स्पेसिफिकली डिजिटल अरेस्ट, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, उसके डर से बचें।

0: पुलिस या सीबीआई कभी भी वीडियो कॉल पर अरेस्ट कर ही नहीं सकती है। फर्जी वीडियो कॉल से आपको कभी डरना ही नहीं चाहिए और अज्ञात ऐप से दूरी रखिए। जैसे कि कोई भी अनजान ऐप होता है तो उसमें हम तुरंत क्लिक कर देते हैं, कुछ भी डाउनलोड कर देते हैं, जैसे कि लोकेंद्र जी ने हमें बताया। तो आपको ऐसी सारी चीज़ों के लिए अवेयरनेस रखनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल मान्या, आपकी भागीदारी ने आज के कार्यक्रम को और भी मीनिंगफुल बना दिया। उम्मीद है कि आज की बातचीत से मिली छोटी छोटी सावधानियां आप अपनी रोजमर्रा की ऑनलाइन लाइफ में भी जरूर याद रखेंगे।
0: तो श्रोताओं, इसी के साथ समय आ गया है आप सभी से विदा लेने का। सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी उज्जैन और हमारा यह मंच युववाणी। मिलेंगे आपसे एक बार फिर से शाम 5 से 6 बजे के बीच में। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम युववाणी, युवा शक्ति, युवा सोच और युवा अभिव्यक्ति के संगम से परिपूर्ण। इस अंक में फिलहाल इतना ही, दीजिए अनुमति, मगर आप सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन, क्योंकि अब समय होने वाला है भजन संध्या कार्यक्रम का। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है, FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़। साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी आप हमें सुन सकते हैं। मैं हूँ आपकी रेडियो सखी आदित्य निगम। नमस्कार श्रोताओं, अब वक्त है आपके लोकप्रिय कार्यक्रम भजन संध्या का। श्रोताओं, गणेश उत्सव की धूम शहर भर में निरंतर जारी है। किसी भी शुभ कार्य का आरंभ प्रथम पूज्य भगवान गणेश के स्मरण से किया जाता है। विघ्नहर्ता गणेश बुद्धि विवेक और मंगल के प्रतीक हैं। आइए गणपति बप्पा का ध्यान करते हैं और सुनते हैं गणेश आरती।

श्रोताओं आगे बढ़ते हैं श्री राम की भक्ति की ओर। श्री राम का जीवन हमें सत्य, मर्यादा, धैर्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आइए प्रेम और श्रद्धा से पुकारे अपने आराध्य को इस मधुर भजन के माध्यम से।

भक्ति की इस यात्रा में अब बारी है शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की। मां दुर्गा साहस, शक्ति और संरक्षण की प्रतीक हैं। आइए माता के चरणों में श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं और उनकी कृपा की कामना करते हैं और सुनते हैं एक भक्ति युक्त मधुर भजन।

श्रोताओं, भक्ति का रंग और गहरा करते हुए स्मरण करते हैं देवों के देव महादेव का। भगवान शिव सरलता, करुणा, वैराग्य और कल्याण के प्रतीक हैं। उनका नाम लेते ही मन में एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। आइए अपने मन को शिवमय करें और श्रद्धा से महादेव का मधुर भजन स्मरण करें।

श्रोताओं, भजन संध्या अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है और अब हम स्मरण करेंगे नटवर नागर नंदलाला श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, उनकी मुरली और राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति मन को आनंद से भर देती है। भक्ति से ओतप्रोत आइए सुनते हैं कर्णप्रिय भजन।

श्रोताओं, इसी मधुर भजन के साथ आज की भजन संध्या को विराम देने का समय आ गया है। मैं अदिति निगम आपसे लेती हूँ विदा, मगर आप सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

श्रोताओं, 6:30 हो गए हैं और आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। नमस्कार, आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र में आपका स्वागत है। FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी आप हमें सुन सकते हैं। मैं हूं आपकी रेडियो सखी अदिति निगम और अब वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। तो आइए सुनते हैं प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, अभी आपने फिल्म अकेले हम अकेले तुम से एक प्यारा सा गाना सुना, जिसमें आवाज़ उदित नारायण और अलका याग्निक की थी। संगीत अनु मलिक का था और गाने के बोल मजरूह सुल्तानपुरी के थे। श्रोताओं, कुछ गीत समय के हिसाब से पुराने हो जाते हैं, पर रहते सदाबहार हैं। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, अभी आपने फिल्म अफलातून से सुना ये प्यारा सा गाना। गाने में स्वर हरिहरन और चित्रा के थे, संगीत दिलीप सेन और समीर सेन का था, गाने के गीतकार आनंद बख्शी थे। गानों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक और प्यारा सा बेहतरीन गाना।

श्रोताओं, मनीषा कोइराला, काजोल साथ ही बॉबी देओल अभिनीत फिल्म गुप्त से अभी आपने ये प्यारा सा गाना सुना। गाने में आवाज अलका याग्निक और उदित नारायण की थी, संगीत बीजू शाह का और गीतकार आनंद बख्शी। श्रोताओं, प्यार का एहसास ही खूबसूरत होता है और इस एहसास को कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने भी महसूस किया होगा। मन की बात और जज्बातों को बयां करता एक प्यारा सा गाना आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो फिल्म से प्यारा सा गाना। गाने में संगीत प्रीतम का है, गाने में आवाज सोहम की, गाने के बोल सैयद काबरी ने लिखे हैं। श्रोताओं, अगला गाना आप सुनेंगे फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से। गाना आतिफ असलम की आवाज में, संगीत प्रीतम का और गाने के बोल इशरत कामिल के।

श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। मैं अदिति निगम आपसे लेती हूं अनुमति, मगर आप सुनते रहिए FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी उज्जैन। अब आप जल्द ही दिल्ली से समाचार का रिले सुनेंगे, प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और भी मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रपति नहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में यूएई के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाबल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में आईएनएस कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और HTT-40 सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह में उपस्थित थे। HAL ने भारतीय वायुसेना को दो हल्के विमान LCA और तेजस, इसके अलावा पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला HTT-40 भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने विमान का नाम अंकुर रखा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्षों में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आदित्य निगम। FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब आपको आज रात साथ ही कल तक अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 7:10 पर। 7:21 पर माटीरी बात, मालवी समाचार, निमाड़ी लोकगीत आप सुन सकेंगे। रात 8 बजे आप सुनेंगे 20वां एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 का विशेष कार्यक्रम भोपाल केंद्र से। 8:30 पर आप सुनेंगे सुर्खियों में। 8:45 पर समाचार संध्या का रिले सुन सकेंगे। रात 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट 9। 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू समाचार। 9:30 पर खेल पत्रिका का रिले सुन सकेंगे। 9:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। रात 10 बजे आप सुनेंगे गीतों का गुलदस्ता। राग रजनी आप सुन सकेंगे 10:30 पर। रात 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। रात 11:10 पर आप सुनेंगे FM गोल्ड के कार्यक्रम।

अभी आपने सुनी आज रात तक अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब हम सुनेंगे कल दिन भर साथ ही रात तक अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। 5:50 पर आप सुनेंगे संकेत धुन, 5:52 पर वंदे मातरम आरंभिक उद्घोषणा, सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 6:05 पर आप सुन सकेंगे वंदनवार चिंतन, 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। संगीत सरिता आप सुनेंगे सुबह 6:45 पर, सुबह 7 बजे आप सुनेंगे महाकाल वंदन, 7:05 पर कार्यक्रम विवरण, 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, 7:20 पर आप सुन सकेंगे सुप्रभात उज्जैन। समाचार प्रभात आप सुनेंगे सुबह 8 बजे, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, 8:30 पर आप सुन सकेंगे उज्जैनी आरजे, 9:30 पर आप सुनेंगे बॉलीवुड बीट्स, सुबह 10 बजे आप सुनेंगे आपकी फरमाइश कार्यक्रम। दस बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे 20वां एपिसोड पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की।

बाद आकाशवाणी के साथ दिल्ली से रिले किया जाएगा। सुबह 10:50 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। 11 बजे आप सुनेंगे रंग तरंग कार्यक्रम। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी न्यूज बुलेटिन। 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। सुरीला सफर आप सुनेंगे दोपहर 1 बजे। फिल्म संगीत कार्यक्रम 2 बजे। 2:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 2:15 पर दोपहर समाचार का रिले होगा। 2:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे। नाट्य तरंग कार्यक्रम 3:30 पर आप सुन सकेंगे। शाम 4 बजे आप सुनेंगे बॉम्बे टॉकीज। शाम 5 बजे युवाणी का रिले किया जाएगा। 6 बजे आप सुन सकेंगे भजन संध्या कार्यक्रम। अभी आपने सुनी आज रात साथ ही कल तक अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। नमस्कार। अब आप जल्द ही प्रादेशिक समाचार सुनेंगे विविध भारती भोपाल केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज दिल्ली में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2026 में हुए शामिल। मुख्यमंत्री कल भोपाल में 7,400 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को ई स्कूटी वितरित करेंगे और कुनो में मादा चीता के GP12 ने 4 शावकों को जन्म दिया। चीतों की संख्या बढ़कर 54 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञों, सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ 17 देशों के न्यायिक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। देशभर में 45 स्थानों पर आयोजित होने वाले इस रोजगार मेले में नए नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में कहा है कि मध्य प्रदेश में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निवेश और औद्योगिक विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने सेमिकॉन इंडिया में दुनिया भर से आए उद्योग प्रतिनिधियों के साथ मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान भी क्षेत्र के कई निवेशकों ने मध्य प्रदेश में रुचि दिखाई थी।
1: मुझे इस बात की प्रसन्नता के मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर के हम काफी गंभीरता पूर्वक देश के अंदर भी, देश के बाहर भी और अपने राज्य के अंदर भी लगातार जो प्रयास कर रहे हैं सेमीकंडक्टर को लेकर के हमारे राज्य में भी इन्वेस्टमेंट का जबरदस्त स्कोप भी है और इस पर हमने काम भी किया है। इंदौर में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिसके आधार पर ये हम इससे जुड़े हुए सभी प्रकार के निवेशकों को मध्य प्रदेश की पॉलिसी के बलबूते पर इन्वेस्टमेंट के लिए मौका भी देंगे और हमारे राज्य का प्रमोशन भी करेंगे।
0: स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने और कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इंदौर इस अभियान के एक प्रमुख मिसाल बना है। स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर ने लगातार 8वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का सम्मान हासिल किया है और इंदौर को 7 स्टार कचरा मुक्त शहर की रेटिंग भी मिली है। इसके साथ ही पुराने कचरे के निपटान के बाद प्रदेश ने 0 लैंडफिल की दिशा में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज जबलपुर में जनजातीय महानायक अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दोनों ने देश और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कैंसर और नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नमो प्रेरणा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दक्षिण क्षेत्र कृषि सम्मेलन का उद्देश्य किसानों की आय और जीवन में सुधार, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, कृषि के जरिए रोजगार बढ़ाना और अर्थव्यवस्था को गति देना है। आज हैदराबाद में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि सरकार फाइल में नहीं जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए।
2: प्रधानमंत्री जी का काफी जोर है रिफॉर्म। वो चीजें कौन सी है, वो नियम कानून कौन से, क्योंकि नियम जनता के लिए, जनता नियम के लिए नहीं। अगर कोई पुराने एक्ट है, पुरानी प्रक्रियाएं हैं, उनको बदलने की जरूरत है। भारत सरकार जो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की आप बदल, और भारत सरकार में आपको लगता है कि दिक्कत है तो आप हमें खुल के बताइए। प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं जनता की लाइफ में दिखना चाहिए, और इसलिए जहां नियमों में बदलाव की जरूरत है आप सजेस्ट की, भारत सरकार भी करेगी और जो राज्य सरकारों को करना है वो निश्चित तौर पर राज्य सरकार करे ताकि हम जनता को ज्यादा राहत देने का काम कर सकें।
0: श्री चौहान ने कहा कि खेती के 3 प्रमुख लक्ष्य खाद्य सुरक्षा, किसानों की आजीविका और पोषण युक्त आहार सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि एक वर्ष में नारियल का निर्यात 4,349 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,038 करोड़ रुपए हो गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में स्वच्छता के साथ साथ ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 के तहत कचरे को स्रोत पर ही गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल वाले कचरे की 4 श्रेणियों में अलग अलग करना अनिवार्य किया गया है। प्रदेश में इन प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन कचरा संग्रहण, पृथककरण और वैज्ञानिक प्रसंस्करण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण होगा। वहीं प्रदेश में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अनुसार 413 नगरीय निकायों में से 352 में करीब 584.81 MLT सीवेज उत्पन्न होता है। NGT ने पुराने कचरे के निपटान और सीवेज प्रबंधन की कमियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल भोपाल में प्रदेश के 7,400 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को ई स्कूटी वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम सुबह 9 बजे शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर में आयोजित होगा। योजना के तहत कक्षा 12वीं में प्रथम प्रयास में 70% अंक के साथ विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लाभ दिया जाता है। श्योपुर स्थित कोनो राष्ट्रीय उद्यान से खुशखबरी है। भारत में जन्मी मादा चीता के GP12 ने आज 4 शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही कोनो में चीतों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है, जिसमें 37 भारत में जन्मे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे चीता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी 4 नए शावकों के जन्म पर खुशी जताते हुए कोनो और प्रोजेक्ट चीता से जुड़ी टीम को बधाई दी है। प्रदेश में बारिश का दौर सोमवार तक जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, गरज चमक और आंधी चल सकती है। प्रदेश में अब तक 842.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 7% कम है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले के पदनावर में जिला स्तरीय जन संवाद और उद्यमी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीहोर में आज महिला और बाल विकास विभाग ने सुंदर गार्डन में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत कौशल प्रदर्शनी लगाई। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत खंडवा के हरसूद विकासखंड के ग्राम धारूखेड़ी में शिविर आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और विभिन्न विभागों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण भी किया गया। नर्मदापुरम में सेवा संकल्प अभियान के तहत मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने जिले के भ्रमण के दौरान स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन और पंचायत योजना की प्रक्रिया का जायजा लिया। शहडोल जिले में मानव

साथ ही संघर्ष के बीच उत्तर वन मंडल ने एक बड़ी पहल की है। हाल ही में डीएफओ ने कलेक्टर को पत्र लिखकर हाथी प्रभावित गांवों के 1717 कच्चे मकानों को पक्का कराने का प्रस्ताव दिया है। छिंदवाड़ा में सेवा संकल्प अभियान के तहत मेडिकल कॉलेज में सेवा मेरा योगदान थीम पर जिला स्तरीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। झाबुआ जिले में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत इंदौर संभागायुक्त भास्कर लक्षकार और कलेक्टर ने खेड़ी गांव में कृषक विमल भाबोर के खेत का निरीक्षण किया। जनविश्वास अभियान के तहत आज आगरमालवा जिले के बड़ौद मंडी में आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित 64 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका संबंधित अधिकारियों ने निराकरण कर मंच से अवगत कराया। कटनी में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ईवीएम और वीवीपैट के जिला स्तरीय वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण 22 सितम्बर को शाम 5 बजे किया जाएगा। दतिया में सेवा से संकल्प और मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत ग्राम पंचायत थरेठ में जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया। इंदौर में संगीत मूर्धन्य पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की स्मृति में शास्त्रीय संगीत सभा कल शाम 6 बजे संतोष सभागृह में आयोजित होगी। शिवपुरी कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी उज्जैन केंद्र में आपका स्वागत है। FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी आप हमें सुन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपकी रेडियो मित्र अदिति निगम। श्रोताओं, अब वक्त हो गया है मालवा की माटी, परंपराओं, लोक गीतों और जनजीवन की बात का। तो आइए जुड़ते हैं अपनी जड़ों से और शुरू करते हैं प्रोग्राम माटी री बात।

तो नमस्कार का साथ एक बार फिर राम राम मारा किसान साथी हूँ। यो फिर हाजिर है तुम्हारा भाई सुमित कुमार तुम्हार सबका बीच में। तो मुँह आशा करो कि थम सब चकाचक होगा। अपना आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र पे एक बार फिर थम सबको स्वागत है, वंदन है, उका साथेच हार्दिक अभिनंदन भी है। आज की तिथि की बात करा तो आज अपना भादवा महीना का उजाला की आठम वही गई है। न आज तारीख है 17 सितंबर ने वार शुक्रवार। आज बात करा आज का दिन पे तो आज है एक तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन दिवस, मतलब कार्यस्थल पे काम करने वाला समान कर्मचारी उनके एक जैसो वेतन देवा का सिद्धांत के बढ़ावा देनो ने लैंगिक वेतन अंतर के समाप्त करवा के लिए जागरूकता फैलानो। वो का बात और भी है पर उनते अपने कहीं लेनो देनो नहीं है। तो या तो हुई गई आज का दिन पे बात। अब बात आई जाए आज का मुख्य विषय पे, तो आज अपन बात करवाला हाँ सुपर फास्फेट की खेती करवा में कई कई लाभ हो सकता है न कई कई हानि न दुष्ट परिणाम इका देखवा का मिले है। पर उका पहला जाना अपनी वर्तमान फसल का कई हाल है। तो मालवा क्षेत्र में बरसात तो जावा का कगार पे है और सोयाबीन भी लगभग आने वाला है। कहीं जगह जो जल्दी बोई दिया था इन सोयाबीन की स्थिति अभी ऐसी है कि अगला 8-10 दिन में भी सोयाबीन कटवा लग जाएगा। मतलब जो बल्डा वाली जगह है नहीं, जो ऊंची जगह है जहाँ पानी कम भरा है, बल्डा वाली जगह उनमें तो अभी पीड़ा पड़ने लगी गई है

सोयाबीन खेत उन मतलब पत्ता खिलने लग गया है। यो समझो कि अगला 4-5 दिन में तो वहाँ कटिंग चालू हो जाएगा, सोयाबीन के हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा। और इन्हीं बार के पानी की बात करा तो अभी पानी की स्थिति सही नहीं है, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत वे पे अपन आगे बात करेंगे। अभी घास उन में भी फूल आवा लगी है, सफ़ेद फूल, जो कि किसान जो पुराने किसान हैं उनके मालूम है कि सफ़ेद फूल आने को कई मतलब हुए है। और इको वर्णन अपना रामायण के किष्किंधा कांड में भी हुए है, वो सब मैं तुम्हारे आगे बताऊँगा मैं। पर उका पहला अपने यो जानना कि अभी खेत की स्थिति कही है, क्योंकि अभी घन जगह कहीं है नहीं कि पीड़ो मोजक नाम की एक जब बीमारी भी नगई रही है, खेत पीड़ा पट नगई रहा है। अब घंज लोग तो लागे कि खेत पीड़ा मतलब पाकवा की कगार पे, पर महाराज उम्मीद हम ध्यान दो, क्योंकि कहीं है नहीं कि अगर पीड़ो और हरो पत्तो दो ही मिक्स है तो पाकवा की कगार पे नहीं है, बल्कि उम्मीद पीड़ा मोजक नाम की समस्या है या हुई सकती है, तो उसकी जांच करानी जरूरी है। इस पे अपन आगे बात करेंगे। और इसका संबंध में अपन ने अपना कृषि विशेषज्ञ से सलाह भी ली है कि किसान को कैसे देख ही सकता है कि मैं अपना खेत जमीन में पीड़ो मोजक है कि नहीं, ये पर आगे बात करेंगे। उका पहला अपन आई जाए अपना विषय पे, और विषय पे जावा से पहला चलो अपन सुना आज का मुख्य मालवी समाचार, क्योंकि ये तो जरूरी है। तो आओ सुनो प्रस्तुत मालवी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन थी प्रस्तुत है मालवी समाचार। समाचार का साथ मु थारो भाई सुमित कुमार। आओ सबसे पहला आने बुलेटिन का मुख्य समाचार सुना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को उद्घाटन करेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस समारोह के संबोधित करियो। उसके बाद भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुई के दर्शन पूजन करियो। अब समाचार विस्तार थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पे आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को उद्घाटन करेगा। दो दिन तक चलवा वाला सम्मेलन के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रियो है। अणि में पर्यावरण विशेषज्ञों, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का साथ 17 देश का न्यायिक प्रतिनिधित्व भी शामिल होगा। वहां आज प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से 20वां रोजगार मेला में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं के 51,000 रुपये से भी अधिक नियुक्ति पत्र भी सौंपेगा। देश भर में 45 स्थान पे आयोजित होने वाला अणि रोजगार मेला में एक नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों में शामिल होगा। बात करें अपना मुख्यमंत्री साहब की, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव काले भोपाल में मध्य प्रदेश का 7,400 से ज़्यादा मेधावी विद्यार्थियों के ई स्कूटी वितरित करेगा। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का तहत यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम सवेरे 9 बजे शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर में आयोजित होगा। योजना का तहत कक्षा 12वीं में प्रथम प्रयास में 70% अंक का साथ विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला विद्यार्थी उनके लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जबलपुर में जनजातीय महानायक अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस समारोह के संबोधित करियो। उनने बोलियो है कि दोनों ही ने देश और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना प्राण को बलिदान दियो है और उनका जीवन में आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने अवसर पर कैंसर और नशा मुक्ति का प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नमो प्रेरणा कार्यक्रम को शुभारंभ भी करियो। उज्जैन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने आज गीता भवन में आयोजित युवा धर्म संसद 2026 का दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ करियो। सेवाज्ञ संस्थानम द्वारा शनिवार तक आयोजित अणि कार्यक्रम में देश भर का करीब 1,700 युवा शामिल हो रहा है। अपना संबोधन में डॉक्टर भागवत ने बोलियो है कि धर्म काली बुढ़ापा की चीज नहीं है, बल्कि जीवन की शुरुआती अंत तक अणि को महत्व बनो रहे है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल समापन सत्र में शामिल होगा। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज सुबह उज्जैन का श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुई के दर्शन पूजन करियो। वहां करीबन डेढ़ घंटा तक नंदी हाल में रहा है। उनका साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, उज्जैन आलोट सांसद अनिल फिरोजिया भी मौजूद रहा। पूजा अर्चना का बाद नितिन नवीन ने देशवासियों की सुख समृद्धि, शांति और कल्याण

की कामना करी। बात करा श्योपुर की, तो श्योपुर स्थित कुनू राष्ट्रीय उद्यान में खुशखबरी है। भारत में जन्मी मादा चीता KGP-12 ने आज 4 शवकों के जन्म दियो है। एक साथ कुनोक में चीता की संख्या बढ़ी के 54 हुई गई है, जिनमें 37 भारत में जन्मे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने चीता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी 4 नए शवकों के जन्म पर खुशी जताते हुए कुनो और प्रोजेक्ट चीता से जुड़ी टीम के बधाई दी है। सेवा संकल्प अभियान का अंतर्गत मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा कल इंदौर में शास्त्रीय संगीत सभा को आयोजन किया जाएगा। संगीत सभा में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की स्मृति में विभिन्न प्रस्तुतियां दी जाएगा। कार्यक्रम में वायलिन वादन, शास्त्रीय गायन और सितार वादन प्रमुख आकर्षण होगा। लता मंगेशकर शासकीय संगीत महाविद्यालय के विद्यार्थी सरस्वती वंदना और भारत खंडे संगीत प्रस्तुत करेगा। सेवा संकल्प अभियान का तहत अंतर्गत धार जिला का बदनावर स्थित शासकीय कन्या विद्यालय में आज करियर काउंसलिंग शिविर आयोजित करी गई। शिविर में हायर सेकेंडरी की 100 छात्राओं के विशेषज्ञों ने उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार करियर और रोजगार का अवसर की जानकारी दी। इंदौर संभागायुक्त भास्कर लक्षाकार और झाबुआ का कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसठ ने आज झाबुआ जिला के खेड़ी गांव में किसान विमल भाभोर का खेत में भ्रमण करियो। दो अधिकारी ने किसान के साथ बैठी के प्राकृतिक और जैविक खेती की प्रक्रिया तथा उनका अनुभव की जानकारी ली। अब बात करें मौसम की, तो प्रदेश में बारिश का दौर सोमवार तक जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगला कई दिन में प्रदेश के कई हिस्सा में बारिश, गरज चमक और आंधी चली सकती है। प्रदेश में अभी तक 842.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्यतः करीब 7% कम है। तो ये था आज का मुख्य मालवी समाचार।

हाँ तो समाचार का पहला अपन बात करी जाता खेत उनका पीला पड़वा का बारे में। देखो पीड़ो पड़ना सही है, कहीं दिक्कत नहीं है, अभी पकवा का कागार पे है तो पड़ी सकता है, पर फसल में यो जानना भी जरूरी है कि उनमें पीड़ो मोजक तो नहीं है, क्योंकि सुनवा में आई रो है कि अभी फसल उनमें पीड़ो मोजक घणो देखवा में आई रो है। एक कैसे पहचान सकता हाँ अपन ऊका संदर्भ में मैं अपना उज्जैन का कृषि विज्ञान केंद्र का पोत सर्वेक्षण विशेषज्ञ आशीष बोबड़े जी ने बताए है कि अगर अपने लगी रो है कि अपना खेत में पीड़ो मोजक आई गयो है तो उका ले पत्ता में पीड़ापन का साथ हरोपन भी दिखाई दे है, तो उको मतलब योज है कि अपनी फसल में पीड़ो मोजक आई गयो है। मोजक को मतलब है दो कलर को कॉम्बिनेशन हुई है। अगर किसान के लगी रो है कि अपनी फसल में मोजक की समस्या आई गई है तो देखी लो, अगर समस्या कम है तो उन पौधा के उखाड़ी के दूर फेंकी दो, न ज़्यादा दिखे तो कीट प्रबंधन का लिए कीटनाशक को छिड़काव कर सकता है। तो चलो चला अपना आज का मुख्य विषय पे, पर उका पहला आओ सुनाए तुम्हारे अपना कार्यक्रम में एक अच्छो सो लोकगीत, क्योंकि लोकगीत तो अपनी संस्कृति की शान रहे, तो आओ सुनो पहला योग लोकगीत, उका बात बात करेंगे अपन।

तो सुन लियो गीत। अब तुम्हारे नहीं मालूम हो तो मैं बताई दू कि तुम अभी सुनी रहा हो FM 102.5 MHz पे ओका साथे न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पे आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र थी अपनो विशेष कार्यक्रम माटेरी बात, जिसपे हम लेके आए हैं तुम्हारा बीच में एक ती एक जानकारी जो सीधी अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई रहे। तुम्हारे कहीं नहीं करना है, बस सुनता रहो अपने और लेता रहो एक ती एक जानकारी। तो अपन बात करी रहा हाँ आज का विषय पे। तो आज को विषय है अपनों खेती में सुपर फास्ट की खेती करवाती कई फायदे हुए। देखो आजकल को गंज किसान कहीं करे कि ज़्यादा मुनाफा कमाओ का चक्कर में खेत में भरपूर DAP ने यूरिया ने इनको उपयोग करे है। मानी तुम्हारी बात कि या फसल की पैदावार बढ़ाए, पर यो भी मत भूलो कि या अपनी भर्ती के बंजर बनी दे, अपनी मृदा इतनी खराब हुई है। शुरू शुरू में तो मालूम नहीं पड़े अपन, पर फिर बाद में जब अपना खेत की मिट्टी कठोर हुई जाए, जब उनमें घंच मतलब ट्रैक्टर अच्छो कड़क लगे, खेत अंखाई नहीं, तो जब जिन मालूम पड़े है कि हाँ यार वाकई में ये जो खाद है नहीं यो अपनी जमीन के नुकसानदायक रे, और इकाज लिए अभी भी संभली जाओ, क्योंकि कहीं है नहीं कि अभी तो अपने जितनी यूरिया डाली रहा अपनी इतनी पैदावार अच्छी ही नहीं, जितनी DAP डाली रहा जितनी ज़्यादा मात्रा में डाली रहा तो इतनी पैदावार अच्छी ही थी, तो उतनी कहीं किसान के लगी रहो कि आज अपनी जमीन के सब, पर ऐसो नहीं है, क्योंकि कहीं है नहीं कि इनको वो कह नहीं कि अतीज अंत को कारण रहे है। अगर ऐसो जी में भी एक अपन खाद में अति उपयोग करांगी को DAP को ज़्यादा उपयोग करांगी, यूरिया को ज़्यादा उपयोग करांगी, कड़ी भी चीज़ को अगर ज़्यादा उपयोग करांगी अपन कीटनाशक रासायनिक दवाई को, तो वो आगे जाने अपनी धरती के कमज़ोर बनाएगा, अपनी धरती के खराब करेगा वो। अब खराब करवा में ये थोड़ी नहीं कि मैं धूलो लगी जाएगा तो किस साफ करता, खराब करना हो कि अपनी धरती में जो पोषक तत्व रहे उनके मार देगा, जो अपनी धरती का अंदर कीड़ा रहे जो अपनी फसल के पोषक तत्व दे उनके मार देगा, क्योंकि जहरीली खाद रहे यहाँ, और उसको परिणाम ये रहेगा कि आवा वाला समय में अपनी जो जमीन है जो धरती आज पैदावार दे रही है वाह बाद में बंजर हो जाएगा, कहीं फसल नहीं होएगा उनमें, खेत आंखने जोतने में समस्या आएगा। और इन सब ती बचाव ले पहला तीज अपन इनको

0: एक सीमित मात्रा में उपयोग करना चालू कर देंगे तो आने वाले समय में यह समस्या अपने नहीं आएगा। देखो अभी समझी जाओ, क्योंकि फिर बाद में बोले ही नहीं कि जत पछतावाती कहीं हो जत चिड़िया चुकी गई खेल। तो गंज किसान उनका मन में ख्याल आता होगा कि यार डीएपी यूरिया नहीं यूज करा तो उन्हीं की जगह अब डायरेक्ट तो बन नहीं गई सकता इनके, क्योंकि डायरेक्ट बंद कर देंगे तो अपनी फसल बिगड़ी जाएगा। तो गंज किसान सोचता होगा कि इक्की जगह कहीं लाखा हूं मैं और इकोज में तुम्हारे इकाले आज को विषय लेके आया हूं मैं। तो उको जवाब है तुम उमे सुपर फास्फोरस जिके अपना गांव में राखोड़े बोले हैं वो लाखी सकता हो। एको कई फायदे रहे उकाले तुम्हारे सुनना पड़ेगा अपना कृषि क्षेत्र का एक ऐसा विशेषज्ञ की सलाह जो पिछला 22 साल तक को अध्ययन कर रहा है। तो आओ सुनाएं अपना नवीन दीक्षित जी की करी हुई तुम्हारा भाई सुमित कुमार की बातचीत, जिन्हें बताया है अपने कि SSP को अपनी धरती में अपनी फसल में अपनी खेती में कई उपयोग करो है। तो आओ सुनो पहला यह भेंटवार्ता उका बात अपन समझाएंगे विषय की। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी उज्जैन में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: सर। सर्वप्रथम हमारे श्रोताओं का आपका परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम नवीन कुमार दीक्षित है और मैंने JNKVB जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से BSc AG किया है और पिछले लगभग 22 वर्षों से मैं अपने किसानों को अपने गेहूं के संबंधित, अपने सीड के संबंधित, फर्टिलाइजर के संबंधित उनको जानकारी देता हूं, जिससे हमारी खेती में तरक्की हो।
0: बिल्कुल सर। सर जैसा कि आपने बताया आप फर्टिलाइजर से जुड़े हुए हैं, सर हमारे किसानों को बताइए कि फर्टिलाइजर का हमारी खेती में कैसे उपयोग होता है।
1: फर्टिलाइजर वैसे तो कई प्रकार के होते हैं और बेसिकली मैंने सुपर फास्फेट फर्टिलाइजर अपनी भारत का ही उत्पादक है, मतलब उत्पादन हुआ है अपना, उसका आविष्कार हुआ है और ये फर्टिलाइजर बहुत बढ़िया है। इसको हम गांव की भाषा में इसे राकुड़िया भी बोलते हैं। इस पे मैंने पूरा बहुत काम किया है और ये वास्तविक में देखा जाए हमारे जमीन के लिए बहुत लाभदायक है। और अगर इसको हम और अंदर जाएं तो इसके हम अगर उसके उसकी केमिकल के बारे में पता चले तो पता चलता है कि इसके अंदर 16% P2O5 जिसे हम फास्फोरस बोलते हैं, 11% इसमें सल्फर होता है और 22% इसमें कैल्शियम होता है। ये जमीन कैल्शियम का काम होता है जमीन को भुरभुरा करना और सल्फर का काम होता है जितनी भी दलहनी तलहनी जितनी भी फसलें जिसमें सुगंधित या जिसमें तीखापन जैसे प्याज, उसके लिए सल्फर बहुत जरूरी एक तत्व है। जितनी भी फसलें हैं उनके लिए सल्फर तो यूज बहुत लाभदायक पोषक तत्व है, लेकिन चूंकि सुपर फास्फेट में ये फ्री में आता है, सुपर फास्फेट हमारे सल्फ्यूरिक एसिड से मिक्स होके बनता है और ये उदयपुर से और अपने विदेश से भी, जार्डन से भी आता है, कुछ मात्रा में हमारे मेघनगर में भी है, ऐसे केमिकल से मिलाकर इसको बनाते हैं। क्योंकि H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं 98% का होता है, इस कारण से सल्फर उसमें ऑटोमेटिक किसानों को फ्री में मिलता है, तो जिससे हमारी जमीन हमारी फसल को लिए बहुत लाभदायक होता है।
0: सर जैसा कि आपने बताया कि फास्फोरेट का उपयोग हमारी जो जमीन खेती बाड़ी में उसमें होता है, सर किसान कब फास्फोरेट का उपयोग करते हैं?
1: जैसा कि आपने पूछा फर्टिलाइजर के बारे में, फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो केवल सुपर फास्फेट में नहीं डीएपी के रूप में भी किसान इसका यूज करते हैं, लेकिन डीएपी में क्या है 18 और 46, मतलब इसमें डीएपी में 18-46 पोषक तत्व तो रहते हैं और सुपर फास्फेट में 16, 11 और 21, मतलब 16 P2O5 फास्फोरस, 11% सल्फर और 22% कैल्शियम रहता है। अब क्या होता है फास्फोरस जमीन जब जमीन के नीचे जब ये फास्फोरस को मैं ऐसा समझाता हूं कि नाइट्रोजन एक मतलब मोबाइल की तरह है, उस जमीन पे गिरेगा और पत्तियों के द्वारा उसको ग्रहण कर लिया जाएगा 48-72 घंटे के अंदर, नाइट्रोजन का उपयोग वहां खत्म हो जाएगा और फास्फोरस जमीन के ऊपर ही रह

0: आता है जब वो डीएपी के रूप में डालते हैं जब फसल बड़ी हो जाती है तब। कई किसान इसका उपयोग इस प्रकार भी करते हैं, कई किसान इसको बीज के साथ भी डीएपी को मिलाकर डालते हैं दानेदार को। उसमें नाइट्रोजन का उपयोग उतना नहीं हो पाता जितना हम इसकी कीमत अदा करते हैं डीएपी में जब हम खरीदने किसान जाते हैं। लेकिन सुपर फास्फेट में क्या होता है, जब जमीन की तैयारी करते हैं उस समय राकोड़िया का उपयोग किया जाता है, जमीन के अंदर ये चला जाता है और जब पानी गिरता है और जब बीज बोया जाता है, जब जड़ें उस तक पहुंच जाती हैं जहां फास्फोरस है उसको वो ग्रहण कर लेती हैं, कैल्शियम होने के कारण जमीन को भुरभुरा कर देती हैं। और अक्सर हमने किसानों प्राय देखा है कि जहां जहां किसानों ने डीएपी का उपयोग किया है या कर रहे हैं उनकी जमीन बहुत हार्ड हो गई है, वो ट्रैक्टर काफी मात्रा में ट्रैक्टर का उपयोग करने लगते हैं क्योंकि इतनी हार्ड जमीन है। और जहां जहां सुपर फास्फेट का उपयोग होता है वहां वहां की जमीन भुरभुरी हो जाती है। इसलिए मैं किसानों से प्राय हमेशा यही कहता हूं कि सुपर फास्फेट डालिए, अच्छी कंपनी का डालिए। और किसान भी, कुछ किसान जो समझदार हैं जो समझते हैं वो अपने खेत पर कभी भी डीएपी का उपयोग नहीं करते, वो केवल सुपर फास्फेट का ही उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसमें सल्फर भी है, मैंने पिछले समय बताया था कि सल्फर केवल एक पोषक तत्व नहीं है, वो बीमारी को भी रोकता है। वो सबके कई मतलब सल्फर के कई रूप होते हैं, कई तरीके से काम आता है वो सल्फर से। जैसे हमने अक्सर सुना होगा कि सोयाबीन में दाने नहीं लग रहे हैं या साइज बहुत छोटा हो गया है, तो इसमें सल्फर का बहुत रोल है। सल्फर क्या करता है, उसमें क्या बोलते हैं, तेल की मात्रा सल्फर के, अगर जमीन में सल्फर है और जहां सोयाबीन लगाया उसकी तेल की मात्रा उस सल्फर से बढ़ती है। तेल में जितने भी तीखापन, लहसुन, प्याज, खुशबू वाली, उसमें सल्फर का उपयोग 100% करना चाहिए, जिससे हमारी सोयाबीन में उत्पादन भी अच्छा होगा और फसल भी हमारी अच्छी होगी और जमीन भी भुरभुरी होगी। ये सल्फर की इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें किसान कि हो सके सुपर फास्फेट का उपयोग करें, कम से कम डीएपी का उपयोग कम करें, जिससे हमारी जमीन हार्ड कम होगी।
1: सर जैसा कि आपने बताया कि डीएपी का प्रभाव हमारी जमीन पे पूरा होता है, तो सर बताइए क्या प्रभाव डालती है डीएपी हमारी भूमि पे?
0: डीएपी ऐसे समझिए जैसे नाइट्रोजन जमीन में गिरता है और जमीन पे गिरती कण वो जैसे जल के नमी के संपर्क में आएगा वो नाइट्रोजन उड़ जाएगा, लेकिन फास्फोरस और पोटास ये दो तत्व ऐसे हैं जो जहां पड़े हैं वो वहीं रहेंगे, हिलेंगे नहीं वहां से, जड़ उस तक पहुंचेगी तो जड़ उसको ले पाएगी। अब किसान प्रायः क्या करते हैं कि जब फसल, कुछ किसान तो बीज के साथ डालते हैं और कुछ किसान जो फसल जब आ जाती है उसके बाद डालते हैं। अब उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन तो उसका यूज हो जाता है, पत्ती के द्वारा उसको ले लिया जाता है जब गैस के रूप में, जब नाइट्रोजन उसका नमी आता है वो गैस की मुड़ती है, लेकिन फास्फोरस चूंकि जमीन के ऊपर है, जड़ें तो नीचे से ऊपर नहीं आएंगी, इसी कारण वो जो जहां पड़ा है फास्फोरस वो वहीं रह जाएगा, उसका उपयोग बहुत कम मात्रा में उसका उपयोग हो पाता है। इस कारण यही कारण है कि डीएपी यहां डलता है वहां फसलें, वहां जमीन जिसकी मिट्टी है वो हार्ड हो जाती है। अब राकोड़िया का उपयोग प्राय किसान करते हैं भूमि की तैयारी के समय, जब जुताई करते हैं उसमें क्या होता है, फास्फोरस जमीन के अंदर चला जाता है, पोटास और फास्फोरस जैसे मैंने बताया ये स्थिर, इनको बोलते हैं स्थिरकरण, जहां पड़े हैं ये वहीं रहेंगे। इसलिए जैसे ही जब जमीन के नीचे गया, जब पौधा बीज बना, जड़ गई, जड़ उस तक नीचे जाएगी तो उसको ग्रहण कर लेगी। और यही कारण है कि हमको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम सुपर फास्फेट ही डालें।
1: सर हम आजकल सुनते हैं नैनो डीएपी के बारे में, सर इसके बारे में बताइए ये क्या है?
0: ये नैनो डीएपी आज के समय में नई टेक्निकल है और ये बहुत अच्छा वैज्ञानिकों ने बनाया है इसको। नैनो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि नैनो, इसका मतलब इसका फोलियर स्प्रे होता है, लिक्विड के रूप में आता है और ये पत्तियों के द्वारा, जो पत्तियों के जो छिद्र होते हैं उसके द्वारा ये ग्रहण कर लिया जाता है। और नैनो डीएपी से फायदा ये है, अगर इसको सही समय पर, इसकी टाइम

0: होती है, अगर डाला जाए तो उसके वही रिजल्ट मिलते हैं जो हमको एक बोरी के रूप में और ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद मिलते हैं, इसके भी वही रेट मिलते हैं। इसलिए नैनो डीएपी अपेक्षाकृत बहुत फायदेमंद है। और भी आजकल नए नए वैज्ञानिक हमारे नई नई चीजें निकाल रहे हैं नैनो के नाम से, तो इसमें पैसा भी कम लगता है और हमारे सरकार को सब्सिडी भी नहीं देनी पड़ती है। इसलिए किसानों को कोशिश करना चाहिए कि आज के समय के हिसाब से, वैज्ञानिकों के हिसाब से खेती करें। और नैनो शब्द से ही हमको पता चलता है कि ये बहुत बारीक होता है और बहुत बढ़िया अच्छी एक टेक्निक आई है, इसलिए इसका उपयोग करना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, हमारे किसानों को ये बताइए सर कि अगली बार जब वो खेत में बुआई करने जाएं तो किन बातों का ध्यान रखें।
0: वैसे तो हमारे मालवा निमाड़ के किसान अपने आप में एक वैज्ञानिक हैं, लेकिन फिर भी एक छोटी सी एक राय है कि जब हम भूमि की तैयारी करें, तो जैसे किसान के पास सपोज करो 10 बीघा जमीन है, तो वो 2 बीघे में भूमि की तैयारी के समय शुरुआत में, ताकि उसको क्या होता है, खुद का अनुभव ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, उस समय अच्छी कंपनी का सुपर फास्फेट भूमि की तैयारी के समय जरूर इसका उपयोग करें। बाकी क्या वो जैसे कर रहा है उस पास से अपने खाद का उपयोग करें, उससे उसको आइडिया लग जाएगा कि वास्तव में सुपर फास्फेट का उपयोग क्या है।
1: बिल्कुल सर, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, किसान को एक बार उपयोग जरूर करना चाहिए कि ट्राई अगर करेगा तो उसको सामने ही रिजल्ट दिख जाएगा कि डीएपी ज़्यादा अच्छी है या फिर आपने जो बताया राखोड़ी ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो जानकारी दी है वो हमारे किसानों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि अच्छी क्यों नहीं लगेगा, सर ने इतनी अच्छी चीज़ बताई है कि एक ही जगह हम अगर SSP को उपयोग करोगा तो कितना फायदा होगा अपने। एक तो ज़मीन बंजर हाथी बची जाएगा, लागत कम होएगा, ओका बाद यो कि आजकल DAP की इतनी समस्या आ रही है कि मरे नहीं है सही सर, तो अपने उमे भी समस्या आएगा। तो जैसा कि अपना सर ने बताया कि यार DAP अपना खेत में डाली रहा है कैसे अपनी ज़मीन के नुकसान पहुँचाए, मन तो पहला बोलियो तो तुम्हारे कि रासायनिक खाद पर आत्मनिर्भर मत बनो, ने एक ही जगह जैविक खेती अपनाओ, पर मारी सुनो जा तुम। अब इन सर की बात को गौर कर लीजियो और DAP और यूरिया की ज़रूरत ज़्यादा असंतुलित मात्रा में इस्तेमाल मत कर जो, क्योंकि मृदा का स्वास्थ्य, पोषक तत्व और संतुलन खेती की लागत पर भी विपरीत असर डाले सके हैं। इकालिए खाद हमेशा मिट्टी परीक्षण और फसल की जरूरत का हिसाब ती देना चाहे। तो यह तो ही गई अपना खेती किसानी की बात। अब चलो अभी कहीं चली रहो है आजकल अपना जो एरे मेरे ऊपर बात कर ला, तो अभी गणेश जी को उत्सव चली रहो है, जगह जगह बड़ा बड़ा पंडाल बने के एक ती एक आकर्षित मूर्तियां ने डिजाइन बनाई गई है। अच्छा एक बात मालूम है तुम्हारे, अपना उज्जैन का ने आसपास का कार्यकर्ता उनने एक चीज को विशेष ध्यान रखे हुए, अनी बार POP ती ज्यादा मिट्टी का गणेश जी बनाया गया है, ने मिट्टी का गणेश बिठाया है जो कि अपना पर्यावरण का बिल्कुल अनुकूल है। तो एक अच्छी बात है, नहीं तो मालूम ही नहीं कि POP का गणेश जी विसर्जित नहीं हुई है, अपना पर्यावरण के भी प्रदूषित करे। तो देखो गणेश जी का ये दो दन है घनी खुशियाँ लेके आए हैं, जगह जगह पंडाल ने भंडारा ने सब देख के मन आनंदित हुई जाए है, पर अगर गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की हो तो आनंद और भी बढ़ जाए है। तो अपन बात कर जाता अभी वर्तमान की फसल की स्थिति के बारे में, तो अभी कहीं नहीं सितंबर को आधो महीनों निकली गयो है, मैं पानी का भी इनके अन्य साल तो घन कम पड़े हुए पानी आसार नगे नहीं रहा है बागे कहीं भी। अच्छा एक बात मालूम है तुम्हारे, अभी अपना किसान उनका खेत का आसपास जो घास उड़ रहे नहीं ऊपर सफ़ेद फूल आवा लगी गया है, और अपना मालवा में एक कहावत है कि फूल गए काश टूटी टूटी बरखा की आस, एक मतलब ये हो कि जो घास उड़ पे फूल आए नहीं एक देखी ने लागे तो एक नंबर ही बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद बिल्कुल मन के लुभाए है, पर अपना किसान उनके इनकी चिंता जताने लगी जाए है, क्योंकि अनी कहावत को मतलब है जो है कि अबे घास पे फूल आ गया है मतलब बरसात बूढ़ी हो गई है। ने अपना रामायण का किष्किंधा कांड में भी बाबा तुलसीदास ने एक दोहा लिखो है जिनने वर्षा ऋतु का पूर्ण होने को संकेत देते हुए प्रभु श्री राम अपना भाई लक्ष्मण के बोले हैं कि फूली काश सकल मई छाई जनु वर्षा करत प्रकट बुढ़ाई, अर्थात ए लक्ष्मण देख वर्षा ऋतु बीती गई है और परम सुंदर शरद ऋतु आई गई है, फूल हुए सफ़ेद काश के जनिती सारी पृथ्वी ढकी गई है, जानी के देखी के ऐसे लगे ऐसा लगी रो है कि मानो वर्षा ऋतु ने अपना बुढ़ापा प्रकट कर लियो है। और ऐसी अवस्था में हाँ अपन भी अभी पूरा एक किसान जब अपना खेत पे जाए वो देखेगा ये रे मेरे बिल्कुल कहाँ सुन रहे हैं बड़ा बड़ा फूल है सफ़ेद भी देखो हमें तो इतना बढ़िया लगे भी ना जब हवा चले तो ये टूटी टूटी ना उड़े भी तो बिल्कुल मन के आनंदित कर दे। पर इको भी एक प्रकृति का हर चीज़ को एक महत्व रहे एक संकेत रहे हैं। कले प्रकृति बहुत विशाल है कि प्रकृति के अगर बारीकी से देखा जाए तो कि अगर एक हवा से एक टहनी भी टूटी रही है तो वह कहीं ना कहीं एक संकेत दे रही है। तो ऐसी अवस्था में चपन भी हाँ आसपास तो मतलब पानी की संभावना कम हुई गई है। अब आओ मालवा की कहावत आई अपन ने सुनी अपन ने चौपाई भी सुनी तो एक और गीत भी सुनी ला जाता जाता वो का बात अपन बात करेंगे। तो सुनो ये एक और गीत।

तो सुन लियो गीत, क्योंकि गीत सुनवा में तो अच्छा लगे है, पर थोड़ी समय की अपनी समस्या है, क्योंकि समय माने की बात वही हमारी समय से कि रुकी जाए, पर रुकी नहीं रोए हो। तो आज अपन ने मुख्य रूप से माटी री बात कार्यक्रम में आज का दिन पे, उका बात वर्तमान की फसल अवस्था पे, उका बात मुख्य रूप से सुपर फास्फोरेट यानी SSP मतलब राखोड़िया की अपनी खेती का उपयोग ने उका बात और भी घन सारी बात करी। तो मैं आशा करूँ कि आज का कार्यक्रम में मेरी सब जानकारी तुम्हारी अच्छी लगी होगा, जानकारी तो अच्छी लगी होगा और साथ अपना कार्यक्रम भी अच्छा लगे होगा और अपन भी हमारे सबके अच्छे लगे। इकाले रोज 7:20 थी एक यो कार्यक्रम लेके आए हैं मालवी गीतारी गूंज ने माटी री बात, जिनमें अपना मालवी मेच एक ती एक जानकारी ने मालवी गीत ने मालवी समाचार ने ये सब सुनाए हैं तुम्हारे। तो बस हमारा यो मानना है कि हम ये आशा करा कि तुम हमारे रोज सुनो और तुम्हारा प्रेम बनियो रहे और उनका साथ आज को हर समय होने वालों है, तो हमारे दो अनुमति जिसे मैं जाऊँ आज का नमस्कार के साथ, राम राम का साथ, शुभ रात्रि।

श्रोताओं, मालवा की माटी की सुगंध और लोक संस्कृति की ये झलक आपको पसंद आई होगी। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, मगर आप सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब आप जल्द ही विशेष कार्यक्रम 20वां एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 कर्टन रेसर भोपाल केंद्र से सुनेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: यह आकाशवाणी है। एशिया के खेलों का महाकुंभ सज रहा है जापान के आईची नयोगा में। लीजिए, प्रस्तुत है आपके लिए इस रोमांचक सफर का कर्टेन रेसर।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: जापान के आईची नगोया में एशिया का सबसे बड़ा खेल मंच सज चुका है। इस बार 500 से अधिक भारतीय खिलाड़ियों का दल 35 अलग अलग खेल स्पर्धाओं में देश का मान और तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इन भारतीय खिलाड़ियों के कंधे पर आईची नगोया में सिर्फ 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदें ही नहीं हैं, बल्कि उनके सामने खुद का ही बनाया हुआ 28 गोल्ड समेत 107 मेडल्स का एक बहुत बड़ा पहाड़ पार करने की भी बड़ी चुनौती होगी। खास बात यह भी है कि भारतीय दल में 300 से ज्यादा खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कदम रख रहे हैं। उन्हें यह साबित करना है कि भारत की नई पौध दबाव में बिखरती नहीं बल्कि निखरती है। औपचारिक रूप से 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होने वाले इस खेल महाकुंभ में हमारे एथलीटों की नजरें एशिया के टॉप 3 देशों में जगह बनाने और कई खेलों में लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक का टिकट पक्का करने पर भी टिकी हैं। भारत जिन खेलों में भाग ले रहा है उनमें तीरंदाजी, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, ट्रैक एंड फील्ड की अलग अलग स्पर्धाएं, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कैनोइंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, घुड़सवारी, ई स्पोर्ट्स, तलवारबाजी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, कुराश, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, रोइंग, रग्बी सेवंस, सेलिंग, सिपकटेकरा, शूटिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्क्वाश, सर्फिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, सॉफ्ट टेनिस, टेक बॉल, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, घुड़सवारी और वुशु जैसे खेल शामिल हैं। एशियन गेम्स में इस बार भी एथलेटिक्स में सबसे अधिक भारतीय खिलाड़ी भाग लेने जा रहे हैं। 70 से अधिक सदस्यों वाले एथलेटिक्स दल में 30 से अधिक पुरुष और करीब 40 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। पिछली बार भारत ने 6 स्वर्ण समेत 29 पदक जीते थे। इस बार भी ढेर सारी उम्मीदें हैं। एथलेटिक्स में 100 मीटर स्प्रिंट के भारत की बड़ी उम्मीद गुरिंदर वीर सिंह बिल्कुल तैयार है। दिल्ली में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज फाइनल के बाद उन्होंने एशियन गेम्स की संभावनाओं को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं।
4: हर कंपटीशन एक जर्नी का पार्ट होता है। हमारा फाइनल गोल, हमारा फाइनल जो रेस है वो एशियन गेम्स है। हमको वहाँ अच्छा करना है। ये प्रिपरेशन है, ये फिटनेस ट्रायल है और हम अच्छा भागे हैं। बट हाँ, होपफुली अच्छा परफॉर्म करेंगे और मेडल जीतेंगे।
3: महिला ट्रिपल जंपर निहारिका वशिष्ठ भी पूरी तरह से तैयार हैं और उन्होंने गोल्ड का लक्ष्य रखा है।
5: देखिए, एशियन गेम्स के लिए मेरा टारगेट है कि मैं 14 मीटर्स के ऊपर ही लगाऊं, तो उस चीज को माइंड में रखते हुए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अपना वो टारगेट अचीव करने की कोशिश करूंगी।
3: हैमर थ्रोअर तानिया चौधरी ने दिल्ली में नेशनल रिकॉर्ड बनाया और उसके बाद एशियन गेम्स के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट है।
6: अभी अपना पीवी किया है तो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ, अब वहाँ पे जाके थ्रो लगाने के लिए अब अच्छा करेंगे।
3: भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमें इस बार न सिर्फ मेडल बल्कि गोल्ड मेडल की बड़ी दावेदार हैं। दोनों टीमों के पास गोल्ड जीतकर लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का मौका भी है। हॉकी में भारत की उम्मीदों के बारे में हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी ने बात की भारत के पूर्व कप्तान जफर इकबाल से।
7: जफर साहब, भारत 4 बार एशियन गेम्स का गोल्ड जीत चुका है, 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगा। इस बार चुनौती कितनी अलग होगी, खासकर जब गोल्ड के साथ टीम 2028 का सीधे ओलंपिक का टिकट हासिल करेगा?
8: देखिए, इम्पोर्टेंट तो ये सब गेम्स हैं दोनों मेन एंड वुमेन के लिए, और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा, ना कि ओनली हिंदुस्तान की टीम इस बात को सोच रही होगी, क्योंकि जापान इज द होस्ट

0: country also, the Pakistan bhi hai udhar, Malaysia is also there, South Korea is also there. So, mere khayal mein sabhi ke dimag mein ye chal raha hoga, this is the golden chance, anybody who wins the gold. So, wo mere khayal mein achha competition hai Asian Games ka, magar agar ye baat kahe ke World Cup ya Olympic Games, uska sthar alag hai.
1: जी
0: यहाँ का स्तर अलग है. मैं कहूँगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम, ये तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, बहुत मजबूत टीम है हमारी. बट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम जीत के गोल्ड ही लेके आएंगे, लाना चाहिए भी, बिकॉज विद द सेम मेंटेलिटी अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन डू इट. हमारा अपर हैंड तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट, और हमें मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे इसमें. मगर खेलों की दुनिया में यू नेवर नो के व्हाट विल हैपन. तो इसमें मैं जरूर कहूंगा कि हमारी टीम स्ट्रांग है और हम लोगों को मेंटली भी स्ट्रांग रहना चाहिए, फिजिकली, और हम लोग को एक्सपीरियंस भी है. वर्ल्ड कप जब कोई खेलता है तो उसकी प्रिपरेशन हायर लेवल पे चली जाती है, बिकॉज यू हैव टू मीट ऑल दी हाई रैंक टीम, चाहे वो बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया है, हॉलैंड है, जर्मनी है. तो यहाँ पे अच्छा मुकाबला रहेगा, वी शुड विन द एशियन गेम्स.
1: महिला टीम पिछले दिनों से काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है एशियन गेम्स में. सबसे बड़ी हालांकि चुनौती चीन, दक्षिण कोरिया ये है, लेकिन वर्तमान में जिस तरह टीम खेल रही है, जिस तरह वर्ल्ड कप में भारत ने चीन को बराबर पर रोका था, उसको देखते हुए महिला टीम के बारे में क्या कहेंगे, कितनी संभावना है?
0: नहीं, अच्छी संभावना है कि मेडल पोडियम पे ये आ सकते हैं, क्योंकि जब वर्ल्ड कप में फिफ्थ पोजीशन लेके आए हैं तो एक बिग अचीवमेंट फॉर द वुमेन्स टीम.
2: वेटलिफ्टिंग में एशियन गेम्स में इस बार सिर्फ महिला वर्ग में भारतीय चुनौती है. भारतीय वेटलिफ्टिंग दल की अगुवाई 49 किलो भार वर्ग में मीराबाई चानू करेंगी. उनके सामने अपने पिछले रजत पदक का रंग बदलने का बड़ा दबाव होगा, लेकिन हर दबाव से निकलकर निखरने के लिए भारतीय वेटलिफ्टिंग दल तैयार है. भारतीय टीम की सदस्य ज्ञानेश्वरी, जो 53 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लेंगी, वो बता रही हैं कि मुश्किलें तो होंगी, लेकिन अच्छा करने का लक्ष्य इस बार तय कर रखा है.
3: मैं चाहूंगी कि अपना बेस्ट प्रदर्शन करूं. एशियन कंट्रीज, चाइना और बाकी अदर कंट्रीज भी आती है तो थोड़ा टफ रहता है.
2: हरजिंदर कौर, जो 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय दल की उम्मीद होंगी, वो बताती हैं कि वो अपना बेस्ट प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
4: टारगेट मेरा यही रहेगा कि मैं अपना बेस्ट दे के आऊं परफॉर्मेंस, जैसे मैंने कॉमनवेल्थ गेम में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था.
2: और अब बात शूटिंग की. इस बार पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर की मौजूदगी में भारतीय शूटिंग टीम के सामने हांगझू के 22 पदकों के रिकॉर्ड को पार करने की बड़ी चुनौती है. टीम कितनी तैयार है और क्या उम्मीदें हैं, बता रहे हैं ट्रैप शूटर केनान चिनाई. केनान, इस बार फिर से मेंस ट्रैप इंडिविजुअल इवेंट और मेंस ट्रैप टीम इवेंट में आप उतरने जा रहे हैं, हांगझू की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए इस बार कैसी तैयारी है?
5: सर, हमारा तैयारी तो बहुत अच्छा था. इस बार पहले हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप था 10 दिन, कोचेस के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ. तो हम थोड़ा प्रेपरेशन में और ध्यान दिए इस बार और थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस दिए प्रेपरेशन में. इस बार हमारा कोच भी बहुत स्ट्रिक्ट है प्रिपरेशन में, तो हमारा स्पोर्ट्स साइंस टीम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिए इस बार, क्योंकि जापान जा रहे हैं इस बार, चाइना नहीं जा रहे हैं, और कंडीशंस डिफरेंट रहेगा, वेदर डिफरेंट रहेगा, फूड डिफरेंट रहेगा, अकोमोडेशन भी डिफरेंट रहेगा. तो देखी जाएगी सर वहाँ जाके कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए.
2: और पिछली बार टीम इवेंट में तो गोल्ड आया था, लेकिन इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल दूर रह गया था. पिछली बार वो कौन सा पहलू रह गया था जिसमें सुधार कर इस बार गोल्ड जीतकर तिरंगे को सबसे ऊपर फहराने का टारगेट आपने तय किया हुआ है?
5: सर, वो तो कभी भी ड्रीम है, वो तो दिल में कभी भी रहता है. ये भी कंपटीशन में गए तो वही दिल में रहता है, वही दिमाग में रहता है. लास्ट टाइम मैंने ब्रॉन्ज जीता था इंडिविजुअल में, तो अच्छा था सर. वो मेरा सेकेंड गेम्स था, ये मेरा तीसरा गेम्स है, तो कोशिश तो पूरा करेंगे सर.
2: आपके ट्रैप इवेंट में मुख्य रूप से किन एशियाई देशों की तगड़ी चुनौती होती है और उससे निपटने के लिए आपने अपने कोच अंशर सिंह के साथ और चेक कोच डेविड कॉन्स्टेलिंकी के साथ क्या खास प्लानिंग की है?
5: ऐसे तो प्लानिंग नहीं करे कौन सी नेशन को हराएंगे, मगर ऐसे प्लानिंग करेगी हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे आएगी, हमारा बेस्ट एफर्ट कौन सा, टारगेट्स पे प्रैक्टिस करना है, कौन सा बंदूक यूज करना है, कौन सा एम्युनिशन यूज करना है, वो सब डिस्कशन होते रहते.
2: और पिछली बार भारतीय शूटिंग दल ने 22 मेडल जीते थे, बहुत बड़ी संख्या थी। इस बार कितनी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आप तो टीम के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कैसी परफॉर्मेंस चल रही है वो भी चर्चा होती होगी, तो ओवरऑल क्या लग रहा है?
5: सर ऐसा है कि हमारा राइफल पिस्टल टीम मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में, तो आई थिंक दे विल डू रियली वेल। आई थिंक दे हैव अ वेरी वेरी गुड चांस इन बीटिंग अ लॉट ऑफ द कंट्रीज एंड गेनिंग मेडल्स फॉर आवर कंट्री। शॉटगन टीम ऑल्सो इज कमिंग अप वेरी वेल, वी हैव अ यंग टीम गोइंग दिस टाइम, सो आई थिंक व्हाट आई हैव सीन एट लीस्ट इन द कैंप्स एंड इन द प्रिपरेशन टू द गेम्स दैट एवरीबॉडी इज पुटिंग देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कुछ तो पॉजिटिव आएगा।
2: भारत का मुक्केबाजी दल हमेशा मेडल का बड़ा दावेदार रहा है। पिछली बार लवलीना बोरगोहेन के सिल्वर समेत भारतीय दल ने 5 पदक जीते थे, इस बार उससे आगे निकलने का इरादा है। पदक जीतने की कितनी उम्मीदें हैं और पिछली बार से कितना बेहतर भारतीय दल कर सकता है, इस बारे में बता रहे हैं भारतीय बॉक्सिंग दल के पूर्व चीफ कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त एसआर सिंह।
6: देखिए हमारे पास इस टाइम 6 लड़के और 5 लड़कियां जो है टीम में गई हैं, और काफी स्ट्रॉन्ग टीम है जो कि एक्सपीरियंस टीम है, जो पीछे कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। स्पेशली लड़कियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और लड़कों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, 2 गोल्ड मेडलिस्ट थे उसमें, तो हमें उनसे एक्सपेक्टेशन है अच्छा प्रदर्शन करें।
2: आईची नागोया में भारतीय कुश्ती दल से देश को कई पदक जीतने की मजबूत उम्मीद है। भारतीय दल की बात करें तो पुरुष फ्री स्टाइल में अमन सहरावत हैं, सुजीत कलकल हैं, सागर जगलान, दीपक पूनिया और रजत रोहल की चुनौती होगी। महिला फ्री स्टाइल में अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम, निशा दहिया 68 किलोग्राम, मानसी अहलावत 62 किलोग्राम, मनीषा भानवाला 57 किलोग्राम, दीपांशी 50 किलोग्राम और प्रिया मलिक 72 किलोग्राम में चुनौती पेश करेंगी। ग्रीको रोमन में भी हमारे 3 पहलवानों की चुनौती होगी। दीपांशी कहती है कि गोल्ड जीतने के लिए इस बार पूरी तैयारी है।
7: तैयारी बहुत ही अच्छी है, जाएंगे कॉन्फिडेंस से और मेडल लेके आएंगे वहाँ से।
8: कितना जोश है?
7: फुल 100 of 100।
8: कितने मेडल आएंगे?
7: जितने हम बच्चे जाएंगे रेसलिंग से उतने ही मेडल आएंगे हमारे।
2: 68 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश करने जा रही निशा बता रही है कि तिरंगा लहराने का इस बार लक्ष्य तय कर रखा है।
7: तिरंगा ही लहराना वहाँ जाके, मेरा तो एम यही है।
2: पहलवान प्रिया मलिक का कहना है कि किसी का डर नहीं है, भारत बेस्ट है।
9: प्लान तो यही है सर कि अपना बेस्ट देना है, सब यही सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अपना 100% देंगे और अच्छा करेंगे।
8: जो जापान कोरिया की जो डर था वो निकल चुका है, उनकी लड़कियां बड़ा मजबूत है।
9: नहीं सर कोई डर नहीं है, हम ही सबसे बेस्ट है, इंडिया सबसे बेस्ट है।
2: पुरुष वर्ग में सुनील कुमार इस बार मेडल की उम्मीद कर रहे हैं।
10: पिछली बार मैंने ब्रोंज मेडल जीता था, अगली बार मेडल का रंग चेंज करूंगा, गोल्ड मेडल लेके आऊंगा देश के।
8: इस बार क्या ज्यादा फोकस किया है इस एशियन गेम्स के लिए, जो तैयारियां की किन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया है?
10: ग्राउंड रेसलिंग पे ज्यादा फोकस किया।
8: क्या लग रहा है इस बार कितने पदक कुश्ती से आएंगे?
10: कम से कम 10 मेडल देंगे कुश्ती के।
2: भारत के पारंपरिक खेल कबड्डी में पहले कोई खास चुनौती नहीं दिखती थी, लेकिन अब पुरुषों और महिलाओं दोनों वर्गों में ईरान की कड़ी चुनौती सामने आती है। भारतीय पुरुष टीम के सदस्य पवन इस बार की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं।
11: बिल्कुल मेडल लेके आएंगे, और कबड्डी से हमेशा एक्सपेक्टेशन रही है कि मेडल लेके आई है, और आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कबड्डी बिना मेडल के आई हो। 2018 में ऐसा हुआ था कि जो थर्ड पे फिनिश किया था, लेकिन अभी 2022-23 में जब भी हम मेडल लेके आए थे, गोल्ड लेके आए थे, और डेफिनेटली अभी गोल्ड लेके आएंगे।
2: क्रिकेट की बात करें तो इस बार भारत अपनी सेकेंड ग्रेड टीम नहीं बल्कि मुख्य टीम को मैदान पर उतार रही है। पुरुष टीम कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में सीधे क्वार्टर फाइनल से शुरुआत करेगी। महिला वर्ग में कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम अपने स्वर्ण पदक की रक्षा के लिए उतर रही है। भारत ने अपना क्वार्टर फाइनल मैच जापान के खिलाफ जीत लिया है, अब सेमीफाइनल मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ 20 सितंबर को होगा। अपने पारंपरिक खेल तीरंदाजी में हमें अक्सर बहुत उम्मीदें रहती हैं। हम आपको बता दें कि पिछले एशियन गेम्स में कंपाउंड इवेंट में हम सुपर पावर साबित हुए थे और 5 के 5 गोल्ड मेडल जीते थे। कंपाउंड और रिकर्व श्रेणियों में कुल मिलाकर 12 खिलाड़ी इस बार भाग ले रहे हैं। पहले सुन लेते हैं कंपाउंड आर्चर प्रतीका प्रदीप संभावनाओं को लेकर क्या कह रही हैं।
12: मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं अपने शूटिंग पे फोकस करूंगी और इंडिया के लिए मेडल लाने की पूरी कोशिश करूंगी। लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि सारे ही मेडल आए। इस बार सब अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, वही तैयारी चल रही है, सो वी विल डू आवर बेस्ट।
2: रिकर्व टीम से भी इस बार बेहतर प्रदर्शन की संभावनाएं हैं, ऐसा रिकर्व टीम की सदस्य कुमकुम महोद भी मान रही हैं।
13: एशियन गेम्स में उम्मीद मतलब मैं मेरा बेस्ट दूंगी, मेडल तो आएगा 100% आएगा, और मेडल टीम का भी हो सकता है, मिक्स टीम का भी हो सकता है, और इंडिविजुअल का भी हो सकता है।
2: वॉलीबॉल कभी हमारा ताकत वाला खेल नहीं रहा है, फिर भी इस बार हम उलटफेर के लिए तैयार हैं। एशिया के शीर्ष देशों की मौजूदगी में बेहतर प्रदर्शन इस बार हमारा एकमात्र लक्ष्य है। बैडमिंटन में एशियाई टीमें दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में शुमार है, इन देशों में भारत भी शामिल है, लेकिन सच ये भी है कि दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु अपने शिखर से ढलान की तरफ हैं, वहीं युवा सनसनी लक्ष्य सेन के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी दिखाई देती है। आयुष शेट्टी और उन्नति हुड्डा जैसे कुछ युवा चेहरे जरूर कुछ प्रभावित करने में सफल रहे हैं, हालांकि डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मेंस डबल्स जोड़ी इस बार भी कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है। संभावनाओं को लेकर चिराग शेट्टी खुद क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं।
14: एशियन गेम्स के लिए आई थिंक इट्स ऑलवेज लाइक अ लॉट ऑफ पीपल विल से दैट या वी आर द पेयर टू बीट अ वीक और टू इन बिफोर द एशियन गेम्स। आई वुडंट से दैट, देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर गुड पेयर्स एज वेल। वी जस्ट वांट टू गो आउट देयर एंड हैव एज मच फन एज वी नॉर्मली डू ऑन अ बैडमिंटन कोर्ट, एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट आई थिंक वी विल बी एबल टू गो डीप इन टू द टूर्नामेंट, एंड That's the only thing we want to do, like not really think too much about the results. When we are able to keep the results aside and take one match at a time, I think we do really well.
2: चीन और जापान जैसे देशों की मौजूदगी में टेबल टेनिस में पदक तक पहुंच पाना हमेशा से एक कठिन चुनौती रही है, लेकिन मानुष शाह, मानव ठक्कर, हरमीत देसाई, श्रीजा अकुला, दिया चितले, सिंड्रेला दास और पायस जैन जैसे युवा खिलाड़ियों से इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस के गोल्ड मेडलिस्ट पायस जैन क्या कुछ कहते हैं इस बारे में वो जानते हैं।
15: तैयारियां काफी अच्छी चल रही है एशियन गेम्स के लिए, और जो हमारा पास्ट परफॉर्मेंसेस है टेबल टेनिस का एशियन गेम्स में, एंड अभी इस साल में फिर बात करूँ क्यों डबल्स है, मिक्स डबल्स है, सिंगल्स है, आई फील कि हम सारे अच्छे कर रहे हैं, एंड या वी आर रेडी जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं एशियन गेम्स के लिए, एंड रियली हैप्पी एंड ऑनर्ड एशियन गेम्स जाने के लिए। लेट्स सी हाउ इट गोस, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई कैनॉट पिन पॉइंट कि कितने आएंगे कैसे आएंगे, यू कैनॉट, मतलब स्पोर्ट्स है, बट आई फील कि या इट्स गोइंग टू बी बेटर देन द लास्ट टाइम।
2: स्क्वाश में अनाहत सिंह ने हाल में कई चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं, अपने से कहीं ऊंची रैंकिंग वाले खिलाड़ियों को कई मौकों पर मात दी है, साथ ही जोशना चिनप्पा और अभय सिंह जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी इस बार भारतीय टीम में शामिल हैं, तो पदक की पुख्ता उम्मीदें हैं। पदक की संभावनाओं को लेकर क्या कहती हैं युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह।
16: I'd love to change the color of the medal. It'll be great to, you know, be able to go up a step. But of course, the competition's a lot. There's a lot of different players from different countries who are in the top in the world right now. But I mean, hopefully, I'm able to do something and I'm able to train hard towards the Asian Games and do well.
2: भारतीय मार्शल आर्ट्स के लिहाज से वुशु हमेशा से एक ऐसा साइलेंट परफॉर्मर रहा है जिसने वैश्विक स्तर पर देश को लगातार गौरव दिलाया है। इस बार भी भारत को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कोच अमित पाल टीम की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं।
17: और भी इस एशियन गेम्स के लिए हमारी टीम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, और लास्ट ईयर हमने एक सिल्वर मेडल लिया था, बट इस बार मे बी होप हम 7 एथलीट जा रहे हैं और मे बी हम 5-6 के आसपास में मेडल सिक्योर करेंगे, इस बार पूरा कॉन्फिडेंस हमें।
2: जूडो में हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में कमाल किया, इस बार भी अस्मिता डे, यामिनी मौर्या और आई तखेल बम की मौजूदगी से टीम से बहुत बढ़िया प्रदर्शन की संभावना है, ऐसा खुद अस्मिता डे मान रही है।
18: अभी मैं यही माइंडसेट करके जा रही हूँ कि मुझे गोल्ड जीतना है फिर से देश के लिए, अपने देश के लिए एशियन गेम्स में भी, तो इसीलिए मैं अभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रही हूँ, ट्रेनिंग कर रही हूँ, बाकी तो भगवान के ऊपर है, मैं जरूर लेके आऊंगी।
2: भारतीय तैराकों से पदक की उम्मीद से ज्यादा एशियन गेम्स के कड़े पूल्स में टाइमिंग सुधारने और फाइनल में जगह बनाने की कड़ी चुनौती होगी। देखना है इस बार भारतीय तैराक उन उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। वर्चुअल स्पोर्ट्स के दौर में भारतीय ई स्पोर्ट्स टीम ने अब तक एशियन गेम्स में सिर्फ एक कांस्य पदक जीता है, इस बार उससे बेहतर की उम्मीद है। भारतीय ई स्पोर्ट्स के महासचिव लोकेश सूजी कहते हैं कि चारों इवेंट में इस बार हम पदक जीतेंगे।
19: की बार हमारे चार गेम टाइटल्स के लिए हमारे ई स्पोर्ट्स एथलीट जा रहे हैं, टोटल 15, पूरे पूरे कॉन्फिडेंट है कि हमारे एक्चुअली चारों के चारों जो टाइटल्स हैं उसमें हमारे मेडल आएंगे।
2: पोकेमॉन यूनाइट में पदक को लेकर आशान्वित हैं टीम के सदस्य अदनान।
15: I have been playing since 5 years. मैं 5 साल में से 4 साल जीता ही हूँ ये गेम में, एंड यस एज एन ऑफिशियल इंडिया को रिप्रेजेंट करना फर्स्ट टाइम है। हम तो गोल्ड का ही ट्राई कर रहे हैं पूरे।

0: विशेष रहेगी। अभी रिसेंट में एक इवेंट हुआ था, उसमें हम लोग सेकंड आए थे एशिया में ही, तो वी आर गोना ट्राई फॉर गोल्ड दिस टाइम।
1: एशियन गेम्स में टेकबॉल का डेब्यू हो रहा है। ये खेल नया है लेकिन भारत का दावा तगड़ा है। इस बात की झलक क्यूमसी डिसूजा के प्रदर्शन से मिल गई है। उन्होंने विमेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचकर अपनी पदक की दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने पहले मैच में कंबोडियन प्रतिद्वंदी को हराया, फिर जापान की वर्ल्ड नंबर 7 युइना साकामोतो को हराया। अब वो पदक से सिर्फ एक जीत दूर रह गई हैं। कल सुबह उनका सेमीफाइनल मैच इंडोनेशिया की सुमाया से होगा। हालांकि मिक्स डबल्स में अपने साथी अनस इमरान के साथ वियतनामी जोड़ी के हाथों क्वार्टर फाइनल में हार से उनकी चुनौती समाप्त हो गई है। आईचिन अगोया एशियन गेम्स में भारत की तैयारियों और संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय खेल प्राधिकरण साई की खेल पत्रकार हिमिका चौधरी। हिमिका, सबसे पहला सवाल और सबसे पहली बात ये कि एशियन गेम्स 2026 में शूटर और ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर और एशियन गेम्स में शॉटपुट के गोल्ड मेडलिस्ट तेजिंदर पाल सिंह तूर आईचिन नागोया में भारतीय दल के फ्लैग बेयरर होंगे, ये इन खिलाड़ियों के लिए कितना बड़ा मौका है और जो ये फैसला लिया गया है ये कितना अच्छा है?
2: नमस्कार, आपका ये जो सवाल है, देखिए, फ्लैग बेयरर एक देश के लिए बनना वो किसी भी खिलाड़ी के लिए इतना बड़ा एक मौका है, एक गर्व की बात है। और जब इनको, जैसा आपने पूछा कि इन दोनों को चुना गया, ये कितनी अच्छी बात है। मनु क्योंकि जैसा आपने कहा डबल ओलंपिक मेडलिस्ट है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है स्पेशली यंग जनरेशन के बीच, तो मुझे लगता है उसका सिलेक्शन जेंजी को भी बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा ये खेल देखने के लिए। और तेजिंदर पाल तूर का तो बहुत बड़ा फॉलोइंग है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, और हमें पता है कि हरियाणा पंजाब इस इलाके के जो बच्चे हैं वो खेल में काफी रुचि रखते हैं, शायद इंडिया में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो उनके लिए भी मुझे लगता है कि एक बहुत ही इनकरेजिंग मोमेंट होगा जब वो देखेंगे उनमें से कोई जो है इंडिया का फ्लैग बेरर बनके आईचिन नागोया में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
1: और इस बार संख्या की बात करें तो भारत का दल छोटा है लेकिन पदक की जो उम्मीद है वो पिछली बार से ज्यादा की जा रही है, इसकी आखिर क्या वजह है?
2: देखिए, जब एक कंटिंजेंट जाती है हमेशा यही सोच रहता है कि पिछली बार से ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स लेके आएंगे, पर खेल एक ऐसी चीज है जिसमें कहना बहुत मुश्किल है कि पिछली बार से ज्यादा होगा या कम। इस बार जैसा कि आपने कहा कि कंटिंजेंट छोटी है, पिछली बार के मुकाबले ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा एथलीट जो है इस बार हम कम भेज रहे हैं, 501 का टोटल कंटिंजेंट है। तो जब कंटिंजेंट कम होती है हम कभी सोचते हैं कि शायद फिर इसके साथ के मेडल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, नंबर ऑफ मेडल ज्यादा या कम ये कहना मुश्किल होगा, ये जरूर कह सकती हूँ कि जिस तरह का हमारा तैयारी है, जो पिछली बार हमने जीता था उसके आसपास तो हम लोग जरूर लेके आएंगे। अगर आप देखें तो जो एथलीट टू मेडल रेशियो होता है कि कितने एथलीट आपने भेजे और आपके देश ने कितने मेडल्स जीते, वो इस बार जरूर बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कि अगर पिछली बार 800 के करीब बच्चों ने मिलके 100 से थोड़े ज्यादा मेडल जीते थे और इस बार अगर वही नंबर 500 बच्चे ले आते हैं तो एथलीट टू मेडल रेशियो इस बार हम जरूर कह सकते हैं कि ज्यादा होगा। और उम्मीद तो देखिए यही है कि 100 से थोड़ा ज्यादा, पर मुझे लगता है कि ये नंबर्स कह के एथलीट पे प्रेशर हम क्रिएट ना करें, उनके लिए चीयर करते रहे, चीयर फॉर भारत जैसा हम कहते हैं। मेडल्स ज्यादा जरूर होंगे या उसी के करीब होंगे, बट जो भी होंगे हमारे एथलीट्स उनके 100% देके आएंगे।
1: और भारतीय दल में इस बार 300 से अधिक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बेहद युवा हैं और पहली बार इतने बड़े मंच पर उतर रहे हैं, इस बारे में सोच क्या रही है?
2: देखिए, ये स्पोर्ट्स फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जब भी हम इंडियन स्पोर्ट के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं तो कोई वही चार गिने चुने नाम आते हैं हर स्पोर्टिंग डिसिप्लिन में कि बस यही लोग हैं जो शायद मेडल ले आ पाएंगे। बट इस बार जैसा आपने कहा कि 501 में से 310, विच इज लाइक अराउंड 63% ऑफ द टोटल कंटिंजेंट आर गोइंग टू द एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो जा रहे हैं। तो इससे ये दर्शाता है कि हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो किसी भी एक इवॉल्विंग स्पोर्टिंग नेशन के लिए बेहद जरूरी है, तो इसी कारण से मुझे लगता है कि नए जो युवा, जैसे आप देखिए अनाहत स्क्वाश में हम हमेशा वही रहता है, जोशना चिनप्पा, सौरभ घोषाल, यही लोग शायद कुछ कर पाए हमारे लिए, बट इस बार अनाहत का बहुत बड़ा चांस है। हर एक स्पोर्ट में जो टीम्स है वो यंगर होती जा रही हैं और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एज अ कंट्री। कि हम सही

0: दिशा में जा रहे हैं।
1: जी, और सरकार ने भी और तमाम खेल संघों ने भी इस बार एशियन गेम्स के लिए खुले हाथ से खर्च किए हैं, और कहें तो खिलाड़ियों पर जो सुविधाएं उनको चाहिए, जिस तरह की फैसिलिटीज चाहिए, सब पर बहुत ज्यादा खर्च किया गया है। इस बारे में भी कुछ बताएं।
0: देखिए, 2014 के बाद जब 2019 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का लॉन्च हुआ और उसके बाद खेलो इंडिया का लॉन्च हुआ, तभी से लेके सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स में जो बजट है वो बढ़ाया ही जा रहा है ताकि टैलेंट को मौका मिले। इस बार का जो खेलो इंडिया का बजट है वो 10 times ज्यादा करके 36,000 crore कर दिया गया है। तो पैसा तो डेफिनेटली खर्चा किया जा रहा है। इस बार का भी जो हमारा बजट है वो 702 करोड़ रुपए है, पर मुझे लगता है कि पैसा खर्चा कर रहे हैं ये तो सही है, पिछले कुछ 10 सालों से कर ही रहे हैं, पर सही जगह पैसा खर्चा करना, जो एथलीट की नीड है वहां पे सपोर्ट देना और सही टाइम पे देना, मुझे लगता है ये दोनों चीजें हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। CWG में भी किया था, जिसके वजह से आपने मेडल्स का टैली आपने देखा कितना बड़ा। एक एथलीट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है इंटरनेशनल एक्सपोजर, क्योंकि इंटरनेशनली ट्रेन करते हैं तभी उनको समझ में आता है कि दूसरे देशों के एथलीट्स कितना अच्छा कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर में मुझे बताते हुए खुशी है कि जो बजट है वो इस साल का कुछ सिर्फ एशियन गेम्स के लिए कुछ 40 करोड़ रुपए का था। अलग अलग एथलीट्स अलग अलग जगहों में जाके ट्रेन किया, जैसे एथलेटिक्स वाले थे वो यूएसए में बहुत लंबे समय तक रहे, पोलैंड में रहे, स्पाला में। टेनिस के जो बच्चे थे उनको भी हमने भेजा सियोल साउथ कोरिया में, वेटलिफ्टिंग वाले बर्मिंगहम में थे, रेसलिंग रशिया और उज्बेकिस्तान, क्योंकि स्पारिंग पार्टनर वहां पे सबसे ज्यादा बढ़िया मिलता है, शूटिंग वाले इटली में थे। तो इस तरह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इंटरनेशनली अपने आप को ट्रेन कर रहे थे। और जब हम कहे कि इंटरनेशनली ट्रेन कर रहे थे, क्या इसका मतलब है कि भारत में ट्रेनिंग अच्छी नहीं है? बात वो नहीं है, बात हमेशा यही होती है कि इंटरनेशनली ट्रेन करते हैं तो हर एक देश के एथलीट के साथ वो मुकाबला करते हैं और वो उनको वो कॉन्फिडेंस देती है कि एक मल्टीनेशनल स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में जाके वो परफॉर्म कर पाए। एथलीट के लिए कोच एक बहुत अहम हिस्सा, सबसे अहम हिस्सा हम कह सकते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट, डाइट, फॉरेन एक्सपोजर सब कुछ एक जगह पर, जो कोचिंग है वो अगर उनको सही नहीं मिले फिर चाहे आप उन्हें कहीं भी भेज दे, वो उस तरह का टेक्निक वो सीख नहीं पाएंगे, वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो साइके कोचेस है, जो इंडियन कोचेस है, वो तो उनको ट्रेन पूरी साल कर ही रहे हैं, पर साथ में हम लोग इस बार 50 से ज्यादा फॉरेन कोचेस लेके आए हैं, जिसमें से मान लीजिए 14 जो है वो एथलेटिक्स में है। कारण उसका यही था कि फॉरेन कोचेस, जस्ट लाइक फॉरेन एक्सपोजर, जब वो लोग जाके इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। फॉरेन कोचेस उनके इंटरनेशनल टेक्निक्स लेके आते हैं और इस तरह से चूज किया जाता है कि जिस देश का जो कोच सबसे अच्छा है इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन, उनको हम लेके आते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि फॉरेन कोचेस का एक अहम भूमिका इस बार भी रहेगा।
1: और एक सवाल ये भी तो होता है कि इस बार हमने खिलाड़ियों को वैसी कंडीशंस दी ट्रेनिंग के लिए जैसा कंडीशन हमें आईची नागोया में मिलेगा खिलाड़ियों को अपना खेल प्रदर्शित करने के लिए, और ठहरने के भी कुछ ऐसे इंतजाम किए गए जैसे कंटेनर में और क्रूज में ठहराने की जो व्यवस्था है जापान में, उस पर भी काफी कुछ किया गया।
0: देखिए, एथलीट का जो मेंटल स्टेटस है ना, वो हमेशा डिसाइड करती है एथलीट का परफॉर्मेंस, क्योंकि वही बात है कि हम एग्जाम के लिए पूरे प्रिपेयर होके तो गए, पर एग्जामिनेशन हॉल में अगर मान लीजिए बहुत गर्मी हो या इस तरह का कुछ सिचुएशन हो जहाँ पे हम लिख ही नहीं पा रहे हैं पेपर, उसी पे हमारा ध्यान चला जाए तो हम शायद परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो एथलीट के लिए भी चीज वही है, हमें पता था बहुत पहले से कि नगोया के कुछ बहुत यूनिक चैलेंजेस रहेंगे। नगोया बहुत ज्यादा कोई बड़ा शहर नहीं है, एक इंडस्ट्रियल हब है, और नगोया के लिए भी इतने सारे एथलीट्स को एक साथ रखना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। उन्होंने पहले ही बोला था कि होटल्स हमारे पास इनाफ नहीं है, तो हम इसलिए जो एथलीट्स है उनको कंटेनर्स में रखेंगे, हट्स में रखेंगे, क्रूजेस में रखेंगे। तो ये जैसे ही हम लोगों को पता चला तो हमें लगा कि ये बहुत जरूरी है कि एथलीट को भी हम वो ट्रेनिंग दे कि उस सिचुएशन में जाके उनको ये ना लगे कि ये मेरी बेड बहुत छोटी है, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है कंटेनर के अंदर, तो वही सोच सोच के उनका जो परफॉर्मेंस है वो बिगड़ जाए। इसलिए साई बेंगलुरु का जो मेन सेंटर है एथलेटिक्स और बहुत सारे वहां पे प्रशिक्षण होते हैं, पटियाला आप जानते हैं बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग और कुछ एथलेटिक्स के भी वहाँ पे एथलीट्स हैं, ये दो मेन जगहों में हमने कंटेनर्स बनाए जो एकदम उसी स्पेसिफिकेशन का था जो उनको जापान में मिलेगा। तो बेड्स थोड़ी छोटी थी, चलने फिरने का जगह थोड़ा छोटा था, पर हमने उनको इस तरह से ट्रेन किया ताकि उनको उन्हीं कंटेनर्स में उनको रखा गया, वही वो लोग सो

0: थे, वहीं वो लोग जो अपना है उठ के जो थोड़ा सा वार्म अप करना होता है कभी, तो वो सब वो लोग वहाँ पे करते थे ताकि वहाँ पहुँच के उनको नहीं लगे कि अरे ये हम कहाँ आ गए।
1: भूमिका स्टूडियो में आने के लिए, आकाशवाणी से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: एशियन गेम्स में पदकों की जद्दोजहद में आगे निकलने के लिए मुकाबले शुरू हो चुके हैं। औपचारिक उद्घाटन में सिर्फ कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, फिर मेडल टेबल में देशों और खिलाड़ियों के नाम दर्ज होने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है पदकों की सूची में भारत का नाम भी शीर्ष देशों में शुमार होगा। एशियाई खेलों पर विशेष कार्यक्रम के साथ कल रात 10 बजे हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज, स्वाति और मोहम्मद शाहिद आजमी की रिपोर्ट के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत, जिसे शब्द दिए हैं समीर ने। संगीत है नदीम श्रवण का और सुरों से सजाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म साजन से। अलका याग्निक की आवाज, समीर की शब्द रचना, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: समीर का लिखा गीत, नदीम श्रवण का संगीत और अलका याग्निक की आवाज़। ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म साजन से। श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन की और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में UAE के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
2: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाल में हाल में आई बाढ़ में जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक की है। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक समझौते को शीघ्र पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई सवाल पूछे। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर STT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला STT-40 प्रशिक्षण विमान भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं।
4: आज हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंड ओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है।
1: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजी नगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान केंद्रों की मसौदा सूची जारी कर दी है। इस सूची में 784 मतदान केंद्र हैं। मतदान केंद्रों की अंतिम सूची 25 सितंबर को प्रकाशित होगी। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया में एक ही देश की लगभग 30 कंपनियां विभिन्न पेविलियनों में भाग ले रही हैं।
5: वेरी गुड रिस्पॉन्स, काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। गोल मेज बैठकों में कई देशों ने बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ भाग लिया है। जापान और सिंगापुर के पवेलियन में 30 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देशों की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। इनमें नीदरलैंड और स्वीडन प्रमुख हैं। इससे आगे की संभावनाएं काफी अच्छी नजर आ रही हैं।
6: लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड जर्नी अहेड।
1: प्रधानमंत्री जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों के जीवन को बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
7: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग का स्थान लिया। इसे वित्तीय आवंटन करने वाली संस्था के बजाय एक नीति निर्माण संस्था के रूप में तैयार किया गया है। नीति आयोग 3 प्रमुख माध्यमों के जरिए काम करता है। शासी परिषद प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर लाती है। स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत नीति आयोग की टीमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती हैं। वहीं आकांक्षी जिला कार्यक्रम मापे गए परिणाम

0: के आधार पर जिलों की रैंकिंग करता है और इन परिणामों को सार्वजनिक करता है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
1: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को, देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
0: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद को मजबूत करता है और केंद्र राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है।
2: नीति आयोग का लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है।
0: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच के रूप में कार्य करता है। मजबूत राज्य अब मजबूत राष्ट्र की स्पष्ट नींव बन चुके हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने आज पठानकोट जिले से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने माधोपुर से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का समापन 30 सितंबर को जलंधर में होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस नहीं निकालने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने छात्र संघ चुनाव के दौरान लिंगदो समिति की सिफारिशों के बार बार उल्लंघन को देखते हुए ये निर्देश दिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान आज संपन्न हो गया, मतगणना कल होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी एनटीए की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई। घटना में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना स्थल पर बचाव कार्य चल रहा है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि यह संशोधन पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों से सेंसेक्स में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 20 अंक की गिरावट देखी गई और ये 74,295 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 76 अंक की बढ़त के साथ 23,346 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे बढ़कर 95.88 रुपए पर बंद हुआ।
3: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में कल तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग अलग नाम और चुनावी चिन्ह आवंटित किए। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देने में तआवुन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। भारत ने बहिरे अहमर खित्ते में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और सऊदी अरब की खुद मुख्तार सरजमीन पर हमले की मजम्मत की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय फिजाइया को 2 सीटों वाले तेजस और HTT-40 तरबियती तैयारे सुपुर्द किए। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के हरीफ धड़ों को अलग अलग नाम और इंतखाबी निशानात अलॉट किए हैं। हुकूमत ने थोक ग्राहकों के लिए चीनी जखीरा करने की हद 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। और एशियाई खेलों में खवातीन की भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में जापान को 8 विकेट से हरा कर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात UAE ने इलाकाई अमन और सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देने की कोशिशों में मुसलसल तआवुन और इश्तराक के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आज मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का टेलीफोन मौसूल हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया के हालात पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए नए इकदामात के बारे में भी गुफ्तगू की। इसमें तवानाई, दिफा, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और सेहत जैसे शोबे शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने भारत की कामयाब ब्रिक्स सदारत पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मुबारकबाद दी। जनाब मोदी ने ब्रिक्स सरबरा मीटिंग में वलीहद शेख खालिद की शिरकत और भारत की सदारत के दौरान अहम नतायज हासिल करने में UAE के तआवुन और शराकत दारी को भी सराहा। UAE के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद दी और इस मौके पर उनके लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले के दौरान मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में नए तकर्रुर पाने वाले नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्री नामे तकसीम करेंगे। ये प्रोग्राम मुल्क भर में 45 मकामात पर मुनक्किद किया जाएगा। इस मौके पर जनाब मोदी तकरीब से खिताब भी करेंगे। नई तकर्री पाने वाले उम्मीदवार भारत सरकार की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में खिदमात अंजाम देंगे, जिनमें महकमे मासूलात, वजारत रेलवे, वजारत दाखिला, वजारत सेहत व खानदानी बहबूद, मालियाती खिदमात का महकमा और वजारत दिफा समेत दीगर इदारे शामिल हैं। भारत ने बहिरे अहमर में सलामती की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। आज नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब के खुद मुख्तार इलाके पर हमलों की मजम्मत की है, जिनमें शहरियों और इकतसादी असासों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि मुकदस शहर मक्का पर हुए हमले की कोशिश के बाद भारत ने बयान जारी किया था। पाकिस्तानी बहरी जहाज और भारतीय बहरी जहाज के दरमियान हुए तसादुम के बारे में इजहार ख्याल करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने अपने एहतजाज पर पाकिस्तान के रद्दअमल का नोटिस लिया है। जनाब जायसवाल ने पाकिस्तान की जानिब से लगाए गए इल्जाम और धमकियों को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: जनाब जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी बहरी जहाज हुनैन के जरिए खतरनाक तरीके से आगे निकलने की कोशिश फौजी मशकों, कलाबाजियों और फौजी नकलो हरकत के एडवांस्ड नोटिस से मुतालिक भारत पाकिस्तान के 1991 माहदे के आर्टिकल 10 की सरीह खिलाफ वर्जी है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी बहरी जहाज ने समंदर में टक्कर से बचने से मुतालिक बैन अल-अक़वामी ज़ाब्तों की भी खिलाफ वर्जी की है। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि योग मौजूदा दौर में बढ़ते हुए जहनी तनाव के दरमियान जिस्मानी और दिमागी सेहत, ध्यान, खुद आगाही और जहनी तवाजुन को बेहतर बनाने में मदद फराहम कर सकता है। नायब सदर ने यह बात महाराष्ट्र के लोनावला में कैवल्य धाम में गोवर्धन दास सेक्सरिया कॉलेज ऑफ योगा एंड कल्चरल सिंथेसिस की प्लेटिनम जुबली तकलीबात से खिताब करते हुए कही। जनाब

0: कृष्णा ने योग की तालीम, तहकीक और सकाफती मुतालात के दरमियान मजकूरा इदारे की 75 साल खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि कैवल्य धाम के बानी स्वामी कुवल्यनंदन ने 1924 में योग के साइंसी मुताले की बुनियाद रखी थी। उन्होंने कहा कि योग महज एक नस्ल की रिवायत नहीं है, बल्कि एक ऐसा विरसा है जिसे आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों और अक़वामे मुत्तहिदा की जानिब से 21 जून को योग का आलमी दिन करार दिए जाने के बाद योग को आलमी सतह पर शनाख्त हासिल हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका यह सफ़र जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और मुसलसल और अनथक अज़्म से इबारत है, जो आज भी पूरी मजबूती के साथ जारी है। खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के इस नज़रिए से रहनुमाई हासिल करते हुए हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के हदफ के हुसूल के लिए मुसलसल काम कर रही है। जामे तरक्की और समाज को बाख्तियार बनाने के जरिए ये अज़्म लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली ला रहा है। आज सेवा संकल्प अभियान की खसूसी सीरीज के तहत हम नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के जरिए इस नज़रिए को अमली जामा पहनाए जाने की एक मिसाल पेश कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नीति आयोग ने यकुम जनवरी 2015 को काबीना की एक करारदाद के जरिए प्लानिंग कमीशन की जगह ली। इसे फंड फ्राहम करने वाले इदारे के बजाय पॉलिसी साजी के इदारे के तौर पर तश्कील दिया गया। नीति आयोग के तीन अहम अज्जा हैं। गवर्निंग काउंसिल वजीर आजम और तमाम वज़रा आला को एक ही प्लेटफॉर्म पर यकजा करती है। रियासतों को ताउन फ्राहम करने से मुतालिक मिशन नीति आयोग की टीमों को रियासती हुकूमतों के अंदर काम करने के लिए तैनात करता है। उमंगों वाले अजला प्रोग्राम जिलों की कारकर्दगी को मुकर्रा पैमानों पर जांचता है और नतायज शाये करता है। 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर आजम ने मोदी ने कहा था कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए मरकज और रियासतें एक टीम के तौर पर मिलकर काम कर रहे हैं।
2: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
1: आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए नीति आयोग के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग के क्याम से ताउन पर मबनी वफाकियत को फरोग मिला है और ये मरकज रियासती हुकूमतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को हिकमत अमली और तकनीकी मशवरे फराहम करता है।
3: नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसका लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये थिंक टैंक की तरह काम करता है और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करता है। सारी स्कीम्स मॉनिटरिंग करने की वजह से स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बदलाव आया है।
1: नीति आयोग अब भारत सरकार के अहम पॉलिसी थिंक टैंक और मरकज और रियासतों के दरमियान पॉलिसी से मुतालिक तबादले ख्याल के एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर रहा है। मजबूत रियासतें अब एक मजबूत मुल्क की वाजह बुनियाद बन चुकी हैं। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हवाई जहाजों के सरकारी मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने अपने ट्विन सीटर हल्के जंगी तैयारी तेजस और HTT-40 तरबियती तैयारी को फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस के बाद आज बेंगलुरु में भारतीय फिजाइया को सौंपा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और शहरी आवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू ने इससे मुतालिक तकरीब में शिरकत की। HAL ने दो तेजस और तरबियती तैयारे भारतीय फिजाइया के हवाले किए। वहीं HAL ने अगली नस्ल के 4 ध्रुव हेलीकॉप्टरों को सरकारी कंपनी पवन हंस लिमिटेड को सौंपा। इसके अलावा HAL ने पहला HTT-40 बुनियादी तरबियती तैयारा भी भारतीय फिजाइया के हवाले किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तैयारे को अंकुर का नाम दिया।
4: आज हम एक साथ 3 इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट के साक्षी बने हैं। पहला इंडिजनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन

0: पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
1: तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर खुद इन्हेसारी पर जोर दिया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि भारत इस शोबे में आलमी कायद के तौर पर उभरेगा। जनाब सिंह ने स्वदेशी दिफाई और शहरी हवाबाजी टेक्नोलॉजियों की कोशिश के लिए हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सताइश की। जनाब सिंह ने नौजवान इंजीनियरों और डिजाइनरों को मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजियों से मुतालिक चैलेंज को कबूल करने और भारत को आलमी सतह पर मुकाम दिलाने में मदद करने की अपील की। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि निजी और अवामी शोबे को हरीफ बनने के बजाय शराकतदार के तौर पर काम करना चाहिए। जनाब सिंह ने कहा कि भारत की दिफाई पैदावार और बरामदात में खातिरखा इजाफा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज IBM सेमीकंडक्टर के जनरल मैनेजर डॉक्टर मुकेश खरे से मुलाकात की। ये मुलाकात आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के तनाजुर में हुई। इस दौरान दोनों ने भारत की चिप डिज़ाइन तरजीहात, जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों के मौके और भारत में एडवांस्ड चिप साजी के से मुतालिक IBM के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। जनाब वैष्णव ने LAM रिसर्च के COO सेशा वर्दराजन से भी मुलाकात की और भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को मुस्तहकम करने के कंपनी के मंसूबों पर बातचीत की। इंतखाबी कमीशन ने आज तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हरीफ धड़ों को नए नाम और नए इंतखाबी निशानात अता किए। इस फैसले के बाद ममता बनर्जी और अरूप राय के जेर क्यादत धड़े ज़िमनी इंतखाबात में नई शनाख्त के साथ हिस्सा लेंगे। अरूप राय के जेर क्यादत ग्रुप को नया नाम डेमोक्रेट तृणमूल कांग्रेस दिया गया और उनका इंतखाबी निशान लिफाफा होगा। वहीं ममता बनर्जी के जेर क्यादत दूसरे ग्रुप का नाम बदलकर ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस रखा गया है, जबकि उनका इंतखाबी निशान एक फुटबॉल खिलाड़ी होगा। हुकूमत ने थोक ग्राहकों के लिए चीनी जखीरा करने की हद 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ताहम ये रियायत इस शर्त के साथ दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की हद से ज्यादा रखा जाने वाला चीनी का जखीरा सिर्फ पेशगी मंजूरी स्कीम और टेरिफ रेट कोटा के तहत दरामद की गई चीनी से हासिल किया जाएगा। सारिफिन के उमूर, खुराक और सरकारी निजाम तकसीम की वजारत ने कहा कि खुली मार्केट से खरीदी जाने वाली चीनी के जखीरे की हद में कोई तब्दीली नहीं की गई है और ये सिर्फ 15 दिन की खपत तक महदूद रहेगा। ये फैसला हुकूमत की जानिब से चीनी के बड़े ग्राहकों के साथ तफसीली मुशावरत के बाद किया गया। एशियाई खेलों में ख्वातीन की भारतीय टीम मेजबान जापान को 8 विकेट से बआसानी शिकस्त देने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई है। निशिन में आज खेले गए मैच में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हरा दिया। इस क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और 19 ओवर्स और 5 गेंदों में जापान की पूरी टीम को महज 57 रन पर आउट कर दिया। इस दौरान भारतीय गेंदबाजों श्री चरनी ने 4 विकेट और शेफाली वर्मा ने 2 विकेट लेकर लगातार दबाव बनाए रखा। जवाब में भारतीय टीम ने सिर्फ 5 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पर यह निशाना हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा ने 15 गेंदों में 40 रन बनाए और वो नॉट आउट रहीं। हरमनप्रीत कौर की क्यादत वाली भारतीय टीम का मुकाबला निची नायगोया एशियाई खेलों के दूसरे सेमीफाइनल में इतवार के रोज बांग्लादेश से होगा। वहीं पहला सेमीफाइनल उसी रोज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, अंडमान और निकोबार जजायर और शुमाल मशरक भारत के कई हिस्सों में कल शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा कि कल से मगरबी राजस्थान के कुछ हिस्सों से जुनूब मगरबी मानसून के रुखसत होने के लिए हालात साजगार हैं। दिल्ली के लिए महकमे मौसमियात ने कल मौसम के जुजवी तौर पर अबर आलूद रहने की पेश गोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में कल ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और कम अज कम दर्जा हरारत 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देने में ताउन जारी रखने के अज़्म का इरादा किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। भारत ने बुहरा अहमर खित्ते में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और सऊदी अरब की खुद मुख्तार सरजमीन पर हमले की मजम्मत की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय फिजाइयों को 2 सीटों वाले तेजस और HTT-40 तरबियती तैयारे सुपुर्द किए हैं। और इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के हरीफ धड़ों को अलग अलग नाम और इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल जगत। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं एशियन गेम्स 2026 विषय पर डॉली सक्सेना की वार्ता।

खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपी। खेल के मैदान में जब जुनून, मेहनत और देश के सम्मान का संगम होता है तो जन्म लेती है ऐसी उपलब्धियां जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है। एशियाई खेल भी ऐसा ही एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां एशिया के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, क्षमता और खेल भावना का प्रदर्शन करते हैं। एशियन गेम्स 2026 को लेकर खेल जगत में काफी उत्साह है। भारतीय खिलाड़ियों से भी देशवासियों को शानदार प्रदर्शन की उम्मीदें हैं।

आखिर क्या है इन खेलों का महत्व, किन स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी है और एशियाई खेल भारतीय खेलों के भविष्य के लिए क्या संभावनाएं लेकर आते हैं, इन्हीं पहलुओं पर आज हम सुनेंगे यह वार्ता जिसका शीर्षक है एशियन गेम्स 2026 और वार्ताकार है डॉली सक्सेना।

नमस्कार श्रोताओं, एशिया की खेल शक्ति का सबसे बड़ा मंच एक बार फिर सजने जा रहा है। दुनिया भर की निगाहें जापान के आइची नगायो पर होंगी, जहां 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक एशियंस गेम का आयोजन किया जाएगा। एशिया के लगभग सभी प्रमुख खेल राष्ट्र इस महासंग्राम में उतरेंगे। भारत भी एक मजबूत और महत्वाकांक्षी दल के साथ अपनी चुनौतियों को पेश करेगा। श्रोताओं, भारतीय खेलों के लिए पिछले कुछ वर्ष बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। हांगझाओ एशियंस गेम में भारत ने इतिहास रचते हुए पहली बार 100 का आंकड़ा पार किया था। भारत ने 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य सहित कुल 107 पदक जीते थे। अब सवाल है, क्या भारत आइची नगायो में अपने इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ पाएगा? क्या भारत पहली बार एशियंस गेम में 110 या उससे अधिक पदकों का आंकड़ा छू पाएगा? आइए आज इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर भारत में पदक अभियान की शुरुआत किसी खेल से करनी हो तो सबसे पहले नाम आता है शूटिंग का। भारतीय निशानेबाजों ने पिछले कुछ वर्षों में विश्व स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। ओलंपिक्स विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप जैसी प्रतियोगिताओं में भारत के निशानेबाज लगातार पदक जीत रहे हैं। इस बार भी भारत को राइफल, पिस्टल और शॉटगन की विभिन्न स्पर्धाओं में कई पदक की उम्मीद है। मन्नू भाकर, ईशा सिंह, एल्विन क्लविन, रुद्रांश पाटिल और ऐश्वरी प्रताप सिंह तोमर जैसे खिलाड़ियों पर खास नजर रहेगी। और श्रोताओं, मध्य प्रदेश और खास करके भोपाल के लिए गर्व की बात है कि भारतीय निशानेबाजों ने एशियन गेम्स में पहली बार अपनी तैयारी के लिए भोपाल की अत्याधुनिक शूटिंग एकेडमी का भी रुख लिया था। यानी जापान में भारत की निशानेबाजों का निशाना सीधे पदक पर होगा। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा की कमी खलेगी। एथलेटिक्स भारत के लिए दूसरा बड़ा पदक क्षेत्र है, लेकिन इस बार भारत को एक बड़ा झटका लगा है। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा चोट के कारण एशियंस गेम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। नीरज की गैर मौजूदगी निश्चित रूप से भारत के स्वर्ण पदक की एक मजबूत संभावना को कम कर सकती है, लेकिन भारतीय एथलेटिक्स केवल नीरज चोपड़ा तक सीमित नहीं है। अविनाश सावले, गुलवीर सिंह, पारुल चौधरी, ज्योति यराजी, अनुरानी और अन्य खिलाड़ी भारत की उम्मीदों को बनाए रखेंगे। अविनाश सावले की स्पीड रेंज, पारुल चौधरी की लंबी दूरी की दौड़ और अनुरानी की जेवलिन थ्रो में भारत पदक की उम्मीद कर सकता है। श्रोताओं, एथलेटिक्स में कई बार एक सेकंड का 100वां हिस्सा और 1 सेंटीमीटर का अंतर

पदक और चौथे स्थान के बीच में फैसला करता है। हॉकी में भारत को 2 स्वर्ण की उम्मीद है। भारतीय हॉकी की बात हो या स्वर्ण पदक की उम्मीद ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। पुरुष हॉकी टीम पिछली बार एशियंस गेम की चैंपियन बनी थी और

भारत 2 स्वर्ण जीतता है तो पदक तालिका में भारत की स्थिति मजबूत हो सकती है। एशियन गेम्स में कबड्डी में भारत के सामने अपनी बादशाहत बचाने की चुनौती भी है। कबड्डी भारत का पारंपरिक मजबूत खेल है। एशियन गेम में कबड्डी का इतिहास भारत का बेहद शानदार रहा है। पिछली प्रतियोगिताओं में पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीते थे। इस बार भी दोनों वर्गों में स्वर्ण की उम्मीद की जा सकती है। एशिया में ईरान और दक्षिण कोरिया जैसे देश भारतीय टीमों को कड़ी चुनौतियां दे सकती हैं। इसलिए कबड्डी में भारत के लिए चुनौती केवल स्वर्ण जीतना ही नहीं है बल्कि अपनी बादशाहत बरकरार रखना भी है। इस बार क्रिकेट को एशियन गेम में शामिल किया गया है और भारत के लिए पदक का एक नया रास्ता खुल गया है। इससे पहले हांगझाओ में भारत की पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीते थे। आईची नगायो में भारत दोनों वर्गों में अपना किताब बचाने के इरादे से उतरेगा। क्रिकेट में भारत के पास खिलाड़ियों की बड़ी संख्या और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। यही वजह है कि क्रिकेट को भारत में सबसे मजबूत स्वर्ण पदक दावेदार माना जा रहा है। अगर पुरुष और महिला दोनों टीमें स्वर्ण जीतती हैं, तो भारत के खाते में 2 और महत्वपूर्ण स्वर्ण जुड़ जाएंगे। बैडमिंटन में सात्विक चिराग सहित युवा खिलाड़ियों पर सबकी नजर रहेगी। बैडमिंटन में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त प्रगति की है। पुरुष युगल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग रेड्डी की जोड़ी भारत के सबसे बड़ी उम्मीद में शामिल है। इन दोनों खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर भारत को गौरव दिलाया है। इसके अलावा पुरुष और महिला एकल तथा टीम स्पर्धाओं में भी भारत पदक की उम्मीद कर सकता है। दूसरी तरफ पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी महत्वपूर्ण रहेगा। बैडमिंटन में भारत यदि एक से अधिक पदक जीतता है तो उसके अभियान को काफी मजबूती मिलेगी। कुश्ती में भी भारत को काफी उम्मीद है। कुश्ती भारत के पारंपरिक पदक खेलों में शामिल है। इस बार भारतीय पहलवानों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। एशिया में जापान, ईरान और मध्य एशिया देशों में पहलवान बेहद मजबूत होते हैं, इसलिए भारतीय पहलवानों को तकनीक, ताकत, मानसिक मजबूती तीनों मोर्चों पर खुद को साबित करना पड़ेगा। भारत को उम्मीद होगी कि युवा पहलवान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने प्रदर्शन से एक नया अध्याय लिखे। जहां तक मुक्केबाजी का सवाल है, उसमें भारतीय खिलाड़ियों ने हाल के वर्ष में शानदार प्रदर्शन किया है। महिला मुक्केबाजी में लवलीना सहित कई खिलाड़ी पर निगाह रहेगी। दूसरी ओर तीरंदाजी में भारत की स्थिति काफी मजबूत रही है। खासकर कंपाउंड तीरंदाजी में भारत विश्व की मजबूत टीमों में शामिल है। व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में भारत कई पदक अपने नाम कर सका है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एशियन गेम में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश बेहद मजबूत हैं। चीन लगातार हर वर्ष एशियन गेम्स में पदक तालिका पे शीर्ष पर रहता है। जापान मेजबान देश है और उसे घरेलू परिस्थितियों का लाभ मिलेगा। ऐसे में भारत के लिए पदक तालिका के ऊपर जाना आसान नहीं होगा। लेकिन भारत की खासियत ये है कि अब वह केवल कुछ खेलों पर निर्भर नहीं रहा है। शूटिंग से लेकर एथलेटिक्स तक, हॉकी से लेकर क्रिकेट तक, कुश्ती से लेकर तीरंदाजी तक, हर खेल में भारत ने अपने झंडे गाड़े हैं और हर खेल में वह पदक लाया है। क्या भारत हांगझाओ के 107 पदकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकता है? सभी को इस बात की उम्मीद है कि भारत के पास 100 से अधिक पदक जीतने की मजबूत संभावना है। लेकिन अगर शूटिंग उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करती है, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण मिलते हैं, क्रिकेट की दोनों टीमें किताब जीतती हैं और एथलेटिक्स में कुश्ती, तीरंदाजी, मुक्केबाजी तथा बैडमिंटन के अपेक्षित पदक मिलते हैं, तो भारत 107 के आंकड़े को पार कर सकता है। लेकिन इसके लिए खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि एशियन गेम में पदक तालिका केवल स्वर्ण पदक से तय नहीं होती है। कई बार एक कांस्य पदक भी टीम को चौथे स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंचा सकता है। इसलिए भारत के लिए हर मुकाबला महत्वपूर्ण होगा। एशियन गेम 2026 को केवल पदकों की प्रतियोगिता के रूप में नहीं देखना चाहिए, यह लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 की तैयारी का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। युवा खिलाड़ी यहाँ बड़े अंतर्राष्ट्रीय दबाव में खेलने का अनुभव हासिल करेंगे। अनुभवी खिलाड़ियों को अपनी निरंतरता साबित करने का मौका मिलेगा और भारतीय खेल व्यवस्था को ये देखने का अवसर मिलेगा कि प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, फिटनेस और आधुनिक सुविधाओं में किए गए निवेश का परिणाम किस रूप से सामने आया है। तो श्रोताओं, आईची नगायो में भारत दल के सामने लक्ष्य स्पष्ट है। हांगझाओ के 107 पदकों के आगे निकलना नीरज चोपड़ा की अनुपस्थिति भारत के अभियान को एक बड़ा झटके के रूप में है, लेकिन भारतीय टीम के पास उम्मीदों की कमी नहीं है। भारत का शूटिंग में निशाना पदक पर होगा,
हॉकी में गोल्ड की तलाश होगी और कबड्डी में भाषाहत बचाने की चुनौती होगी। क्रिकेट

दोनों स्वर्ण बचाने होंगे। बैडमिंटन, कुश्ती, मुक्केबाजी और तीरंदाजी में नए सितारे चमक सकते हैं और एथलेटिक्स में भारत नीरज की अनुपस्थिति के बावजूद नए चैंपियन तलाशेगा। कुल मिलाकर एशियन गेम 2026 भारत के लिए केवल पदकों की संख्या बढ़ाने का अवसर नहीं है, बल्कि दुनिया को ये बताने का भी मंच है कि भारतीय खेल अब एक नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। आइए हम अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं और उम्मीद करें कि जापान की धरती पर तिरंगा सबसे ज्यादा बार पोडियम पर हमारा ही लहराएगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।

0: अभी आपने एशियन गेम्स 2026 विषय पर यह वार्ता सुनी। वार्ताकार थी डॉली सक्सेना। खेलों से जुड़ी हुई गतिविधियों की जानकारी के लिए सुनना ना भूले कार्यक्रम खेल जगत। होगी मुलाकात खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियों से।
1: 19 मई 2016 को मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे अपने देश का झंडा फहराया था।
2: जब मेरा गोल्ड मेडल आया तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
3: फ्लैग अपने शोल्डर्स पे लेना वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेरे लिए तो एक ड्रीम जैसे ही था।
4: मैंने बहुत छोटी एज से सेल करना स्टार्ट कर दिया था।
5: तो मुश्किल था वो सफर, पर उसके बाद से मैंने जो सही हुआ, फिर उसके बाद से जो मैंने पिकअप पकड़ा था, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
0: होगी खेलों से जुड़े हर पहलू पर बारीक नजर, तो जरूर सुने कार्यक्रम खेल जगत प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:30 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
6: कार्यक्रम खेल जगत अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
7: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार 6:00 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
6: श्रोताओं, आपके लिए एक विशेष सूचना। भोपाल शहर में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन द्वारा मकान मालिकों, किराएदारों एवं विभिन्न संस्थाओं के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। मकान मालिकों द्वारा मकान या उसके किसी भाग को किराए पर दिए जाने पर किराएदार का विवरण निर्धारित प्रपत्र में 1 सप्ताह के भीतर संबंधित थाने अथवा मध्य प्रदेश पुलिस सिटीजन पोर्टल पर देना अनिवार्य है। पूर्व से रह रहे किराएदारों एवं घरेलू नौकरों का विवरण भी 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराया जाना है। घरेलू नौकर, होटल, लॉज, धर्मशाला, रिजॉर्ट में ठहरने वाले व्यक्ति, छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं तथा निर्माण कार्य में लगे मजदूरों, कारीगरों का विवरण भी निर्धारित प्रपत्र में संबंधित थाने को उपलब्ध कराया जाना है। सभी संबंधित नागरिकों एवं संस्थानों से पुलिस प्रशासन द्वारा निर्देशों को पालन करने की अपील की जाती है। सूचना समाप्त हुई।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 9:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला खत हमें प्राप्त हुआ है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। अभिजीत गावणकर राही, श्रीमती सरिता गावणकर, प्रिंस एकांश गावणकर। बदलापुर मुंबई से खत लिखते हैं सिद्धांत गवहाणकर, प्रणीता गवहाणकर, अर्जुन गवहाणकर, टुकटुक। आकार

इट्स बहादुरा नागपुर से इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है वैशाली शैलेश गवहाणकर, सुमित गवहाणकर और कुमारी ध्वनि गवहाणकर परी ने। श्रोताओं, साथ में ऐसी गीत के लिए हमें अगला खत प्राप्त हुआ है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। लिखने वाले हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। और कालका से खत लिखा है शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज ने। तो आइए श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं यह गीत फिल्म इलाका से। आवाजें किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की है। अनजान के बोल, नदीम श्रवण का संदीप संगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून इन किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जिसके लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की। साथ ही इसी गीत के लिए अगला खत हमें मिला है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और महराज जहां का। तो आइए आपकी फरमाइश पर सुनते हैं हम ये गीत जिसे शब्द दिए हैं आनंद बख्शी ने। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु।

मुकेश की आवाज में यह गीत आप सुन रहे थे फिल्म आनंद से। गुलजार की शब्द रचना और धुन बनाई सलील चौधरी ने। श्रोताओं, इस गीत के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई थी बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर की। साथ ही इस गीत के लिए अगला खत हमें प्राप्त हुआ था मोहम्मद हलवाईयान, शेरकोट जिला बिजनौर से, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर का। चौथा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अगला खत हम शामिल कर रहे हैं, जिसे हमें भेजा है धामणी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती, संदेश, आदेश, किरण, प्रज्वल और उन्नत डेरे ने। साथ ही इस गीत के लिए अगला खत हमें प्राप्त हुआ है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरव, शाइना और निवान शर्मा का। तो आइए इन श्रोताओं की पसंद का गीत सुनते हैं फिल्म हमराज से। महेंद्र कपूर की आवाज, साहिर लुधियानवी के बोल और रवि का संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अगला खत हमें प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा का। साथ ही इसी गीत के लिए अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की। साथ ही चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार और जयकिशन साहू की। तो आइए इन श्रोताओं की पसंद पे गीत सुनते हैं, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने, राजेंद्र कृष्ण के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म है धरती।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे मजरू का लिखा यह गीत फिल्म जहरीला इंसान से, जिसको संगीतबद्ध किया था आरडी बर्मन ने। श्रोताओं, इस गीत के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई थी गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और कान्हा जी आर्य की। साथ ही इसी गीत के लिए अगला खत हमें मिला था शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी का। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें खत भेजा है सिंहपुर बेड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा ने। साथ ही अगली फरमाइश इसी गीत के लिए हमें प्राप्त हुई है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया की। इन श्रोताओं की पसंद पे गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में कमर जलालाबादी का लिखा गीत, जिसे संगीत दिया है सोनिक ओमी ने। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म महुआ से।

0: फिल्म महुआ के इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, आप भी हमें खत लिखकर आपके फरमाइशी और पसंदीदा गीत सुन सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक, श्यामला हिल्स, आकाशवाणी भोपाल। भोपाल का एसटीडी कोड है 462002। श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए आपके रेडियो साथी ऋषभ आहूजा को। नमस्कार। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारी विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा, जिसका विषय है 25 वर्ष जनहित से जन विश्वास तक।
1: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के दूसरे संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा 25 वर्ष जनहित से जन विश्वास तक। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर जनसेवा के 25 वर्ष, ये केवल एक समय अवधि नहीं है बल्कि ये एक यात्रा है अनुभवों की, चुनौतियों की और प्रयासों की। और ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें शासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और जन केंद्रित बनाया गया है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ ये सोच नहीं थी, लेकिन आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या पहल की गई थी, बल्कि ये है कि इसके पीछे प्रशासनिक सोच क्या रही और जमीनी स्तर पर इन परियोजनाओं को, इन योजनाओं को पूरा करने के लिए क्या पहल की गई थी। और इन सब पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज हैं नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। अमिताभ जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, 25 वर्ष बहुत ही लंबा सफर होता है किसी भी नेता के लिए, इतने साल पूरा करना। तो अगर आप देखें इस दौरान शासन में और जवाबदेही में किस तरह का बदलाव आया, क्या सिर्फ ये टेक्नोलॉजी तक सीमित रहा या इसमें जो जवाबदेही है वो भी बढ़ी?
3: मेरी पहली मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री से हुई जब ये मुख्यमंत्री थे। मैं उस समय दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य अधिकारी था और मैं सारे चीफ मिनिस्टर्स के पास जा रहा था कि नए शहर बनाने के लिए जमीन करीब 150 किलोमीटर एक शहर बनाने के लिए चाहिए थी, तो सारे मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। और जब मैं गुजरात गया तो चीफ मिनिस्टर से जब मिला तो उन्होंने कहा कितनी जमीन चाहिए, तो मैंने कहा कि साहब करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए। तो उन्होंने कहा 150 की बात मत करो मेरे से, मैं तुमको 750 स्क्वायर किलोमीटर देता हूँ। तुम्हें बनाना है नया शहर तो जो कि आगे चल के सिंगापुर से भी अच्छा एक शहर बने उस तरह का। तो इस तरह धुलेरा शहर की शुरुआत वहां से हुई, फिर उसकी मास्टर प्लानिंग कराई। तो लगातार मैं गुजरात जाता रहा और मैं उसके बाद मैंने वाइब्रेंट गुजरात में भी 2 साल भाग लिया। मुझे ये लगा कि चीफ मिनिस्टर मोदी साहब बहुत विजनरी हैं और आगे की सोचते हैं। फिर उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन के आया, उस समय मैं सचिव था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन का, तो मेक इन इंडिया किया, स्टार्टअप इंडिया किया। फिर बाद में जब नीति आयोग में सीईओ बना तो फिर उस समय ये सारा डिजिटाइजेशन किया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम किया। और मेरे विचार से ये हमेशा लगा मुझे कि एक तो ये अगले 30 वर्ष आगे की सोचते हैं।
2: और जैसा आपने उदाहरण दिया कि आप इतनी जगह गए तो उन्होंने आपको सुना। और प्रधानमंत्री मोदी की खासियत ये है कि जब उनके पास कोई आता है वे उनको सुनते हैं, समझते हैं और फिर कोई प्रतिक्रिया देते हैं और विजनरी हैं, दूर की सोचते हैं। सरकार समय समय पर योजनाओं और नीतियों की समीक्षा के लिए चिंतन शिविर आयोजित करती है। आइए सुनते हैं इस संबंध में एक रिपोर्ट।
1: सरकारी योजनाओं और नीतियों को लागू करने में अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
4: इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मिशन कर्मयोगी शुरू किया। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता और कौशल को लगातार मजबूत करना है। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग यानी मिशन कर्मयोगी को सितंबर 2020 में मंजूरी दी गई थी। इसका एक प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्यवस्था में रूल बेस्ड से रोल बेस्ड तरीके की ओर बढ़ना है, यानी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी और भूमिका के अनुसार जरूरी क्षमताएं विकसित कर सकें। मिशन कर्मयोगी का डिजिटल प्लेटफॉर्म है iGOT कर्मयोगी। इसके जरिए सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण और सीखने के अवसर मिलते हैं। अगस्त 2026 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार iGOT कर्मयोगी पर 1,70,00,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और प्लेटफॉर्म पर 5,600 से ज्यादा कोर्स उपलब्ध हैं। ये कोर्स डोमेन, फंक्शनल और बिहेवियर क्षमताओं से जुड़े हैं। प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कोर्स 23 भाषाओं में हैं, जिनमें हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं। अब तक iGOT पर 14,42,00,000 से ज्यादा कोर्स कम्प्लीशन दर्ज किया जा चुका है। प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों से जुड़े 218 कोर्स भी उपलब्ध हैं। सरकार के अनुसार केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग तथा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश iGOT प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं। मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी किए गए हैं।
2: प्रफुल्ल जी, प्रधानमंत्री मोदी विजनरी हैं, यही सोच उनको यहाँ तक लेकर आई है। 25 वर्ष पूरे किए हैं और इसमें उन्होंने जन भागीदारी को सबसे बड़ा जो है अपना एक एस्पेक्ट बनाया है।
5: हम 25 वर्ष किसी एग्जीक्यूटिव रोल में चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वो रोल तो देखते हैं, उसके पीछे 15 वर्ष उनकी संगठनात्मक यात्रा और उससे पूर्व 15 वर्ष सामाजिक काम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो जो जमीनी वास्तविकता है वो स्वयं नीचे से आने के कारण उनको उसकी बहुत अच्छी समझ, लेकिन उसके साथ साथ उनको टेक्नोलॉजी और बदलते हुई दुनिया की भी बहुत अच्छी समझ, तो उस कारण से पार्टिसिपेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन इनका गवर्नेंस में उन्होंने बहुत प्रयोग किया। मतलब जब चीफ मिनिस्टर बने तो स्वागत जैसी उन्होंने ये की, मुझे ध्यान में जब 20 वर्ष पूरे हुए तो गुजरात जैसे राज्य में लोग ये कहते थे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्रीवेंसेस लेकर कौन जाएगा, बट दैट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल। और जब वो सेंटर में लेकर आए तो माईगोव के प्लेटफॉर्म के द्वारा उसी को और भी नए आयाम उसमें जोड़े, तो केवल ग्रीवेंसेस नहीं, आप आइडियाज भी शेयर कर सकते हो। तो पार्टिसिपेशन और उसका स्केल, प्रधानमंत्री मोदी जी की खासियत यह है कि वो, अभी जैसे अमिताभ जी ने बताया कि आप 150 क्यों मांग रहे हो, 750, तो वो बड़े स्केल पर सोचते हैं। तो केवल दूर की नहीं, उसका स्केल, उसका स्पीड और उसका ग्राउंड पर इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसकी पूरी सोच रख के फिर वो उसको करते हैं। और इसी कारण से गवर्नेंस के जो पैरामीटर्स माने जाते हैं, आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की, जवाबदेही या ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, फिर उसके साथ साथ डिलीवरी, बार बार वो इस पर जोर देते हैं कि गवर्नेंस जो है वो डिलीवरी पर सबसे खासियत यदि किसी इसमें रही है, तो आप किसी भी पावर सेक्टर से लेकर किसी भी स्कीम को आप एक डैशबोर्ड पर, उनकी सीएम थे तब भी वो खासियत थी, आज भी वो खासियत है, डैशबोर्ड पर आप नंबर्स देख सकते हो एग्जैक्टली क्या डिलीवर हुआ है, कितना डिलीवर हुआ है, और उसके साथ साथ फिर पार्टिसिपेट। तो ये गवर्नेंस के चारों पैरामीटर्स किस तरीके से कवर होंगे और वो भी भारत की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए,
2: जी
5: ये उनकी खासियत है। मुझे लगता है कि इसी कारण से ये 25 साल जो है एक एग्जीक्यूटिव के रूप में उनका रहना, ये एक अलग गवर्नेंस के मॉडल को प्रेजेंट करता है, जो गुजरात मॉडल पहले जाना गया, अब वो भारत के विकास का या विकसित भारत की तरफ जाने का मॉडल के रूप में देखा जाता है।
2: बिल्कुल, कहते हैं जो सीमित सोच के साथ आगे बढ़ता है कोई नेता तो उसके परिणाम भी सीमित होते हैं, लेकिन जो बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसके जो परिणाम है उल्लेखनीय आते हैं, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध किया है अपने कार्यों के जरिए। योजनाओं और नीतियों को लागू करने में कर्मचारियों की विशेष भूमिका रहती है, इसके लिए शुरू किया गया iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। इस संबंध में एक खास रिपोर्ट सुनते हैं।
6: सरकार में बेहतर कामकाज के लिए जरूरी है कि समय समय पर योजनाओं और नीतियों की समीक्षा की जाए, उनकी चुनौतियों को समझा जाए और आगे की रणनीति तय की जाए। इसी उद्देश्य से अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में चिंतन शिविर आयोजित किए जाते हैं। चिंतन शिविर में संबंधित मंत्रालय के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और दूसरे हितधारक एक साथ बैठकर प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसमें योजनाओं की प्रगति, उनमें आने वाली दिक्कतों और आगे की प्राथमिकताओं पर विचार किया जाता है। हाल के वर्षों में कई मंत्रालयों ने ऐसे चिंतन शिविर आयोजित किए हैं। उदाहरण के लिए फरवरी 2026 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बिहार के राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें केंद्र और राज्य के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। इस चिंतन शिविर में बुनियादी ढांचे, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, वक्फ प्रबंधन और हज प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य योजनाओं के मौजूद कमियों की पहचान करना, अलग अलग क्षेत्रों की अच्छी कार्य प्रणालियों को साझा करना और आगे के लिए ठोस सुझाव तैयार करना था। इसी तरह अप्रैल 2026 में आयुष मंत्रालय ने भी 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया। इसमें नीति, शोध, सेवा, वितरण, डिजिटल व्यवस्था, क्षमता निर्माण और जनसंपर्क जैसे विषयों पर चर्चा हुई। शिविर के अंत में समयबद्ध और कार्रवाई योग्य रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया। यानी चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य

0: है समीक्षा, संवाद और आगे की कार्य योजना।
1: भागीदारी की बात की जाए तो एक उनका प्लेटफॉर्म है प्रगति, तो उसमें उन्होंने सबको एक साथ लाने की कोशिश की है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें राज्यों की और केंद्र की जो परियोजना है उनकी समीक्षा की जाती है, और उसमें

0: तो लास्ट माइल पे प्रॉब्लम आती है और ये सब फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जिसको कहते हैं टाइम एंड कॉस्ट ओवररन होते हैं. 2014 से पहले देखें तो हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट 1.5 साल में कंप्लीट होना था वो 10-12 साल ले रहा था. तो प्रधानमंत्री जी का जो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट अप्रोच थी, प्रगति क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद मीटिंग लूंगा. तो सारे सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरी स्टेट्स के, तो एक तो ये फेडरल एस्पेक्ट आ गया कि आपने चीफ सेक्रेटरीज को इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि भारत सरकार की जो स्कीमें हैं वो सारे स्टेट्स में हैं, कहीं जमीन नहीं मिल रही है, कहीं एजिटेशन चल रहा है, कोई कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसमें जब वो रिव्यू लेते हैं तो उसके पहले सारे ऑफिसर्स अपना रिव्यू लेने लगते हैं. उसमें आधी से ज्यादा 80% तो चैलेंजेस जो है वो वहीं स्कीम्स की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके पहले, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी रिव्यू लेने जा रहे हैं उसके पहले सारी रिव्यूज होती हैं, तो उसमें ही सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं. जो 20-25 क्योंकि वो डेट फिक्स कर देते हैं कि इस दिन मैं रिव्यू लूंगा, तो जो स्टेट का जो डीएम है वो भी जाता है फील्ड में, चीफ सेक्रेटरी है जो वो भी जाता है, यहाँ का सेक्रेटरी उनके पीछे पड़ता है, और फिर उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहते हैं, स्टेट्स के लोग भी रहते हैं, तो सारे ऑफिसर्स मिलके फिर वो काम करते हैं और उसकी वजह से सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स धड़ाधड़ अप्रूवल हुए, धड़ाधड़ इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जो लास्ट मिनट प्रॉब्लम हुई उसमें इंप्रूवमेंट आया. तो इसमें बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया प्रोजेक्ट डिलीवरी में, और प्रोजेक्ट डिलीवरी के साथ साथ कई नई चीजें हुई, जैसे गति शक्ति प्रोग्राम आया जिसमें करीब 523 के उसके नीचे आई, तो सब प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, उसके कॉन्सेप्चुलाइजेशन में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, टेक्नोलॉजी के उपयोग में, ये सारी चर्चा करने के बाद पूरे देश में एक बदलाव आया इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी में. और यही कारण है हमें समझना जरूरी है कि हमारी जनसंख्या के लिए भारत में जो बदलाव आया है कि हमने देखिए ना, हम ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से ज्यादा तो हमने घर बना दिए हैं लोगों के लिए, जो ब्राजील की जनसंख्या उससे ज्यादा तो हमने पानी कनेक्शन दे दिए यहाँ, कनाडा की जो जनसंख्या उससे ज्यादा तो हमने बिजली कनेक्शन दे दिए यहाँ पर, और हमने करीब जितनी सड़कें थी उससे करीब 95,000 ज्यादा सड़कें बनाई यहाँ. तो सड़क हो, घर हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, इसका जो फायदा मिला है भारत की जनसंख्या लास्ट माइल और जो साधारण व्यक्ति है उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया उसकी.
1: बिल्कुल,
0: तो ये हुआ है.
1: बिल्कुल, और जैसे हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद समीक्षा करते हैं और उनको एक टारगेटेड चाहिए, इस टाइम तक ही पूरा होना है. और अक्सर लोग ऐसा भी कहते हैं, आलोचना भी होती है कि प्रधानमंत्री छोटी से छोटी परियोजना के लिए भी खुद जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की भी एक सोच है कि जब वे खुद जाते हैं वो छोटी परियोजना भी बहुत बड़ी होती है, और वो छोटी परियोजना कैसे अंतिम व्यक्ति तक उसको लाभ पहुंचाने वाली है ये सिर्फ शायद वे ही जानते हैं. तो इस सोच में और इस जो अवधारणा में वो किस तरह से बदलाव आप देखते हैं प्रफुल्ल जी?
2: मैं प्रधानमंत्री जी का और एक एस्पेक्ट पर ध्यान दूंगा जिससे आपको ये ध्यान में आएगा जो आपने कहा परियोजना के बारे में वो कैसा सोचते हैं. आप प्रगति का देख लीजिए, आप नीति का देख लीजिए, टर्मिनोलॉजीज सारी एब्रिवेशन में है
1: जी,
2: लेकिन उन शब्दों का अर्थ भारत की सांस्कृतिक धरातल पर है.
1: बिल्कुल,
2: वैश्विक सोच, वैश्विक दृष्टि रहते हुए भी भारत की रूट्स के साथ कैसे जुड़े रहना, और वो यदि दृष्टि रही तो गवर्नेंस में उसका क्या रिफ्लेक्शन होता है. जैसे पहली बार आपको ध्यान में होगा जब लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने शौचालयों की बात की थी, तो सार्वजनिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बहुत लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था
1: जी,
2: कि ये भी कोई मतलब 15 अगस्त के भाषण में बोलने का विषय है
1: जी, जी.
2: लेकिन 70 साल बाद हमको इस विषय पर बोलना पड़ रहा है, ये दिखाता है ग्राउंड की वास्तविकता क्या है और उससे जुड़े हुए डायमेंशन कितने.
1: बिल्कुल,
2: मतलब वो डिग्निटी के डायमेंशन है, सुरक्षा के डायमेंशन है, हेल्थ के डायमेंशंस है, इकोनॉमिक डायमेंशंस है, या मान लीजिए कोई उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम है. तो इसमें जो बड़ा ये लगता है ना कि आपने जो पूछा कि योजना कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है, उसके पीछे की सोच जो है वो यदि ठीक है तो वो डिलीवर हो रही या नहीं. मतलब बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है जिनको तो 30-35-35-37 साल बाद कोई कोई डैम्स, कोई कोई प्रोजेक्ट्स तो प्रधानमंत्री जी ने उसको राष्ट्र को समर्पित किया है.
1: बिल्कुल,
2: तो इसमें हुआ क्या है, सबसे बड़ा बदलाव जो मैं देखता हूं कि उन्होंने महिला को और महिला के साथ परिवार को योजनाओं के संदर्भ में केंद्र में लाया.
1: बिल्कुल,
2: और जो इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच था किसी भी स्कीम को

0: सोचने का, वो परिवार केंद्रित हो गया। भारत की दृष्टि केवल विश्व के लिए परिवार की नहीं, वो परिवार संकल्पना जब विकसित होती है तब वो विश्व तक पहुंचती है। लेकिन उसके लिए पहले आप आवास योजना में देख लीजिए, आप किसी भी बेनिफिशियरी स्कीम्स के बारे में देख लीजिए, महिला आती है तो एडिशनल बेनिफिट है, और महिला के साथ आती है तो पूरा परिवार आता है। तो मुझे लगता है कि हमको केवल, मतलब अमिताभ जी इंफ्रास्ट्रक्चरल स्कीम्स के बारे में ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मैं जब पत्रकार के नाते सोशल और उसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशंस के बारे में सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि इंक्लूसिविटी का एक नया अप्रोच इस गवर्नेंस मॉडल ने दिया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी छोटी से छोटी योजनाओं को भी माइन्यूट मॉनिटरिंग भी करते हैं, और उसकी डिलीवरी होती है तो उसके साथ साथ उस समाज के कौन से घटकों का उसको सीधा बेनिफिट मिलने वाला है उसके साथ कनेक्ट भी करते हैं। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि वो योजना कोई उनके लिए छोटी बड़ी नहीं है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट।
1: बिल्कुल, जैसे शौचालय की आपने बात की, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वे स्वयं जाकर लोगों की परेशानियां दिक्कत देखते थे, और उन्होंने देखा कि महिलाओं को आज भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने शौचालय मतलब बनाने की मुहिम शुरू की, जो जब वे प्रधानमंत्री बने तो राष्ट्रीय स्तर तक आ गई। तो उनका जो सोचने का तरीका है वे आउटकम बेस्ड गवर्नेंस है कि उसके परिणाम दिखने चाहिए, सिर्फ कागजों पर नहीं रहने चाहिए। तो आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे अमिताभ जी, की आउटकम बेस्ड गवर्नेंस पे किस तरह से आज काम हुआ?
2: एक कैबिनेट मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे बुलाया बड़े प्यार से और कहा कि चाहूंगा कि आप प्रोजेक्ट तैयार करके आइए, मुझे ये जो सबसे पिछड़े हुए जिले हैं 115 उनमें बदलाव लाना है
1: जी।
2: तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की और जाकर प्रेजेंटेशन किए एक बार दो बार, और उसके बाद ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिलों का प्रोग्राम, ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको बैकवर्ड मत बोलो, इसको एस्पिरेशनल बोलिए। और ये जो उन्होंने एक चीज और कही कि मैं इसमें पैसे नहीं दूंगा तुमको, तो इसमें बदलाव करके दिखाओ। उन्होंने हम लोग को चैलेंज किया कि मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा, तुम बिना पैसे के इसमें बदलाव लाओ। सारा आउटकम बेस्ड हम लोगों ने किया, हेल्थ आउटकम्स, एजुकेशन आउटकम, एग्रीकल्चरल आउटकम्स क्या होंगे उसको पहले डिफाइन, और उसके बाद हमने उन आउटकम्स के बेसिस इन सारे जिलों को चैलेंज किया, क्योंकि भी कई बार मीटिंग्स की। ये 115 जिलों में केवल आउटकम बेस्ड कंपटीशन किया, और हर महीने हम इसकी रैंकिंग निकालते थे कि कौन सा जिला आगे गया, कौन सा जिला पीछे, और उसकी रैंकिंग और कितना आगे गया और किस आउटकम पे आगे गया, किस आउटकम में पीछे रह गया। तो वहां की जो जनता है उसको मालूम होना चाहिए, वहां का जो कलेक्टर है उसको मालूम होना चाहिए कि क्यों वो पीछे गया, क्यों आगे गया। और ये सारा का सारा हमने डैशबोर्ड पे रखा था और उसको हम पब्लिक में रिलीज करते थे, तो हर MLA को, हर MP को, हर चीफ मिनिस्टर को मालूम है कौन सा जिला आगे गया, कौन सा पीछे गया और क्यों गया। और इतने जोरों का कॉम्पिटिशन हुआ इसकी वजह से कि जो आकांक्षी जिले थे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, वो जो उस स्टेट्स के जो सबसे अच्छे जिले थे उनसे भी ज्यादा अच्छा करने लगे। तो ये आउटकम बेस्ड जो उनका ओरिएंटेशन है कि आप क्या फिजिकल अचीवमेंट करते हो, कितना पैसा खर्च करते हो, उस पे फिजिकल और फाइनेंशियल में मुझे नहीं जाना, तुम बदलाव करके दो
1: जी।
2: तो बदलाव वो लिटरेसी में इंप्रूवमेंट आया, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आया, कृषि उत्पादन में इंप्रूवमेंट आया, और वो केवल आउटकम बेस्ड सारा का सारा रहा। इसी तरह मैंने जब उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया हमने शुरू किया, तब देश में केवल 356 स्टार्टअप्स थे, आज आप देखिए देश में करीब 3,00,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। और इसकी वजह से जियोस्पेशियल सेक्टर खुला, डिजिटल सेक्टर खुला, स्पेस सेक्टर खुला, ड्रोन सेक्टर खुला, डिफेंस सेक्टर खुला, ये सारे के सारे सेक्टर्स खुलते चले गए और हर सेक्टर में स्टार्टअप्स ने बदलाव किया। और आजकल जितना इस देश में जितनी तरक्की हो रही है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो सारे स्टार्टअप्स की वजह से हो। तो मेरे विचार से उनकी जो विचारधारा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, टेक्नोलॉजी को उपयोग करके देश को आगे ले जाइए। इसी तरह उनका जो विश्वास है कि युवा वर्ग में, कि युवा वर्ग ही बदलाव ला सकता है, ये स्टेटस को बड़े लोग नहीं कर पाएंगे, ये आज का युवा वर्ग कर पाएगा। मैं अब इंडिया में आप इंश्योरेंस हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रेडिट हो, फास्ट पेमेंट हो, ये सबका सब लोग मोबाइल से करते हैं, ये किसी और देश में नहीं है। तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने कहा कि जो भारत ने 7 वर्ष में किया है वो 50 वर्ष लगते, जो 7 वर्ष में किया है, ये डिजिटल लीप फ्रॉगिंग हुई है।
1: बिल्कुल, तो ये जो नजरिया है मतलब सोचने का, आप जैसे बैकवर्ड जिलों की बात की तो हम कहते थे पहले कि ये पिछड़े जिले हैं, लेकिन नहीं, आप किसी चीज को अगर पॉजिटिव वे में सोच

0: होती है तो उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं। और खासकर ऐसा सुना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी कोई बैठक लेते थे तो उसमें जब उनसे समस्याएं किसी परियोजना को लेकर बताई जाती थी तो ये नहीं पूछते थे ये मुश्किल क्यों है, वे कहते थे इसको पूरा करने के लिए क्या जरूरी है। तो सिर्फ नजरिए का फर्क है। आप क्या सोचते हैं कि इस नजरिए ने भारत की तस्वीर किस तरह से बदली है? केतकर जी,
1: मानव के सारे आचरण में तो मन केंद्र में है ना। अब ब्यूरोक्रेट साथ में बैठे इसलिए कहता हूँ, स्टील फ्रेम और ब्यूरोक्रेसी और नहीं होता इस सर कहने वाली, उनको उन्होंने कर्मयोगी बना दिया
0: जी।
1: अब कहने के लिए तो ये नॉमिनक्लेचर बदला है, बैकवर्ड का आकांक्षी जिले हो गया। पर्सन हम बोलते हुए बोलते थे कि नहीं नहीं ये तो हैंडीकैप है,
0: नहीं
1: वो अब दिव्यांग हो गया, वो स्पेशल एबिलिटी उस शब्द में आ गई ना। तो आपका देखने का, बात करने का, उस व्यक्ति के प्रति केवल उसकी डिग्निटी का और उसके साथ साथ उसके बारे में फिर परियोजनाएं जब बनेगी तो उस डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए बनेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी की पूरी सोच में ये जो मूलतः उसके पीछे मानसिक दृष्टि को बदलना, नजरिया तो केवल आपका देखने का होता है लेकिन उसके पीछे के मन को बदलना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। प्रधानमंत्री जी गवर्नेंस में मूलतः गवर्नेंस के जितने भी सारे एक्टर्स हैं इंक्लूडिंग पीपल, मतलब जो उसमें स्टेक होल्डर्स जिनको कहा जाता है, तो उनका आप देख लीजिए सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सारे लैंड रिकॉर्ड्स, एग्रीकल्चर, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स तो स्टेट्स के पास है या तो फिर कंकरेंट लिस्ट में है। तो आपने योजना कितनी भी अच्छी बना ली हो यदि इसमें सहभागिता नहीं है और उसके लिए फिर अलग तरीके का मुख्यमंत्रियों के साथ चिंतन भी शुरू हुआ
0: जी, जी।
1: तो वो भी एक अलग से ये थी, तो वो केवल फेडरलिज्म को लेकर हम कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस एनुअली ले रहे ये नहीं है, ये चिंतन है
0: बिल्कुल।
1: हम पूरे भारत को लेकर, और उन्होंने एक उसमें कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्रिएट किया जो कॉन्फ्लिक्चुअल था
0: जी।
1: तो फेडरलिज्म का अर्थ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, सेपरेटिज्म नहीं होता है, हम अलग है ये भावना नहीं होती है, हम मिलकर प्रतिस्पर्धा के साथ भी सहयोग के साथ भी मिलकर क्या कर सकते हैं अच्छा, एक दूसरे के साथ स्पर्धा भी करेंगे लेकिन एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे, ये भाव मन में जगाना, मुझे लगता है ये मन परिवर्तन होता है तो गवर्नेंस में वो आपने जो पूछा तो आउटकम ओरिएंटेड रिजल्ट्स अपने आप आते हैं।
0: ये हेल्दी कंपटीशन की बात होती है और इसी सोच के साथ बना था नीति आयोग जिसमें सहकारी संघवाद को प्रमुखता से रखा गया। तो आप नीति आयोग के पूर्व सीईओ रहे हैं अमिताभ जी, आपने क्या चीजें इसमें देखी और क्या परिवर्तन रहा, क्योंकि उसमें राज्य और केंद्र मिलकर परियोजनाओं पर काम करते थे।
2: तो सबसे पहला जब ये माननीय प्रधानमंत्री बने 2014 में तो सबसे पहला प्रेजेंटेशन मेरा ही था और भारत की रैंकिंग वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 148 रैंक, तो उस पे प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि आप इसको लग के भारत की रैंकिंग को ठीक करिए पहले। तो हम लोग लगे बहुत, क्योंकि गवर्नमेंट क्या होता है, हर डिपार्टमेंट साइलो में काम करता है, वो सोचता है कि मैं ही मालिक हूं इसका और ये पोजीशन इंप्रूव नहीं करेगी जब तक कि हम सब मिलके काम नहीं करते। तो फाइनेंस हो, टैक्स हो, कस्टम्स हो, इनकम टैक्स हो, सबको मिलके काम करना आवश्यक। तो हम लोग लगे बहुत और जितनी कागजी कार्रवाई थी उसको हटाया क्योंकि सब डिजिटल करना आवश्यक था। तो जब ईपीएफओ के पास गए उन्होंने डिजिटल तो किया पर उन्होंने कहा कागजी कार्रवाई भी रखेंगे, पर ये क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद पीछे पड़े इसके तो सारे डिपार्टमेंट इसमें आगे बढ़े और उसकी वजह से भारत ने 2.5 साल के अंदर करीब 80 पोजीशन का जंप किया, किसी देश ने इतना नहीं। और हम, ये भारत एक अकेला देश है जिसने करीब 35,000 लॉ जिनको हटा दिया है और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से शुरू हुआ। पर उनका माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य था साधारण व्यक्ति के लिए ईज ऑफ लिविंग होना चाहिए और वही इसीलिए सारी कागजी कार्रवाई हटाई गई और सब चीज डिजिटाइज किया। तो ये उनका लक्ष्य हमेशा ये रहा है कि कैसे साधारण व्यक्ति की जिंदगी में कैसे उसको सरल किया जाए और ये बहुत मेरे विचार से जो भी वो विचारधारा रखते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि साधारण व्यक्ति की जिंदगी पर बदलाव
0: जी। बिल्कुल सही कहा। और प्रफुल्ल जी जैसे अब राज्यों और केंद्र की हम कह सकते हैं कि तनातनी कहीं ना कहीं किन्हीं मुद्दों पर रहती है, अब जैसे नीति आयोग में भी बात है तो वो संतुलन कायम करना क्योंकि उनकी मांगे अपनी होती हैं और उधर से जो आपूर्ति होती है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से देना है, तो वो समन्वय संतुलन जो कायम किया गया है इतने वर्षों में उसे आप
1: देते। उसमें नीति आयोग आने के कारण छोटी छोटी चीजों में भी एक बहुत बड़ा डायनेमिज्म, मतलब एनर्जी सेक्टर में देखिए हम हमारे कार्बन इमिशन को लेकर जो टारगेट्स थे वो 2030 के टारगेट्स हमने ऑलरेडी अचीव कर लिए, तो क्या हम अभी 5 साल का प्लान हमारा है इसलिए हम 2029 के चुनाव के बाद अभी अगला 5 साल का प्लान करेंगे, अभी कार्बन वाले इशू पर कुछ भी नहीं करें, ऐसे थोड़ी होता है। तो यू हैव टू थिंक डिफरेंटली नाउ, बिकॉज नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट। यूर आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बदल रही है, वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, पूरे पश्चिम एशिया में घमासान मचा हुआ है, ऐसे में आपको आपकी ऊर्जा आवश्यकता, सुरक्षा, इस सारे परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए करनी पड़ेगी। तो ऐसे में फिर नीति आयोग को स्पेशली अभी टास्क दिया गया है ऊर्जा वाले इस पर कि आपको रिपोर्ट बना के देन। तो उस समय मुझे ध्यान में है जब ये बदलाव हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। मुझे, क्योंकि मैं बहुत समय में थिंक टैंक्स में रहा हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई भारत का राजनेता कम से कम ये कह रहा है कि सरकार को भी थिंक टैंक की आवश्यकता है। पहले तो गुजरात ही अकेला था, आज लगभग हर स्टेट अपना इन्वेस्टर समिट करता है। तो ये सोच में ही बदलाव आया ना कि भाई वी आर इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट, ये प्रोजेक्ट करने में हर सरकार को, हर राज्य को इस पर गर्व है कि हम इन्वेस्टर फ्रेंडली है।
0: बिल्कुल, ऐसे सम्मेलन की बात हो ही रही है तो अभी हाल ही में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है और इससे पहले जो G20 था, मतलब इंटरनेशनल मीडिया ने तारीफ की है कि इस तरह का सम्मेलन आयोजित करना और खासकर जो ब्रिक्स में महाशक्तियों, भर्ती महाशक्तियों का एक साथ आना और ऐसे जो बिंदुओं पर आम सहमति बनाना, ये शायद आम बात नहीं थी।
2: तो देखिए, मैं G20 में प्रधानमंत्री जी का शेरपा रहा हूँ और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बड़े, उस समय बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स में देखिएगा तो रशिया और यूक्रेन का बड़ा, बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था। ये हालत थी कि उनके शेरपा लोग, यूरोप के जो शेरपा थे, रशिया के साथ बैठ के चाय पीने को भी तैयार नहीं थे और वो न चाइना के साथ बैठते थे न रशिया के साथ बैठते थे। और इस हालात में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको सबसे एग्रेसिव करो, सबसे एम्बिशियस करो और सबसे डायनेमिक करो। तो हम लोगों ने करीब, हमने कहा कि दिल्ली में करने से अच्छा है इसको सारे स्टेट्स में ले जाएं। तो हमने करीब 350 मीटिंग थी, हर स्टेट में गए। हर स्टेट में जाने के बाद सारे स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट हुआ, वहां के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सामान को हमने प्रमोट किया, वहां के आर्ट और कल्चर को हमने प्रमोट किया, हर स्टेट के कल्चर को हमने प्रमोट, और हर स्टेट ने रोल प्ले किया, हर यूनियन टेरिटरी ने रोल प्ले किया। उसके बावजूद जब भारत मंडपम में जब आखिरी सारे लीडर्स आए तो ये किसी ने नहीं सोचा था कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकलेगा और सारे इश्यूज पर लगाकर हमारा एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट निकला जो यूनाइटेड नेशंस नहीं कर पाया वो भारत ने करके दिया। और यही हुआ अभी हाल की जो ब्रिक्स समिट हुई, ब्रिक्स की समिट में न केवल रशिया यूक्रेन का इश्यू था, एक और इश्यू था बहुत बड़ा, ईरान था, यूएई था, सऊदी अरेबिया था, ये तो युद्ध में दो तरफ थे, आपस में लड़ रहे थे। भारत में बैठ के ईरान के राष्ट्रपति और यूएई के राष्ट्रपति ने मिलकर मीटिंग की। तो ये दिखाता है कि भारत जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में इसने बड़ी डायनेमिक रोल प्ले किया है लीडरशिप। और ये लीडरशिप, प्रधानमंत्री जी ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम ये करो या ये करो, उन्होंने कहा इसको आप एग्रेसिव कीजिए, इसको आप एम्बिशियस बनाइए और फिर उसके बाद वो सारी फ्रीडम आपको दे देते हैं। वो विश्वास पे बहुत बिलीव करते हैं, अगर विश्वास करते हैं फिर उसके बाद पूरा छोड़ देते हैं, फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि आप इसको करके दीजिए। कोई नेता आप पे विश्वास कर रहा हो तो आपकी तो जिम्मेदारी 100 गुना बढ़ जाती है, तो उसके लिए फिर सारी मेहनत करनी पड़ती है और उसको करके हम लोगों ने दिखाया। और पर उनकी जो विजन है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए।
0: बिल्कुल, वे जिम्मेदारी सौंपते हैं और जिम्मेदारी की अपेक्षा भी करते हैं, यही उनकी सोच है। और जैसे वसुधैव कुटुंबकम के जो मंत्र के साथ वे चलते हैं, चाहे वे भारत की बात करें या विश्व स्तर की बात करें, और यही हर सम्मेलन में और हर जगह प्रदर्शित होता है। केतकर जी,
1: बिल्कुल देखिए, जैसे G20 की बात चली, किसी ने ये नहीं सोचा था कि भारत एक प्रस्ताव लाएगा और अफ्रीकन यूनियन 21वें मेंबर के रूप में G20 में शामिल होगा। G20 तो एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के रूप में उभरा था, जो अर्थव्यवस्था में जो उथल पुथल होती है उसको डील करने के लिए। ब्रिक्स वैसे ही एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा। मतलब आप देखिए कि जिसको कहा जाता है कि आप यदि टेबल पर नहीं हो तो फिर आप मेनू में हो। भारत आज हर जगह टेबल पर है, G20 में है, G7 में इनवाइटेड मेंबर है, ब्रिक्स जैसे संस्थान में है, फिर इंडियन ओशन रिम में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बिग पावर्स के बीच में जो भी स्ट्रगल चलता रहेगा, हर कोई आज कहता है कि यदि भारत मध्यस्थता करता है और प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करते हैं तो शायद इसमें से रास्ता निकल सकता है। और ये केवल बोलने के लिए नहीं रह जाता कि युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, प्रधानमंत्री बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहते हैं। भारत की आज वो साख है कि आज वो यूक्रेन से भी बात कर सकते हैं और रशिया से भी बात कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वो चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन होते हुए निगोसिएशन भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं और फिर भी चाइनीज प्रेसिडेंट भारत में आके ब्रिक्स में शामिल होते हैं। तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी का लक्षण है, वो क्रेडिबिलिटी बड़ी है क्योंकि उसके पीछे लीडरशिप है। वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में दिखा, वो इंटरनेशनल जब योगा डे जब डिक्लेयर हुआ तो उस समय दिखा। तो ये सारा दिखाता है कि एक लीडर की विजन हो तो उस देश की भी विजन विश्व पटल पर बड़ी होती हुई दिखती है।
0: बिल्कुल। और अमिताभ जी, बस अंत में ये पूछना चाहती हूँ कि जनहित से जन विश्वास की जो यात्रा है वे आप किस तरह से देखते हैं?
2: देखिए, सबसे जरूरी है समझना कि प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, उन्होंने जो देश का विजन आगे रखा है कि भारत एक पूरा विकसित राष्ट्र बन के उभरे 2047। और इसका मतलब ये कि हम न केवल विकसित बने, न केवल हम 4 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन से अधिक कि हमारी जीडीपी बढ़े, उसका मतलब है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव आए। और इसका मतलब है कि हम 9-10% से हर साल बढ़ते जाएं आगे
0: जी।
2: और उसका जो गुण मिले वो साधारण व्यक्ति को मिले, और साधारण व्यक्ति का मतलब है कि उसके पास पानी हो, बिजली हो, घर हो और उसकी जिंदगी में एक बदलाव आए। तो ये मेरे विचार से एक रोड मैप तैयार कर देना और हर व्यक्ति को समझना कि उसकी भी जिम्मेदारी है इस देश में बदलाव लाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि जब हम विकसित भारत का सपना रखते हैं तो हर व्यक्ति को अपना एक रोल प्ले करना आवश्यक।
0: बिल्कुल सही कहा। बस यही कहेंगे कि जो लोकतंत्र में सरकार और जो नागरिक की भूमिका है वे केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि असली कसौटी ये है कि सरकार उस नागरिकों की जरूरतों को कितने अच्छे से समझ पाती है और कितनी जल्दी अमली जामा पहना पाती है। अमिताभ जी और प्रफुल्ल जी, आप हमारे साथ आए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, इसके लिए आप दोनों का धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के दूसरे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा 25 वर्ष जनहित से जन विश्वास तक। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। श्री नहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में यूएई के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश के 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
2: आज हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंड ओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है।
1: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव में अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। चुनाव के लिए कुल 1000 EVM का प्रबंध किया गया था। विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटों की गिनती कल नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जीत का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। अब भारत का सामना 20 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।